0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: जबरदस्त हिट्स,
6: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
7: फजान 97.1 FM,
6: आई लव इट।

0: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station.
8: That plays
9: foot tapping music.
10: Hazza 97.1 FM.
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
12: You are listening 97.1 FM.

कोई सितम खुद देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
6: Because when we work together, it all adds up.
7: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
9: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
10: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
9: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
10: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
9: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
10: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
11: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
9: Park Foods, जो नाम है मायार का।
12: This is a public service announcement.
13: The station.
14: That plays
15: foot tapping music.
16: Hazar 97.1 FM.

ऐसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ू सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
4: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
5: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ.
6: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं. खैर तो है,
5: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी.
6: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया.
5: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी.
6: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है.
5: AMH सॉलिसिटर्स. और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे. सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने.
6: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा.
5: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम.
6: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए. नंबर क्या है?
5: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677. प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने. मुफ्ता मशवरा लो जी.
7: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
5: जबरदस्त हिट्स,
6: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
7: फजान 97.1 FM,
6: आई लव इट।

Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops. And take shorter showers, yeah? Because when we work together, it all adds up.
5: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: This is a public service announcement.
11: The station
12: that plays
13: foot tapping music.
14: Hazar 97.1 FM.
15: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: मानो चढ़ा।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: Attention,
4: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
5: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
6: भाई मुबारक तो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
5: लासा ट्यूशन सेंटर?
6: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
5: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
6: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
5: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
7: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
8: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
9: It's
10: music never sounded better.
11: Fazan 97.1 FM.
12: I love it.
13: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: ठहरिए जरा ये कमर्शियल तो सुन ले.
6: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
7: ओए खुशियां मनाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ
8: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं खैर तो है
7: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी
8: ओहो मुबारकबाद बहुत जल्दी आ गया
7: सारी नसीब दी गल है मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी
8: उनका नाम ही बता दे हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है
7: AMH सॉलिसिटर्स और कौन ओ वधिया ने दोस्ताना माहौल तेज ते जल्दी कम कर देना सोने ते स्वागा ए क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने
8: चले उनका पता भी बता दें आपको तो जुबानी याद होगा
7: हाँ जी क्यों नहीं नॉटिंगम रोड न्यू बेसफोर्ड नॉटिंगम
8: जबरदस्त मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए नंबर क्या है
7: लो जी ओ भी जुबानी याद है 0115-671-3677 प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने मुफ्ता मशवरा लो जी
9: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available or call them on 0115-671-3677.

जी द लिसनर्स ऑफ रेडियो फदा 97.1 एफएम, दिस इज योर होस्ट नासिर खान प्रेजेंटिंग अ डेफिनेटली लाइव एंड डेफिनेटली इट्स लाइवली शो, लाइवली शो नेमली गुड मॉर्निंग नॉटिंघम। जी जितने भी इस वक्त व्यक्ति मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, ये वेलकम है उन समातों के लिए जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 एफएम पे या फिर डैप पे। डैप पे आप हमें फदा के नाम से सर्च कर सकते हैं और हमारे साथ शामिल हो सकते हैं हमारी खूबसूरत से प्रोग्राम गुड मॉर्निंग नॉटिंघम में। एक बार फिर से आपकी याद दहानी के लिए मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखते हैं जनाब। आज नॉटिंघम शहर का टेम्परेचर मैक्सिमम 20 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बारिश के दूर दराज तक कोई इम्कान नहीं है, लेकिन ठीक एक से दो घंटे के बाद हल्की सी बूंदाबांदी होगी। फिजा में ह्यूमिडिटी का लेवल हो जाएगा 38% और आज रात के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, टुनाइट विल टर्न ड्राई एंड चिली विद लार्जली क्लियर स्काइज एंड काम विंड्स। ओवरऑल मिड एंड यू कैन से चिल्ड नाइट विल बी अहेड। थैंक यू वेरी मच जिन्होंने अभी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया। जी व्हाट्सएप का नंबर जी मैं एक बार फिर से रिपीट किया देता हूँ, 1157100971।

प्रणव, जैसे कि हर रोज का एक सब्जेक्ट एक टॉपिक होता है, और आज का टॉपिक जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, जिन्होंने सुना उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं सुन सके एक बार फिर से रिमाइंड किए देता हूँ। इम्पोर्टेंस यानी खासियत क्या होती है, किस वाले से होती है, कौन से इंसान खास होते हैं, उन किन लोगों को खास रखना चाहिए, इन पे कुछ हमारी विशेष टिप्पणी है, कुछ राय है, कुछ विचार हैं। अगर आपके भी राय आपके विचार हमारे साथ बहते हैं या इस लेवल पे आप हमारे साथ चलते हैं, तो फिर आपसे गुजारिश है कि अपने विचार हमारे साथ शेयर कीजिए। 1157100971 पे मैसेज करके या फिर इसी नंबर पे आप लाइव कॉल कर सकते हैं और शामिल हो सकते हैं हमारे साथ लाइव ट्रांसमिशन में।

याद रही जो इम्पोर्टेंस जो हमारा सब्जेक्ट है खसूसियत या किसी को अहमियत देना बेसिकली इसको कह लें तो टिपिकली हम जो बात करते हैं वो मोटिवेशन के हवाले से और सक्सेस के हवाले से करते हैं ताकि आपका जो बकिया दिन है वो एक ऐसे यादगार तरीके से गुजरे या फिर आपके पास इतनी मोटिवेशन हो कि आप बड़े से बड़ी जितनी भी चैलेंजेस आज के दिन में आपके पास आने उनको आप सॉल्व कर सकें या फिर उन लोगों को साथ लेके चल सकें जो जिंदगी से कम बेश हार चुके हैं या आप ये कह लेंगे इस देश के प्रदेश में इस प्रदेश के देर में बहुत सारी टेंशन इंसान को पड़ी रहती हैं दो दो तीन तीन शिफ्ट करने के बाद कभी कभार थकावट कभी कभी जहन लेकिन वो शायर कितनी खूबसूरत सी बात कहता है कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं जाने किस किस का हौसला हूं मैं।

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक। ये थे जनाब द ग्रेट स्टीव जॉब्स। बिल्कुल जनाब, एक कॉलेज ड्रॉप आउट लड़का। यानी हम अगर अक्सर सोचते हैं ना कि हमारी आजकल की ज़िंदगी में कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कितने ज़्यादा मुश्किलात हैं, और मुश्किलात भी ऐसी हैं, प्रॉब्लम्स भी ऐसी हैं कि इंसान सोचने समझने की सलाहियत कभी कभी खो देता है। क्योंकि कहते हैं ना कि अक्सर आपका जो इन्वायरमेंट होता है वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। अब बात आती है इंपॉर्टेंस की, खसूसियत की, अहमियत की। अहमियत पर्सनैलिटी में कैसे लेके आते हैं, पर्सनैलिटी में अहमियत उजागर करने के कौन कौन से तरीके हैं। समी, जैसा कि कल मैंने आपको एक ज़बरदस्ती मिसाल दी थी, जो हमारे थे ना पाब्लो पिकासो साहब, सदी के यानी आप कह लें कि दो दहाइयों के एक ऐसे ग्रेट आर्टिस्ट, एक ऐसे मुसव्वर, एक ऐसे कलाकार जिनको खुदा ने बेशुमार अनगिनत नियामतों से नवाजा था। लेकिन उस बंदे ने जब उस पर मुश्किल पड़ी, जब उसको ठंड लगी, तो उसने अपनी बेशबहा कीमती ड्राइंग्स को जलाकर उनसे वार्मथ यानी उससे गर्माइश हासिल की और अपनी ज़िंदगी के तसलसल को जारी रखा। अब सामीन, यहाँ पे एक बात आती है। जैसे कि मैंने कल बताया कि गरीब सी औरत एक सफाई करने वाली उनकी एग्जीबिशन में उनके पास आई और एक पेंसिल और एक पेपर देकर उनको कहती है कि पिकासो साहब, आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ मेरा एक चित्र बनाना है, मेरी एक तस्वीर बनानी है। मुझे मुसव्वरी का शौक है लेकिन मुझे कुछ पता नहीं, आता जाता नहीं है। अगर आप ये बना देंगे तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। उन्होंने आधे घंटे में उनको एक ज़बरदस्त पिक्चर बना के दी और स्केच के साथ अपने साइन की और कहा कि ये पेज ले जाओ, जहाँ भी जाके बेचोगी ये कम अज़ कम $500,000 का बिकेगा। अब वो बड़ी परेशान और बड़ी खुश दोनों मिली जुली सिचुएशन से कि मैं एक आम सी व्यक्ति हूँ, इम्पॉर्टेंस की बात करूँ कि जब आपके हाथ किसी ऐसी शख्सियत के साथ मिल जाते हैं, जब आपका लिंक किसी ऐसी शख्सियत के साथ मिल जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे नॉटिंघम शहर में या यूके में, कहाँ भी कहीं भी आप कोई भी जॉब करें, सेल्स की, एडमिनिस्ट्रेशन की, मैनेजमेंट की, एफिलिएशन की, कैरियर की, कोई भी जॉब आप करें, तो उसमें सारी चीज़ें एकदम लाजमी आती है, मैनेजमेंट आती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने अपनी मैनेजमेंट की कौन सी की पर्सनैलिटी को अपने साथ जोड़ लिया है या आप उसके साथ जुड़ गए हैं। डेफिनेटली अगर आपके पास 20 से 30 बंदों की टीम है, उनके ऊपर एक डायरेक्टर मार्केटिंग है या फॉर एग्जांपल कुछ सेल्स या मार्केटिंग

0: अब जी पिकासो साहब ने वो पेंटिंग दी और वो औरत लेके उसको एक जबरदस्ती किसी और एग्जीबिशन में गई और वहां जाके उसने वो पेंटिंग दिखाई और फिर जब उन्होंने ये देखा कि ये वही औरत है जिस औरत की तस्वीर है, उसने कहा आप क्या करती हैं? ना कहा मैं तो एग्जीबिशन में एक्सपाई करती हूँ। तो फिर ये भी पता चला जो मुसव्वर होता है ना, जो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती है जिसमें कुछ खसूसियात ऊपर वाले ने दी होती हैं, जिसमें कुछ अहमियत होती है, वो अपने बुरे हालात को नहीं भूलता। और जब वो भी किसी दौर में ऐसे मौके पर था, ऐसी सिचुएशन पर था कि जहाँ पर उसके पास कोई और चारा नहीं था, तो हो सकता है जब पिकासो साहब ने अपनी ड्राइंग चलाई थी तो ये वक्त उन पर भी आया होगा कि उनके पास दो वक्त का खाना भी ना हो या उनके पास कोई और चीज भी रहने के लिए ना हो, ताकि उनके अपनी ड्राइंग्स जला के उससे वॉर्म्थ लेनी पड़ी। अब जब उस व्यक्ति ने ये देखा कि ये जो औरत है निहाई थी आम लिबास में और डेफिनेटली क्लीनर है या स्वीपर है व्हाटएवर, उसने उस चीज की अहमियत और बढ़ा दी। जो $500,000 की प्राइस पिकासो साहब ने लगाई थी वो $50,00,000 में पेंटिंग हुई और उसके बाद तारीख ने उस पेंटिंग को याद रखा। जी बिल्कुल, वेस्ले डिबोना के नाम से पेंटिंग बड़ी फेमस है पैब्लो पिकासो की और 78 से पहले जितनी भी एग्जीबिशंस हुई हैं इसमें टॉप सेलिंग में रही है। मैं कोशिश करूंगा कि हमारी जो सोशल मीडिया टीम है अगर इस पर रील बने तो फिर मैं आपके साथ वो शेयर भी कर दूंगा। एनीवे, ये होती है इम्पोर्टेंस, ये होती है अहमियत। अब जब उस औरत ने क्या कहा, उस औरत के कुछ अपने विचार थे, कुछ अपनी सोच थी, कुछ अपनी असवाज थी, जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ, उसने कुछ चीज़ें डिस्कस की और डिस्कस करने के बाद क्या हुआ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या हुआ। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे दरमियान हायल होने जा रही कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं, इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे।
1: It's commercial time.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
0: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
0: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स, किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करे।
1: टर्न इट अप, रेडियो फाजा 97.1 FM।

जी तो लिसनर्स, वेलकम बैक। रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान नासिर खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल किया था गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है जनाब उन तमाम समातों का जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 एफएम पे, या फिर हमें सर्च किया फजा पेड ऐप के नाम से, या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड किया। ऐप को डाउनलोड करने का एक बार फिर से मैं तरीका आपके सामने रखे देता हूँ जनाब। आपने जाना है गूगल प्ले पे, प्ले स्टोर पे, वहां जाके आप टाइप करेंगे रेडियो फजा 97.1 एफएम ऑफिशियल, और फिर एक खूबसूरत से पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल गोल्डन येलो या पेज कलर में लिखा फजा आपके सामने आएगा। डिपेंड करते हैं आपकी रेजोल्यूशन कैसे, स्क्रीन की कलर आप अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं जनाब। उसको डाउनलोड कीजिए, गेट कीजिए, जब आप प्ले करेंगे तो यही आवाज ठहरेगी आपकी स्मार्ट होगी नजर। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, बात हमारी चल रही थी इम्पोर्टेंस पे, और ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था कि पैब्लो पिकासो साहब ने जब वो पेंटिंग डिजाइन कर दी और जो उसकी इम्पोर्टेंस बन गई, उसकी अहमियत बन गई, क्योंकि वो ड्रॉ हुई थी उस शख्सियत के हाथ से, उस मुसव्वर के हाथ से जो बेजान चीज में भी कला डाल देता था। समझ टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट ये है कि इम्पोर्टेंस मिलती कैसे। बड़ा जबरदस्त सा टर्निंग पॉइंट है जनाब, इसको बाद में सेल्स के साथ में रिलेट भी करूंगा और फिर आपको कुछ चीजें भी बताऊंगा, क्योंकि मेरी सेल्स और मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में फील्ड है और इसी फील्ड के हवाले से भी आगे लेके चलेंगे। अब इम्पोर्टेंस कहाँ जनरेट होती है? अब सिचुएशन ये हुई कि जब उस औरत ने देखा कि उसकी एक बिल्कुल डिम्पल सी पर्सनैलिटी, जिसने बाद में एक हिस्ट्री कायम कर दी, उस औरत ने जब $50 लाख में वो जो तस्वीर है वो बिकी, तो फिर वो वापस आई पैब्लो पिकासो के पास, और वापस आकर उसने ये कहा कि मुझे पिकासो साहब 30 मिनट में ऐसी कलाकारी मुझे भी सिखा दें जिससे आप 50 लाख अर्न कर सकते हैं। बड़े खुश हुए पैब्लो पिकासो साहब के 30 मिनट की एक चित्रकारी में मैंने इसको 50 लाख दे दिया। तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त और कमाल की बात की और वो बात हिस्ट्री बन गई, और आज भी सेल्स या मैनेजमेंट के जितने भी बड़े बड़े दस्तकारी हैं, या जिनको बड़े बड़े आप मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, मार्केटिंग मैनेजर या ट्रेनर्स, वो इस चीज को हमेशा कोट करते हैं। जो बात उन्होंने की वो बात क्या थी? वो बात थी इंपॉर्टेंस की, अहमियत की। उन्होंने बड़े प्यार से उनको ये कहा कि जनाब मुझे 30 साल लगे हैं 30 मिनट की वो पेंटिंग डिजाइन करते हुए जिससे आप 50 लाख कमा सकते हैं। तो फिर डेफिनेटली अगर आप मेरे साथ 30 मिनट की वो पेंटिंग बना के 50 लाख कमाना चाहती हैं, तो फिर आपने 30 साल दे दीजिए मुझे, क्योंकि उन 30 सालों में पैब्लो पिकासो ने क्या किया, उन्होंने ये भी किया कि अपनी ड्राइंग्स भी जला के उनके साथ जनाब उन्होंने अपना जो गरमाइश थी वो भी ली, और उसके बाद अपना जो गुजर बसर था जिंदगी का वो भी किया। लेकिन एक काफी ज्यादा झटके खाने के बाद आपको सबसे पहले आपके नाम की अहमियत का अंदाजा होता है कि फिर लोगों को पता चला कि पिकासो साहब है कौन है। और इससे स्टीव जॉब्स या जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति हैं, जितने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, जितने बड़े बड़े नाम हैं, स्पेशली हमारी, अब ये जो वो लोग हैं जिन्होंने एक ऐसे वक्त में मार्केट में कदम रखा, ये लोग मार्केट के सामने आ गए। हमारे नॉटिंघम शहर में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, साउथ एशियन कम्युनिटी से है, आपके होमलैंड में, इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल, बांग्लादेश, किसी जगह पे भी आप जाएं और देखें कि वहाँ पे भी लोग बहुत ही कमाल का बिजनेस, बहुत ही कमाल के सेटअप को रन कर रहे हैं, और उसके बाद उनकी इंपॉर्टेंस उनकी लाइफ में किन चीज़ों की है, किन चीज़ों की अहमियत है, और किन चीज़ों की अहमियत को लेके वो अक्सर इन चीज़ों पे सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, मार्केट को स्टडी करते हैं, और मार्केट को स्टडी करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमें किन लोगों को अहमियत देनी है और हमें किन चीज़ों को अहमियत देनी। और जब इंपॉर्टेंस का इंसान को पता चल जाता है, फिर इंसान एक काबिल और खूबसूरत इंसान बनता है। ना गपशप हमारी साथ साथ चलिए, कुछ ट्रैक्स में आपके लिए ब्रेक करूंगा 5 से 7 मिनट के लिए, उसके बाद फिर लेंगे कि एक जबरदस्त सी कुछ मैसेजेस आपके साथ शेयर करेंगे, उसके बाद एक आइडिया का हैक होगा डेफिनेटली बायलैंग्वल पे, कि अगर आप कामयाबी चाहते हैं, इंपॉर्टेंस चाहते हैं जिंदगी में, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप मल्टी लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं, या मल्टी लैंग्वेज होना इंसान के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे आजकल के इस मुआशरे में, इस सोसाइटी में, और जो कम्युनिटी है हमारी जिसको साउथ एशियन कम्युनिटी कहती है, जिनको रेडियो 97.1 एफएम पेश करता है ऑल द वे फ्रॉम नॉटिंघम, उनमें आपकी अहमियत का अंदाजा कैसे हो सकता है और कैसे उजागर कर सकते हैं, इन सारी चीजों को ये गपशप हमारे साथ साथ रहेगी। स्टे ट्यून्ड 97.1 एफएम।

जनाब, रंग अगर लेके जा सकते हैं आप तो ये जिंदगी के कुछ रंग हैं, इनको भी एंजॉय कीजिए। मोटिवेशन तो हमारी साथ साथ चलती रहेगी, अहमियत भी हमें पता चलेगी किन व्यक्ति को देनी है, किन लोगों से जान छुड़ानी है, किन को शामिल करने का अवसर हमारे साथ साथ रहेगी। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम का खूबसूरत सफर, आपका मेजबान आसिफ खान और खूबसूरत ट्रैक। स्टे ट्यून्ड एंड यू होल्ड राइट बैक।

जी तो लिसन बिल्कुल ले जा जाते हुए कुछ हवा के रंग दे जा, कुछ संग अपने ले जा जनाब। बिल्कुल ये रंग और संग की बात चलती रहती रेडियो फजा 97.1 एफएम पर लाइव स्टूडियो है और आपका मेजबान आसिफ खान आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम। मैं आपको दिल किया था गहराइयों से खुश आमदेद कहते हुए। बड़ी प्यारी सी फरमाइश आई जी, आज आपने हाल अहवाल नहीं पूछा तो समझाएं सुलझाएं बतलाएं कैसे हैं सब लोग। केव अहवाल अकमा गंग नंगू मा गए ने वर्तन अब सुगम सुगम आणु केम छो बोन जो और की हाल चाल है मेरा ते तुहाडा। तो जनाब बिल्कुल एंड पे हम चल रहे हैं इस वक्त। हार्डली मेरे पास 5 से 6 मिनट हैं आप लोगों से गपशप करने के लिए। प्रोग्राम को क्लोज भी करेंगे इसलिए ट्रैक से भी मैंने क्लोज की, कुछ गपशप भी हुई लेकिन बायलैंगुअल का जो हमारा एक जबरदस्त सेगमेंट है वो सेगमेंट हमारे साथ रहेगा। उस सेगमेंट के उस पार मेरी आपसे नहीं हो सकेगी मुलाकात।

0: he thought that being bilingual was about.
1: फज़ा आइडिया का खूबसूरत सा सेगमेंट है। इस सेगमेंट को सुनिएगा कि मल्टी लैंग्वेज या मल्टी टैलेंटेड होना आपकी ब्रेन को कैसे इफेक्ट करता है या आपकी ब्रेन की एक्टिविटीज को कैसे लेके आगे चलता है या इस प्रदेश के देश में, इस देश के प्रदेश में हमें बायलैंगुअल होना कितना ज्यादा हमारे लिए अहमियत, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, अहमियत का हामिल है। सो स्टे ट्यून, अपने मेजबान नासिर खान को दीजिए इजाजत, सुनिए जबरदस्त फज़ा आइडिया टुडे। और कल जनाब नए सब्जेक्ट, नए क्वेश्चंस, नए गपशप, नए टॉपिक के साथ रहेगी मुलाकात। स्टे ट्यून 97.1 FM, एंजॉय कीजिए ये सेगमेंट फज़ा आइडिया का। इसके उस पार होगी कमर्शियल ब्रेक, लेकिन उस पार मैं नहीं रहूंगा आपके साथ। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय नॉटिंघम।
2: डिड इट वुड कंफ्यूज और होल्ड पीपल बैक, एस्पेशली चिल्ड्रन? Turns out, we couldn't have been more wrong.
3: Learning new languages is an exercise of the mind. It's the mental equivalent of going to a gym every day. In the bilingual brain, all our languages are active, all at the same time. The continual effort of suppressing a language when speaking another, along with the mental challenge that comes with regularly switching between languages, exercises our brain. It improves our concentration, problem solving, memory, and in turn, our creativity.
2: It's now widely accepted that there are huge benefits to being bilingual. A key breakthrough came back in 2007 in Toronto, when Ellen Bialystok and her team made a discovery that shook the scientific community and has massive real-world implications.
4: It was the first study which suggested that bilingual people, people who speak more than one language, develop dementia 4 to 4.5 years later than those who don't. It was a powerful confirmation of the idea of cognitive reserve.
2: Now, what is cognitive reserve? Cognitive reserve is the idea that people develop a reserve of thinking abilities, and this protects them against losses that can occur through aging and disease. As well as delaying the onset of dementia, bilingual people have been shown to recover significantly better after a stroke. Learning anything new helps build cognitive reserve, but there's something special about language.
4: Language is particularly broad and complex. It affects ideas and concepts, perception, different sounds. The more complex a certain skill is, the more likely it is to have a positive effect on cognitive reserve.
2: So when is the best time to learn a new language? Well, here's part of the answer.
3: The brain is a complex set of neural networks. When you're learning a new language as a child, you're building neural networks. But when you learn a language later in life, you have to modify the existing networks and make more connections. Because learning languages later in life can be more challenging, the benefits can also be greater.
2: But a 2023 study at Great Ormond Street suggests this is just part of the story.
5: So we invited three groups of children that were aged 8 to 10. And we had a group of children who were monolinguals, a group of children who had early exposure to Greek and English from birth, they were our early bilinguals, and finally we had a group who had been exposed to English between the ages of 2 and 5, and they were our later bilinguals. So what we did that no one had done before is that we asked the children to lie in the scanner while doing nothing and just staring at a cross. And during this, we measured their brain activity. So what we found that was really exciting for us is that our early bilingual group had the strongest connectivity in the net.
6: जी हाँ, Raya रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
7: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
8: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
7: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
8: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
7: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
8: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
7: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
9: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
6: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
10: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
11: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
12: Radio station for people who love music.

അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്തേ, സത്യാകാർ, ഹലോ ഹലോ ഹലോ. എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ, എക്സൈറ്റിംഗ് പ്ലസ് ചാർമിംഗ് മോർണിംഗ് आप सभी लिसनर्स के लिए. जी तो लिसनर्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट, आप सभी की दोस्त आरजे ज़ैनब फातिमा, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम दीवा डायलॉग, जो क्यों नहीं होता है ठीक 10 बजे, यानी कि ठीक 10 बजे से लेकर ठीक 12 बजे तक हम और आप रहते हैं साथ साथ. हमारे ये साथ इसी तरह से बरकरार रहता है. स्पीच करते हैं हम, बहुत सारी बातें, बहुत सारी गपशप, टीगर मामूलात ज़िंदगी से मुतल्लिक हम बातचीत करते हैं, साथ ही साथ कुछ आपकी ज़िंदगी से मुतल्लिक भी बातचीत करते हैं. और फिर दीवा डायलॉग की जो हासियत है वो ये कि हम डेली बेसिस पर कुछ ऐसा अलग इंफॉर्मेटिव सा टॉपिक लेकर आते हैं आप सभी लिसनर्स के लिए, जो कि मामूलात ज़िंदगी से थोड़ा हटकर हो, क्योंकि डेली बेसिस पर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी की तो बातचीत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कभी कभी दिल करता है ना कि इंसान अपने मूड को फ्रेश करे, कुछ अलग सी इन्फॉर्मेशन हासिल करे, कुछ नया सुनने को मिले. वही बोरिंग बातों से इंसान थोड़ा सा उकता जाता है. सो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर दिन आपके लिए लेकर आए कुछ नया, कुछ अलग, कुछ मुनफरिद, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ आपकी और मेरी कम्युनिकेशन और फिर इंटरटेनमेंट का कंप्लीट. सो इसी तरह से इन तमाम सारी चीज़ों को कुल मिलाकर बन जाता है द दीवा डायलॉग, जो कि हमारे सभी लिसनर्स के लिए ठीक 10 बजे ऑन एयर होता है. सो डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और हैरियत से होंगे. वेल, उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपने इस खूबसूरत से दिन का आगाज कर लिया होगा. सो दैट्स रियली ग्रेट. बट अगर अभी तक आपने इस खूबसूरत से दिन का आगाज नहीं किया तो घबराने की कोई बात नहीं, आप अभी भी इस दिन का आगाज कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी और मेरी घड़ी पर सिर्फ और सिर्फ 10 हुए हैं. और अगर आप अभी से ये सोच लें कि बहुत सारा वक्त तो हमने वेस्ट कर दिया है, तो क्यों ना ये दिन ऑफिस से ऑफ ले लिया जाए या फिर सुस्ती और काहली में ही गुजार दिया जाए, तो ये बहुत ही रॉन्ग परसेप्शन है. इस तरह से बिल्कुल भी आपने नहीं सोचना. आइए हम लगा करते हैं इस खूबसूरत दिन का आगाज रेडियो फजा 97.1 FM के साथ. तो लिसनर्स, हमारे वो सभी लिसनर्स जिन्होंने आज के इस खूबसूरत दिन का आगाज कर लिया है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं आज के दिन के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या करने वाले हैं और आज क्या करने का इरादा रखते हैं. सो हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो कि आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसी हो जो कि आपको बॉदर कर रही हो. सो अगर आपको कोई कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ बॉदर कर रहा है, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा आपके साथ इसीलिए है मौजूद. आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि इस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा है, या फिर अगर आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं और आपको ऐसा लगता है कि मे बी क्या मुझे ये काम करना चाहिए या मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि कोई थर्ड पार्टी आपको एक अच्छी सी एडवाइस दे, वो आपको एक्सप्लेन करे कि इस चीज़ के पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं. सो इन तमाम तरह बातों के लिए आप हमसे रिसीव कर सकते हैं. वेल लिसनर्स, बातों बातों में मैंने काफ़ी सारी बातें तो कर ली, लेकिन अभी तक मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि किस तरह से आप अपने कीमती ख्याल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं.

सो तो आइए लिसनर्स, आप सभी को बताते चलती हूँ कि किस तरह से आप अपने ख्यालात, अपने एहसासात और अपने जज्बात हम तक पहुँचा सकते हैं। सो तो उसके लिए आपको करना बस इतना है, आपको कर लेना है हमारा प्यारा सा छोटा सा नंबर सेव। तो नंबर आप सभी से शेयर करती हूँ, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 01157100971। सो जो लिसनर्स, ये है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। ये ना सिर्फ हमारा नंबर है बल्कि है एक ऐसा रास्ता जो आपको हमसे और हमें आपसे मिलाता है। सो इस नंबर के थ्रू आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपने कीमती ख्यालात, क्या सोच रहे हैं। इसके अलावा आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह का प्रोग्राम पसंद है, या फिर अगर आप चाहते हैं तो हम आपके लिए प्रोग्राम में कुछ एडिशन कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक सुनना हो, या आप चाहते हो कि आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, तो उसके लिए भी आप हमें इस नंबर के थ्रू बता सकते हैं। बस आपको करना इतना है कि आपको जाना है अपने मोबाइल फ़ोन पर, नंबर को कर लेना है जल्दी से सेव। सेव करने के बाद आपने अपने नाम के साथ कोई भी प्यारा सा पैगाम या जो कुछ आप करना चाहते हैं शेयर किसी से या हमसे, बस लेकर भेज देना है। वेल, यह हम पे डिपेंड करता है कि हम आपकी उस रिक्वेस्ट को किस तरह से प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। साथ ही साथ लिसनर्स, आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह का म्यूज़िक पसंद है। आपको पॉप म्यूज़िक पसंद है, क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है, या फिर ट्रेडिशनल पुराने गाने। सो आप अपने किसी भी चाहने वाले को कोई भी प्यारा सा गाना डेडिकेट कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको बस हमें एक छोटा सा मैसेज टाइप करके भेज देना है। साथ ही साथ आपको बताते चलती होंगे किस तरह से आप हमें ट्यून कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप भी मेरी तरह रेडियो फजा 97.1 एफएम की इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। सो आइए मैं आपको वो तरीका बताती हूँ कि किस तरह से आप भी शामिल हो सकते हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम की इस फैमिली में। सो लिसनर्स, इस फैमिली में शामिल होने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ है बहुत ही खूबसूरत, रूपदार, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको भी मेरी तरह बातें करने का शौक़ है, या आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरों से अपनी गुफ्तगू करना चाहते हैं, या फिर दूसरों को अपनी आवाज़ सुनाना चाहते हैं, सो उसके लिए आपको सिंपली जाना होगा या फिर लॉग इन करनी होगी हमारी वेबसाइट। सो हमारी वेबसाइट है www.radiofaza.com.uk। सो इस वेबसाइट पे ना सिर्फ आप हर तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम से रिलेटेड, साथ ही साथ आप ये भी जान सकते हैं कि रेडियो फजा 97.1 एफएम पर कौन से नए इवेंट्स हैं आने वाले, या फिर किस आरजे का प्रोग्राम किस दिन होने वाला है। सो हर तरह की मालूमात आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट पे। साथ ही साथ लिसनर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बहुत अच्छा प्रीमियम और स्मूथ एक्सपीरियंस हासिल हो, यानी कि आप हमें ट्यून कर सके बिना इंटरप्शन, बिना किसी डिस्टर्बेंस, सो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तरीका बहुत ही सिंपल सा है, आपको जाना होगा एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहां जाके आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 एफएम, और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे हो जाएगा डिस्प्ले। जी हाँ, यही है हमारी एप्लीकेशन। सो आपने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना और कर लेना है जल्दी से इसे इंस्टॉल, और बस कर लीजिए इसे इंस्टॉल और हेडफोन्स लगाइए, अपने दिन को खूबसूरत बनाइए खूबसूरत आवाजों के संग, खूबसूरत खूबसूरत म्यूजिक के संग। सो दी लिसनर्स, ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। सो मैंने बारी बारी एक एक करके सब कर दिए हैं आपसे शेयर। वेल, अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। चलो लिसनर्स, डीवा डायलॉग के सफर को मजीद आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब से लेकर ठीक 2 घंटे तक हम और आप रहने वाले हैं साथ साथ। सो ये बातचीत, ये गपशप का सिलसिला तो चलता रहेगा, हल्की फुल्की नोक छोक होगी, कुछ आपकी बातें सुनी जाएंगी और कुछ आपको अपनी बातें सुनाई जाएंगी। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक जो कि हमारे एक लिसनर ने ही हमें सजेस्ट किया है। सो अब देखते हैं कि ये ट्रैक आप सबको कैसा लगता है, या फिर आपका इस पर कैसा फीडबैक होता है। सो वेल लिसनर्स, गाना है थोड़ा सा इमोशनल, लेकिन आपने बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना, आपने बस इससे इंजॉय करना है। सो ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर गपशप का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सो स्टे ट्यून टू द फजा 97.1 एफएम।

जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल थी?

तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज।

वेलकम बैक वंस अगेन। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय किया होगा। वेल, गाना थोड़ा सा इमोशनल था, लेकिन आपने बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना, क्योंकि हमने इस खूबसूरत दिन का आगाज करना है, बहुत सारे काम काज करने हैं, और हर दिन की तरह आज के दिन भी बहुत सारे आई एम श्योर आप सभी की भी टास्क होंगे जिनको आपने आज ही के दिन में कंप्लीट करना होगा। सो इसी के लिए आपने बिल्कुल भी सेंटी नहीं होना। और वैसे मैंने एक चीज़ नोट की है कि अक्सर अवकात जब भी मैं कोई इमोशनल गाना प्रोग्राम में शामिल करती हूँ तो आप सबका बहुत ज़्यादा फीडबैक आता है। सो द रीज़न इज़ कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो हार्ट ब्रोकन हैं, यानी कि आजकल मोस्टली लोग इमोशनल गानों से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये गाने उनकी अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मतलब क्या कह लो कि रिलेट कर रहे हैं, या फिर मोस्टली लोगों को लगता है कि ये गाना तो उन्हीं की स्टोरी पर बना हुआ है, क्योंकि आजकल हर दूसरे इंसान का मसला एक ही है कि उसका दिल टूट चुका है या फिर किसी ने उसका दिल तोड़ दिया है।

वेलकम बैक वन सेकेंड एक बार फिर से आप सभी सुनती हुई समातों को खुश आमदी अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन हु इज़ जॉइनिंग मी राइट नाउ। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी होंगे बहुत ही ज़्यादा खुशबाश, चलते हैं हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज के टॉपिक के बारे में ज़रा डिस्कशन करते हैं। सो डियर लिसनर्स, उससे पहले आप सभी को बताते चलती हूँ कि जस्ट इन केस कि अगर अभी तक आपने अपने दिन का आगाज़ कर लिया है और अब आप अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना दवा हैं, सो आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि सीट बेल्ट को टाइटली बांध लीजिए। सेकंड थिंग यू डू इज़ के बी केयरफुल एंड बी कॉन्शियस वाइल यू आर ड्राइविंग, क्योंकि ड्राइविंग इट्सेल्फ इट्स अ रियली डिफिकल्ट टास्क। और जब भी कभी आप ड्राइव कर रहे हों सो मेक श्योर किया करें कि आप एहतियात किया करें, रैश ड्राइविंग से बिल्कुल भी आपने उस जानब नहीं जाना। मैं ये कहना ये चाह रही थी कि आपने रैश ड्राइविंग को पर उससे गुरेज करना है, ठीक है। पता नहीं क्या हो गया, एकदम से मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट साउंड कर रही है। सो हाँ, मैं ये कह रही थी कि जब भी कभी आप ड्राइव कर रहे हों तो बी सेफ, बी केयरफुल और अपना पूरा फोकस इस चीज़ पर रखें कि आप गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि आजकल रोड्स पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है और अक्सर अवकात लोग क्या करते हैं कि बहुत देर से घर से बाहर निकलते हैं तैयारी करने में या फिर इन सब चीज़ों में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और हो जाते हैं अपने ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए या फिर यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा सा लेट। सो फिर वो ये करते हैं कि इस लेट होने के चक्कर में वो गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्पीड देते हैं कि हम टाइम पर अपने ऑफिस पहुंच जाएं। सो कहीं पर देर से पहुंच जाना इज़ वे बेटर देन कि आप कहीं पर कभी पहुंचे ही ना। सो हमेशा ख्याल रखा करें, एहतियात किया करें और उन तमाम लोगों के बारे में सोचा करें जिनकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से मुंसलिक है। वेल लिसनर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह से ड्राइव करते चले जाएं और आपको खूबसूरत खूबसूरत ट्रैक सुनने को मिले, खूबसूरत आवाज़ें आपके साथ इसी तरह से बरकरार रहें, सो उसके लिए आप हमें फजा डैप पे ट्यून कर सकते हैं, वहाँ पर हमारा साथ दे सकते हैं। सो जितने भी हमारे लिसनर्स हैं जो कि ऑफिशियली द डीवा डायलॉग के फ़ैन हैं, जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और दुनिया के किस कोने से हमें ट्यून कर रहे हैं। सो वेल लिसनर्स, आज के टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो थोड़ा सा डिफरेंट तो है बट ये हमारी डेली लाइफ से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता है या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि डीपली कनेक्टेड है। सो आज का हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं और आप सभी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, विच इज़ कॉल्ड द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सो आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होती है और किन लोगों को कहा जाता है कि दे आर द आर्टिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि वो लोग इस तरह से बातें करते हैं कि आप जब उनसे गुफ्तगू करते हैं उनका अंदाज़े गुफ्तगू आप सबको इतना अच्छा लगता है कि आप उनकी बातों में कहीं खो सा जाते हैं। सो वेल लिसनर्स, इसके ऊपर करेंगे कंप्लीट डिस्कशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास जो कि मैं आप सभी से शेयर करूंगी और वेल साथ ही साथ हम आप सबके भी ओपिनियंस को जानेंगे और देखेंगे कि आपका इस बारे में क्या कहना है या फिर आपके नज़दीक एक्चुअल मीनिंग क्या होता है द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का। लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक, ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर गपशप का सिलसिला जारी करेंगे। सो वेल लिसनर्स, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरह का ट्रैक सुनना है और मैं ये सोच रही हूँ कि हमने दो गाने अभी तक जो प्रोग्राम में शामिल किए हैं वो थे थोड़े से इमोशनल, तो क्यों ना थोड़ा सा माहौल को तब्दील किया जाए और सुनते हैं कुछ डिफरेंट किस्म का गाना। तो क्या ख्याल है आप सभी का, एक अदद वीकेंड का गाना प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाए या नहीं? सो सुनते हैं एक वीकेंड का सॉन्ग और ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक स्टे ट्यून टू द फजा 97.1 FM।

So, well, listeners, अब हम बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन होती क्या है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. सो सबसे पहले कि हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि बेसिकली कम्युनिकेशन किसे कहते हैं. सो कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ जो हम लिटरली हर दिन करते हैं. हम बात करते हैं, मैसेजेस सेंड करते हैं, अक्सर अवकात कॉल्स करते हैं और एक्सप्रेशंस देते हैं, और कभी कभी सिर्फ खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह देते हैं. सो इन तमाम तरह चीज़ों का मजमुआ होता है कम्युनिकेशन. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बात करना और इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना दोनों एक बहुत ही अलग और बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं. आप बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपकी बात समझ भी रहा हो, क्योंकि आजकल के दौर में वो अक्सर कहा जाता है ना, आप सबने भी सुना होगा कि मेरे और तुम्हारे बीच बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है. सो बेसिकली वो कम्युनिकेशन गैप इस चीज़ का ही मीनिंग है कि अक्सर अवकात आपको लगता है कि कम्युनिकेशन मीन्स कि आप बस बातें कर रहे हैं, दूसरे तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं, एंड द सेकंड पर्सन वो आपको सुन रहा है और उसको आप समझ भी आ रहे हो. बट इन रियल लाइफ ऐसा समटाइम्स नहीं होता. समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपनी बात दूसरे तक डिलीवर तो कर रहे होते हो, लेकिन क्या दूसरा शख्स आपको समझ पा रहा है या नहीं, ये दोनों एक टोटली डिफरेंट सिनेरियोज हो जाते हैं. सो आप बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कोई दूसरा भी आपको उस तरह ही समझ रहा है या नहीं. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक छोटा सा सेंटेंस, एक छोटी स्माइल या फिर सिंपल एक दो अल्फाज का जुमला भी किसी रिलेशनशिप को कम्प्लीटली चेंज कर देता है. सो टुडे लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कम्युनिकेशन रियली इज, व्हाई इट मैटर्स, और हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं. सो इसके ऊपर ही हमारा आज का पूरा प्रोग्राम जाने वाला है और गुफ्तगु आगे बढ़ने वाली है. सो सबसे पहला, कम्युनिकेशन एक्चुअली होती क्या है. सबसे सिंपल डेफिनेशन मैं आप सबसे शेयर करती हूँ कम्युनिकेशन की. सो सिंपली कम्युनिकेशन का मतलब है अपने इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज को दूसरे लोगों तक पहुंचाना. सो कभी कभार आप डिफरेंट वे में अपने आइडियाज को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी थॉट्स को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हो. सो कम्युनिकेशन सिर्फ स्पीकिंग का नाम नहीं है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं एंड डिफरेंट वेज हैं. सो अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी कभार आप बात नहीं कर रहे लेकिन स्टिल सामने वाले को समझ आ रहा है कि आपका मूड अच्छा नहीं है या फिर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, तो अब आप सोचते हो कि अच्छा मैंने इससे बात ही नहीं की तो इसको कैसे मालूम हुआ कि मेरा मूड ऑफ है. सो उसको इस तरह से मालूम हुआ क्योंकि उसने आपके एक्सप्रेशंस को रीड किया है. सो कम्युनिकेशन में ये तमाम तरह चीज़ें आ जाती हैं, आपकी थॉट्स आ जाते हैं, आपके फीलिंग्स आ जाते हैं, आपका बात करने का स्टाइल और कभी कभार आपके फेस एक्सप्रेशंस भी इन तमाम तरह चीज़ों में शामिल होते हैं. सो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ कि डिफरेंट तरह की कम्युनिकेशन से मुराद कितनी फॉर्म्स हैं हमारे पास कम्युनिकेशन की. सो सबसे पहले है वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम वर्ड्स के थ्रू करते हैं. वर्बल कम्युनिकेशन मींस के जहां आप दो लोग साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, या फिर दो से ज़ायद लोग एक दूसरे

फिर भी उनको मालूम होता है कि दूसरा शख्स आपके साथ बात क्यों नहीं कर रहा या फिर इसका मूड ऑफ क्यों है। सो ये जो तमाम तरह चीज़ें हैं ये आ जाती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, क्योंकि इस कम्युनिकेशन के थ्रू दूसरा शख्स आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से या फिर आपके बिहेवियर से अंदाज़ा लगाता है आपकी बात का। अब से आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्म है विच इज़ कॉल्ड द रिटन कम्युनिकेशन। सो रिटन कम्युनिकेशन में हम मैसेजेस के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, लेटर के थ्रू या फिर कभी कभार सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सो सिंपली आप किसी को अगर डेली टेक्स्ट करते हैं या फिर आप किसी तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए ईमेल इस्तेमाल करते हैं या समटाइम्स आप कोई भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते कोई पोस्ट देखते हैं या फिर कोई रील देखते हैं। अच्छा, ये जो कम्युनिकेशन है पर्सनली ये मेरी फेवरेट कम्युनिकेशन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इट्स 2026, तो आजकल के दौर में किसी भी इंसान के पास इतना वक्त नहीं होता कि आप एक दूसरे के साथ डिस्कशन करें या फिर एक दूसरे का हाल चाल पूछें। सो फॉर मी रिटन कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट टू योर पीपल, क्योंकि इसमें यह होता है कि अक्सर अवकात में जब सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही होती हूँ तो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम बहुत पसंद है। सो मैं फ्री वक्त में अक्सर अब इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ। सो जैसे ही मैं कोई रील देखती हूँ या फिर कोई पोस्ट देखती हूँ जो कि मुझे लगता है कि ये मेरी सिचुएशन से या फिर मेरी किसी फ्रेंड की सिचुएशन से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही है, सो इस सूरत पे मैं क्या करती हूँ कि वो पोस्ट अपने उन फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देती हूँ। इससे ये होता है कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते चले जाते हैं और सब लोग अपनी ज़िंदगी में साथ ही साथ काम भी करते चले जाते हैं। अब आ जाते हैं हम अगली फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन पे विच इज़ कॉल्ड द विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं पिक्चर्स, साइन, कलर्स, सिंबल और फिर वीडियोस। सो जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं हमसे वर्ड यूज़ नहीं करते, बाज़ुकात हमारा टोन, फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज भी मैसेज का पार्ट बन रहा होता है। सो इसकी एक छोटी सी मिसाल आप सभी के साथ मैं शेयर करती हूँ कि अगर कोई पर्सन आपसे कहे आई एम फाइन लेकिन उसकी वॉइस आपको लो फील हो रही है, फेस सीरियस लग रहा है या फिर वो शख्स आपके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो आप प्रॉबेबली समझ जाएंगे कि आई एम फाइन शायद एक्चुअली फाइन नहीं है। यहाँ वर्ड्स कुछ और कह रहे हैं लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कुछ और। इसीलिए कम्युनिकेशन को एक आर्ट कहा जाता है और इसी के लिए आज हम बात कर रहे हैं द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन पे। सो वेल, इस पे मजीद डिस्कशन करते रहेंगे क्योंकि बातों का सिलसिला तो हमारा चलता रहेगा आपके साथ। फिलहाल हमें एक बहुत ही प्यारी सी सॉन्ग रिकमेंडेशन वसूल हुई है, तो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। ट्रैक है बहुत ही प्यारा, तो ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर गपशप का सिलसिला तो चलता रहेगा।

0: सीरियस लिसनर्स, हम अक्सर समझते हैं कि अकर्ट कम्युनिकेटर वो होता है जो बहुत अच्छी स्पीच कर सकता है, बहुत अच्छी बातचीत कर सकता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। आई एम श्योर मेरी तरह आप सबके माइंड में भी यही चीज़ आती होगी कि अकर्ट कम्युनिकेटर वही होता है जो कि पब्लिकली बात कर सकता है या फिर उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि अकर्ट कम्युनिकेटर वो नहीं होता कि जो पब्लिकली स्पीच कर सकता है, बल्कि एक्चुअली एक ग्रेट कम्युनिकेटर के पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है, विच इज कॉल्ड लिसनिंग। सो बेसिकली आप किसी की बात सुन रहे हैं और साथ ही अपना रिप्लाई मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो टेक्निकली आप फुली लिसन नहीं हुए। गुड लिसनिंग का मतलब ये होता है कि सामने वाले की बात को अटेंशन देना, उसकी बात को इंटरप्ट ना करना, और सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि उसे समझने के लिए आप उसको रिप्लाई करो। सो ये होता है अ गुड कम्युनिकेटर। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे लिसनर्स में से भी हो सकता है कि मेरी बात से इत्तफाक ना करें, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था, सो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। सो फॉर मी, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि एक गुड कम्युनिकेटर वो होता है जो पब्लिकली बात कर सकता है या फिर उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो एक अच्छी स्पीच दे सकता है। लेकिन एक गुड कम्युनिकेटर हमेशा वो शख्स होता है जो कि अ गुड लिसनर होता है, क्योंकि जब तक आप दूसरे को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप उससे बातचीत नहीं कर सकते और आप तब तक उस तरह से गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा सकते जिस तरह से सामने वाला चाहता है। सो इसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, पॉज बिफोर रिस्पॉन्डिंग। सो जब भी कभी ऐसा हो, जब कोई पर्सन आपकी बात कंप्लीट करे, इमिडिएटली आंसर देने के बजाय आपने क्या करना है, एक से दो सेकंड का पॉज ले लेना है और फिर उसके बाद उसे रिस्पॉन्ड करना है। इससे सामने वाले को फील होता है कि आपने जेन्युइनली उसकी बात सुनी है, समझी है और आप उसको वैल्यू करते हैं। और अक्सर औकात रिलेशनशिप्स में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। सो इट्स अ प्रो टिप फॉर ऑल ऑफ यू कि जब भी कभी आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हों या कभी ऐसा हो कि कोई शख्स आपसे अपनी कोई पर्सनल बात शेयर कर रहा हो या आपको अपने मुतल्लिक कुछ बता रहा हो, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, उसकी बात सुननी है। बात सुनने के बाद आपने एक से दो मिनट का पॉज लेना है और फिर उसको जवाब देना है। सो इसी से आप बन सकते हैं अ गुड कम्युनिकेटर और इसी से आप बन सकते हैं अ गुड लिसनर। सो वेल लिसनर, जल्दी से हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जाकर मुझे बताइए कि आपको हमारी गुफ्तगू कैसी लग रही है। सो इसी से मुझे अंदाजा होगा कि हमारे लिसनर्स अ गुड कम्युनिकेटर हैं या फिर अ गुड लिसनर। सो 01157100971 है मेरा और आपका रابطے का नंबर। सो इस नंबर को जल्दी से सेव कर लीजिए, क्योंकि यही वो वाहिद जरिया है जिसके थ्रू आप अपने ख्यालात हम तक पहुँचा सकते हैं। सो वेल लिसनर्स, दीवा डायलॉग में वक्त हुआ है अभी एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो जी आगे बैठते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब। और आप सभी से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आपने रहना है हमारे साथ, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, बंधे रहें और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें। हम बस यूं गए और यूं आए।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन लें।
2: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown ups by then.
4: We're not having that, are we?
3: No. Oi, hear that? It's water and cans.
5: And fix those drips and drops.
6: And take shorter showers, yeah?
7: Because when we work together, it all adds up.
8: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
9: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
0: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
10: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
0: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
10: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
0: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
10: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
11: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
0: Park Foods, जो नाम है मायार का।

वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी सुनती हुई समाधों को खुश आमदीद। डियर लिसनर्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट, आप सभी की दोस्त आरजे ज़ैनब फातिमा, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम दीवा डायलॉग, जहाँ हम बात करते हैं कुछ मुनफरिद, कुछ अलग और सबसे बढ़कर आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड डिस्कशन। सो यही द मेन रीज़न है कि आप सब बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि हम डेली बेसिस पर उन टॉपिक्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं जो कि हम सभी की ज़िंदगी का एक हिस्सा तो होते हैं, लेकिन हम बस उनकी तरफ कभी कभार ध्यान नहीं देते। सो आपने उन तमाम तरह चीज़ों की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि ये दो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जब आप प्रोफेशनली कहीं पर भी जाते हैं या फिर आप का सामना होता है डिफरेंट तरह के लोगों से। सो आई फील लाइक देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको नहीं मालूम कि वट इज़ कम्युनिकेशन, वट इज़ अ गुड कम्युनिकेटर एंड वट इज़ द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। और जैसा कि मोस्टली लोग जब जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं या फिर कहीं भी किसी ऐसी जगह जहाँ वो पहली मरतबा जाते हैं, वहाँ के लोगों से उनका जान पहचान नहीं होती और प्रोफेशनल लेवल पर आपको डेली बेसिस पर बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है। सो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि वट इज़ कम्युनिकेशन, आप किस तरह से लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड वट इज़ अ गुड कम्युनिकेटर। और साथ ही साथ आपकी लिसनिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई शख्स चाहता है कि वो प्रोफेशनल लेवल पर कामयाब हो, जिंदगी में खूब आगे जाए, तो जब तक आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होंगे तब तक आप जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सो ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो व्हेन आई वाज इन अ स्कूल, तो सब लोग अक्सर औकात मुझे कहा करते थे कि यू आर सो रूड। सो एट दैट टाइम मुझे रियलाइज़ नहीं होता था कि अच्छा लोग मुझे ऐसा क्यों कहते हैं। मैं तो लोगों से आराम से बात करती हूँ, मैंने कभी भी किसी के साथ कोई लड़ाई वगैरह नहीं की, तो I don't know कि लोग ऐसा क्यों समझते हैं, लोग ऐसे क्यों कहते हैं। But by the time I realized कि it's not because of my voice, it's not because of my expression, it's because of my tone. So tone की वजह से अक्सर औकात आप किसी शख्स से normal भी बात कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी tone इस तरह से हो कि उसको लगे कि आप rude हो रहे हो, तो it means कि ऐसा फील हो रहा है। सो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके लिए वो चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं, बट दूसरे लोगों के लिए वो चीज़ें नॉर्मल नहीं होती। सो दैट इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से आज हम इस टॉपिक के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। सो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं अपने उसी टॉपिक को जिसके पर हम बात कर रहे थे। सो जैसे कि अभी मैंने कहा कि टोन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो अब मैं आपसे शेयर करूंगी द पावर ऑफ टोन। सो सिंपल वर्ड्स में डिफरेंट टोन के साथ आप डिफरेंट कम्प्लीटली मीनिंग दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर वाओ, लेट्स ग्रेट, ये जनरली एक्साइटेड भी साउंड करता है और कहीं ना कहीं सरकास्टिक भी। अब डिफरेंस वर्ड्स में नहीं है, लेकिन डिफरेंस कहीं ना कहीं आपके टोन में है। इसीलिए अक्सर औकात डिफिकल्ट कन्वर्सेशन में सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि हम क्या कह रहे हैं, इट ऑल्सो मैटर्स हाउ वी आर सेइंग इट। सो अगर कभी आपको किसी को करेक्ट करवाना हो या फिर आप चाहते हैं कि आप किसी को करेक्ट होकर बताएं, सो एग्रेसिव टोन के बजाय आप हमेशा कोशिश किया करें कि आपकी टोन बिल्कुल काम होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही, यू कैन से मे भी हम इसे एक डिफरेंट वे में दे सकते हैं। सो मैसेज ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन को एड्रेस कर रहा है, लेकिन रिएक्शन कम्प्लीटली डिफरेंट है, और इसी रिएक्शन की वजह से सामने वाले को हो सकता है मे बी आपकी बात जल्दी क्लिक करे और वो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करे। सो इसीलिए द पावर ऑफ टोन इज रियली इम्पोर्टेंट। और अब हम इसके ऊपर ही बात करेंगे, जहां हम बात कर रहे हैं टोन, वहीं एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है विच इज़ कॉल्ड द बॉडी लैंग्वेज। सो अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ ये तमाम तो चीज़ें हो चुकी हैं, दैट्स द मेन रीज़न कि मैं इन सबसे रिलेट कर सकती हूँ और मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। सो मैं अक्सर लोगों के साथ जब बात कर रही होती हूँ, सो मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं तो नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रही हूँ, बट कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि आई एम अ बिट रूड। पर मैं कोशिश करती हूँ कि अब मैं इस चीज़ को थोड़ा ओवरकम करूँ, और जैसे जैसे मैंने द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन सीखी, तो साथ ही साथ मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम अपनी बात दूसरे शख्स को बिना अल्फाजों के भी समझा सकते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम खुद को हार्श या फिर सख्त टोन का इस्तेमाल करें।
सो इस तरह से टोन बहुत ही वैल्यू रखती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत पावर रखती है। ठीक उसी तरह से बॉडी लैंग्वेज भी बेहद इम्पोर्टेंट होती है। अब कम्युनिकेशन का एक एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग पार्ट होता है बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी भी कम्युनिकेट करती है, आई कॉन्टैक्ट, कॉन्फिडेंस अक्सर का शो करवाता है, कभी कभी नेचुरल स्माइल, ये दिखाती है कि आप कितने ज़्यादा फ्रेंडली हैं। सो कभी ओपन पोस्चर, कंफर्ट या फिर इम्प्रेशन दिखाता है। सो और क्रॉस्ड आर्म्स या कंटिन्यूसली फ़ोन चेक करना कभी कभी ये सिग्नल देता है कि पर्सन डिस्ट्रैक्टेड या फिर अनकम्फर्टेबल है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बॉडी लैंग्वेज हमेशा कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना चाहिए। सो हो सकता है कि करंट सिचुएशन की बिना पर उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरह से हो। जैसा कि अभी हमने बात की कि अक्सर अवकात अगर हम किसी शख्स को रैंडमली देखेंगे और हम देखेंगे कि वो कंटिन्यूसली अपना फ़ोन चेक कर रहा है, सो हमें फील होगा कि ओह मे बी ही इज़ डिस्ट्रैक्टेड और मे बी ही इज़ अनकम्फर्टेबल। बट ऑन द अदर साइड में भी हो सकता है कि उससे कोई ज़रूरी काम करना हो या फिर उसके बहुत सारी ईमेल्स पेंडिंग पड़ी हुई हों। सो हमेशा बॉडी लैंग्वेज आपकी कॉन्वर्सेशन के कॉन्टेक्स्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सो ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा किसी शख्स को उसकी बॉडी लैंग्वेज पर जज करें, लेकिन ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बॉडी लैंग्वेज आपकी कम्युनिकेशन में एक अहम किरदार अदा करता है और कभी कभी बॉडी लैंग्वेज सच भी कह रही होती है। सो वेल लिसनर्स, इसे ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे बट उससे पहले सुनते हैं एक ट्रैक, क्योंकि हमें अभी अभी एक फरमाइश मौसूल हुई है। सो ट्रैक है थोड़ा सा पुराना, आई एम श्योर जब आप ये ट्रैक सुनेंगे तो आपको भी अपने वो पुराने दिन याद आ जाएंगे, वो दिन जिन दिनों में आप इस ट्रैक को अक्सर औकात सुना करते थे। सो ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात। Stay tuned to the Faza 97.1 FM.

सो वेल लिसनर, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है. सो बॉडी लैंग्वेज को हमेशा हमने ये भी कहा कि कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक नहीं जज करना चाहिए. मिसाल के तौर पर अगर कोई आई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा, इसका ऑटोमेटिकली हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मे बी वो झूठ बोल रहा है. ये भी हो सकता है कि मे बी वो शाय है, मे बी नर्वस है, या फिर हो सकता है कि वो थका हुआ है. सो बॉडी लैंग्वेज को एक सिंगल सिग्नल से जज करने के बजाय ओवरऑल सिचुएशन को आपको अंडरस्टैंड करना बेहद ज़रूरी होता है. अब जरा बात करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन के ऊपर. जैसा कि आजकल, जैसे कि अब जो करंट दौर चल रहा है, इट्स द 2026. सो मेरा ख्याल है कि आजकल मोस्टली लोग नॉर्मल कन्वर्सेशन से या फिर नॉर्मल कम्युनिकेशन से डिजिटल कम्युनिकेशन की जानिब शिफ्ट हो रहे हैं. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होती है. सो आज के टाइम में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट डिजिटल बन चुका है. व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम DMs, ईमेल्स, कमेंट, वॉइस नोट्स. और डिजिटल कम्युनिकेशन का एक मेजर प्रॉब्लम है टेक्स्ट में टोन मिसिंग होती है. आप लिखते हैं ओके, आपके लिए इसका मतलब मे भी हो सकता है कि सिंपल ओके ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि सामने वाला ये समझ रहा हो कि आर यू एंग्री, मे बी यू आर रूड, या फिर आप थोड़ा सा एरोगेंट हो रहे हो. इसीलिए डिजिटल कम्युनिकेशन में अक्सर औकात क्लैरिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है. अगर मैसेज सीरियस है तो अननेसेसरी शॉर्ट रिप्लाइज अवॉइड करें, और स्पेशली मिसअंडरस्टैंडिंग के वक्त टेक्स्ट के बजाय आप कोशिश यही क्या करें कि आप सिंपल कॉल कर लें या फिर फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन कर लें, क्योंकि इट्स मोर हेल्पफुल. और नॉट एवरी मिसअंडरस्टैंडिंग नीड्स अ लॉन्ग पैराग्राफ, समटाइम्स इट नीड्स अ बेटर कम्युनिकेशन. सो अब मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ अपना एक एक्सपीरियंस. अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि मैं जब भी कभी किसी के साथ डिजिटल कम्युनिकेशन कर रही हूँ, या फिर मैं टेक्स्ट पे बात कर रही हूँ, या मे बी कॉल पर भी, सो मैं अवॉइड करती हूँ इस चीज़ को कि मैं कभी भी उसके साथ आर्ग्यूमेंट ना करूँ, क्योंकि आई डोंट नो कि द नेक्स्ट पर्सन वो क्या कर रहा है, वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है. मे बी वो हो सकता है कि वो टेंस्ड हो, या फिर उसकी अपनी ज़िंदगी में कोई इशू चल रहा हो. सो थ्रू टेक्स्ट मैं इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकती, तो इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं कभी भी किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट ना करूँ सोशल मीडिया पर या फिर सेल फोन पर. तो एक बार हुआ ये था कि मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी, एंड वी आर हैविंग अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, एंड सडनली मैंने कोई बहुत लंबी सी बात की. जैसे कि होता है ना कि आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर रहे होते हो तो आप उनसे शेयर कर रहे होते हो अपने थॉट्स कि अच्छा मैं ये सोच रही हूँ, या फिर आज के दिन मैंने ये काम किया, ये काम ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे हुआ, वो तमाम चीज़ें आप एक दूसरे के साथ कर रहे होते हो शेयर. सो मैंने ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसे शेयर किया सब कुछ, और उसका रिप्लाई लाइक ओके फाइन. सो मुझसे ना थोड़ा सा फील हुआ कि मे भी शी इज़ रूड, कि ये थोड़ी रूड हो रही है. मैं इसको देखो अपनी पूरे दिन की डिटेल्स बता रही हूँ, लेकिन ये मुझे किस तरह से रिप्लाई कर रही है. बट लेटर आई रियलाइज कि मैं उससे पूछ लेती हूँ, मे भी शी इज़ सफरिंग फ्रॉम समथिंग. सो मैंने उससे पूछा, और पूछने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि सुबह उसको एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिली हुई थी और उससे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था. सो डैट इज़ द मेन रीज़न कि शी इज़ वरीड, शी इज़ स्ट्रेस्ड. और मैं देखो मैं क्या सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी कि मे बी शी इज़ अवॉइडिंग मी, मे बी कि वो बहुत ज़्यादा रूड हो रही है. सो जब मैंने उससे पूछा, उससे मुझे बताया, तो मैंने उससे कहा कि आओ हम मिलकर करते हैं इस प्रोजेक्ट पर वर्क, और जब हम मिलकर किसी चीज़ पर वर्क करेंगे तो वो बहुत अच्छी और बेस्ट हो जाएगी. सो वेल लिसनर्स, यहाँ जो एक पॉइंट मैं आप सभी को समझाना चाह रही हूँ, विच इज़ कि अक्सर औकात जब आप मैसेजेस पर किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपको नहीं मालूम होता कि सामने वाला शख्स किस सिचुएशन से गुजर रहा है. सो इसके लिए आप हमेशा यही किया करें कि जब आपको कोई भी डिटेल कॉन्वर्सेशन करनी हो या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी हो, तो आप फेस टू फेस कर लिया करें या फिर कॉल वगैरह कर लिया करें. अब यहाँ देखें, अगर मैं अपनी दोस्त से ना पूछती कि तुम
क्या हुआ तुम्हें, तो मे बी वो मुझे खुद से ना बताती और इस तरह से फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती। सो आजकल यही एक प्रॉब्लम हमारी जेंजी फेस कर रही है, क्योंकि वो लोग बिलीव करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन पर, और जब आप किसी के साथ भी डिजिटल कम्युनिकेशन कर रहे होते हो तो इस तरह के छोटे मोटे मसले तो फिर साथ ही साथ चलते रहते हैं।

लिसनर्स, अब आप बात करते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप, इनका आपस में क्या कनेक्शन होता है. सो हर तरह के रिलेशनशिप में, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, आपका मैरिटल रिलेशनशिप हो, या फिर आपकी सिबलिंग्स बॉन्डिंग हो, तो हर तरह के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बेहद इम्पोर्टेंट होती है, बहुत अफेक्ट करती है. जब आप दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हो तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें अक्सर औकात लोग अवॉइड कर देते हैं, बट ये एक बहुत अहम रोल प्ले करती हैं. सो बेसिकली कम्युनिकेशन रिलेशनशिप की फाउंडेशन होती है, चाहे फ्रेंडशिप हो, फैमिली हो, वर्कप्लेस हो, या कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप. अगर कम्युनिकेशन वीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इजीली क्रिएट हो सकती हैं. हेल्दी कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि हम कभी किसी को डिसएग्री ना करें, कभी किसी की बात के खिलाफ मत जाएं, लेकिन डिसएग्रीमेंट कम्प्लीटली नॉर्मल है. लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि डिसएग्रीमेंट के वक्त हम दूसरे पर्सन को डिसरिस्पेक्ट ना करें. इंस्टेड ऑफ यू ऑलवेज डू दिस, आप ये भी कह सकते हैं कि आई फेल्ट अनकम्फर्टेबल व्हेन दिस हैपेंड. ये स्मॉल चेंज कॉन्वर्सेशन को ब्लेम या फिर आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है, और इसी तरह से आप अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स और फैमिली रिलेशनशिप्स में एक तवाज़ुन कायम कर सकते हैं. सो इस तरह से जब भी आप कभी किसी से बातचीत करते हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है. सो एक स्मॉल चेंज कॉन्वर्सेशन को हमेशा तब्दील कर सकता है. और एक इम्पोर्टेंट बात, आप इसकी जगह ये भी कह सकते हैं कि आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट बट आई सी इट डिफरेंटली. आप दूसरे को ये बता सकते हैं कि तुम्हारी बात मुकम्मल ठीक है, लेकिन मैं इसे किसी दूसरे पर्सपेक्टिव से या किसी दूसरे अंदाज से देख रहा हूँ. सो इससे ये होगा कि अगले इंसान को ऐसा नहीं लगेगा कि उसे आपकी बात बुरी लग रही है, और वो आपको पॉइंट भी समझ जाएगा. सो जब भी आप किसी भी जगह मौजूद हों तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है. सो वेल लिसनर्स, अब मैं आपसे शेयर करूंगी द गोल्डन रूल्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन, बट उससे पहले हमें एक सॉन्ग रिकमेंडेशन मौसूल हुई है, तो अभी हम सुनेंगे ये प्यारा सा ट्रैक. ट्रैक के उस पार फिर हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड टू द फजा 97.1 FM. हम बस यूं गए और यूं आए.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सबकी हिटेड में हाजिर हूँ, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे ज़ैनब फातिमा। तो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम दीवा डायलॉग, जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM पे। सॉरी लिसनर्स, एक बार फिर से आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ कि किस तरह से आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी कीमती राय हमसे शेयर कर सकते हैं। सो उसके लिए सिंपली आपको सेव करना होगा हमारा नंबर, जो कि एक बार फिर से मैं आप सबके लिए रिपीट कर देती हूँ, 01157100971। सो जी लिसनर्स, ये ना सिर्फ एक नंबर है बल्कि इसके थ्रू आप हमसे शेयर कर सकते हैं कुछ भी, एनीथिंग यू वांट। अगर आपको डेली लाइफ में कोई चीज़ बॉदर कर रही है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज़ में कोई भी पीस ऑफ एडवाइस चाहिए, या समटाइम्स आपका दिल करता है बातें करने का, सो आप इस नंबर के थ्रू हमसे शेयर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, और हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हम आपकी उस समस्या को ज़रूर हल करें और आपको अच्छी अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस दें। साथ ही साथ बताते चलती हूँ कि www.radiofaza.com.uk हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। सो इस वेबसाइट के थ्रू ना सिर्फ आप हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि आप जान सकते हैं रेडियो फजा 97.1 FM से जुड़ी हर खबर। सो आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप भी मेरी तरह इस फैमिली का हिस्सा बने, सो उसके लिए भी आप सिंपली यहाँ से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन किस प्रोग्राम में है आने वाला, सो हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी www.radiofaza.com.uk पे। सो वेल लिसनर्स, अब हमारे प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट चल रहा है, यानी कि आपको और मुझे साथ में तकरीबन हो चुका है एक घंटा से भी ज़्यादा। कैन यू इमेजिन कि हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं, बट स्टिल मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी हमने कोई बातचीत की ही नहीं, या फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी तो करने को बहुत सारी बातें थी लेकिन हमने वो नहीं की। सो कुछ इसी तरह से होता है जब आप किसी के साथ बात कर रहे होते हो और कम्युनिकेशन बहुत अच्छी जा रही होती है, या फिर समटाइम्स कन्वर्सेशन या फिर कम्युनिकेशन टू साइडेड होती है। सो जब भी कम्युनिकेशन टू साइडेड होती है तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप सामने वाले की बात से उकता जाएं या फिर आपको ऐसा लगने लगे। सो ये डिपेंड करता है कि आप दूसरे शख्स के फेवरेट हैं या नहीं। मैंने स्टिल दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनसे जब आप बात करते हैं तो वो आपको इतना अच्छा फील करवाते हैं, इतना कंफर्ट फील करवाते हैं कि बस आपका दिल करता है कि आप बातें करते चले जाएं और ये कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन चलती चली जाए। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर साइड पे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जो कि जब मैं उनसे बात कर रही हूँ वो अपने फ़ोन के साथ लगे होंगे, या फिर मुझे उनके बिहेवियर से ऐसा लगेगा कि I'm just bothering her। So, इस तरह से बहुत सारे different categories के लोग होते हैं, लेकिन आप अपनी communication से, अपनी conversation से दूसरे शख्स को तब्दील कर सकते हैं और दूसरे शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जा भी कर सकते हैं। सो ये सारी बात होती है communication की। So, इसीलिए मैं आपसे share करूँगी the golden rules of communication। पर अभी एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की फरमाइश हमें मौसूल हुई है। सो हमारे लिसनर हैं एक जो कि फरमा रहे हैं कि हम ये ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करें। सो ट्रैक थोड़ा सा इमोशनल है, मे भी हो सकता है उनका दिल भी किसी ने तोड़ दिया हो, या फिर कुछ अर्सा पहले उनका ब्रेकअप हो चुका हो, तो आज वो अपनी पुरानी मेमोरीज को दोबारा से याद कर रहे हों। सो हमारा काम है आपकी तमाम तर फरमाइशों को पूरा करना। सो प्ले करती हूँ ये प्यारा सा ट्रैक, ट्रैक की उस बार गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं।

सुपर लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय किया होगा। सो जैसे ही ये ट्रैक मैं सुन रही थी तो सडनली मेरे माइंड में कुछ आया, सो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके साथ भी उसको शेयर किया जाए। सो आज जब मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने एक पोस्ट देखी। द पोस्ट सेज लव इज़ वर्ब नॉट अ नाउन। अच्छा, अब इसके ऊपर जब बहुत सारे लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया थ्रू कॉमेंट सेक्शन, सो किसी ने कहा दिस इज एक्चुअली क्वाइट डीप टू अंडरस्टैंड बट डैम इट्स स्ट्रेट अप फैक्ट्स। सो ये चीज़ मुझे इतनी रिलेट की, मैंने सोचा कि आजकल की सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की सिचुएशन से रिलेट करते हैं बट स्टिल वो कह नहीं पाते। सो कुछ इसी तरह से ये जो हमारा ट्रैक था जो हमारे एक बहुत ही प्यारे से लिसनर ने हमें रिकमेंड किया था, वो भी इसी तरह से आपकी मेरी हम सब की ज़िंदगी से कहीं ना कहीं रिलेट करता है बट सम हाउ ड्यू टू द प्रेशर ऑफ सोसाइटी हम बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ को कंसीडर करते और हम कहते हैं कि नो हार्ट ब्रेक क्या होता है, हमारा दिल तो कोई भी नहीं तोड़ सकता। बट इट्स अ ट्रू फैक्ट कि इस दुनिया में हर शख्स का कभी ना कभी कहीं ना कहीं दिल तो टूटता है। सो जब किसी का भी दिल टूटता है तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो काविश के गाने सुनते हैं। सो हो सकता है हमारे लिसनर का भी आज से दिल टूट चुका हो, सो डैट इज़ द मेन रीज़न कि वो ये ट्रैक सुन रहे हैं। सो वापस से कॉन्टिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को जो कि था द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सो अब मैं आपसे शेयर करूँगी सम गोल्डन रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन कि किस तरह से आप इन रूल्स को फॉलो करके अपने कम्युनिकेशन को बेटर बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। सो हेयर आर, अब मैं आपसे क्विकली 5 गोल्डन रूल्स शेयर करती हूँ, ठीक है। सो सबसे पहला रूल नंबर 1, लिसन बिफोर यू रिस्पॉन्ड। सो पहले समझें और फिर जवाब दें। सो जब आप इस रूल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे कि जब भी कभी कोई आपसे बातचीत करता है, गुफ्तगू करता है और आप उसकी कन्वर्सेशन को समझते हैं, समझने के बाद आप जवाब देते हैं, सो ये सबसे पहली सीढ़ी होगी एक अच्छी कन्वर्सेशन के लिए। द सेकेंड रूल इज़ चूज़ योर वर्ड्स केयरफुली, क्योंकि हर थॉट को बोलना ज़रूरी नहीं होता और समटाइम्स हो सकता है कि जो बात आपके लिए काफ़ी हद तक नॉर्मल हो वो किसी दूसरे के लिए ना हो। सो ऑलवेज चूज़ योर वर्ड्स वेरी केयरफुली, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बातों की वजह से कभी कोई दूसरा शख्स हर्ट हो रहा हो। आजकल के दौर में मैंने जितना देखा है लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को वैल्यू नहीं करते, बस जो उनके दिल में आता है बोल के चले जाते हैं। हो सकता है उनकी किसी बात की वजह से अगला शख्स काफ़ी देर तक इमोशनल रहे या फिर रोता रहे।

चीज़ आपको बॉदर कर रही हो, कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो, बट आपने उसको सर पे सवार नहीं करना और कोशिश करना है कि आप अपनी टोन को हमेशा काम और कंपोज रखें। सो आप रूल नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं, विच इज डोंट अज्यूम। सो अगर कभी भी किसी की बात या फिर आप किसी से बात कर रहे हो, बात अनक्लियर हो, तो सिंपली आप उससे पूछ लें, व्हाट डिड यू मीन बाय दैट। अजम्पशंस मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमेशा रिश्तों को खोखला कर देती है। सो कभी भी कम्युनिकेशन के दौरान आपको लगे कि आपकी बात या फिर सामने वाले का बिहेवियर आपकी बात के अकॉर्डिंग नहीं है, तो अपनी ईगो को साइड पे करके आप सिंपली उसे पूछ लें कि सुनो, कुछ हुआ है, आर यू ओके। सो अगर आप इतना किसी से पूछ लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि इससे किसी की ईगो हर्ट होगी, लेकिन इससे ये ज़रूर होगा कि आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी। अब बारी आती है हमारे लास्ट फाइनल गोल्डन रूल ऑफ कम्युनिकेशन की, विच इज नो व्हेन साइलेंस इज बेटर। हर आर्गुमेंट का आंसर देना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी मैच्योर कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होता है कि आप सामने वाले की बात सुनें, समझें और खामोशी से उसका जवाब दें। सो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप पॉज लें, काम डाउन करें और फिर बात करें। सो और जहाँ ज़रूरत हो वहीं बात करें, जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ बात को रहने दें। सो अब मैं आपसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सो आई फील लाइक कि कुछ लोग, हर एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, और जैसे कि अभी हम कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशन की बातचीत कर रहे हैं, तो उसी से मेरे माइंड में ये चीज़ आई, मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। सो हमेशा मेरी लाइफ में ये होता है कि मैं जब भी कभी किसी से बातचीत करती हूँ तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं हर किसी की लाइफ में बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि आई नो सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है और किसी को भी हमारी एडवाइस या फिर हमारा ओपिनियन उस तरह से अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी कभार किसी जगह मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना ओपिनियन शेयर करना चाहिए, तो वहाँ मैं शेयर कर लेती हूँ अपना ओपिनियन। बट अगर मुझे ऐसा लगे कि इफ़ द अदर पर्सन डजंट वैल्यू माई ओपिनियन, वो मेरी बात को वैल्यू नहीं कर रहा, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं दोबारा ओपिनियन नहीं देती। मैं सोचती हूँ कि इट्स हर लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जिए, मेरा काम था अच्छी चीज़ समझाना, अगर किसी को नहीं समझ आती तो फिर ये टोटली उसकी ज़िंदगी है। तो आप सब भी अपनी ज़िंदगी का ये असूल बनाएं, आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, विच इज़ रियली गुड, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, इन 5 गोल्डन रूल्स पर जब भी आप अमल करेंगे तो आपकी जो कम्युनिकेशन की सीढ़ी है ये खुद ब खुद खूबसूरत बनती चली जाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर कभी आपको ऐसा लगे कि कोई शख्स आपकी बात को उस तरह से सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, तो बस आपने क्या करना है, आपने फिर उसके बाद उस शख्स को नहीं समझाना, आपने खुद को समझाना है, क्योंकि कभी भी ऐसा मत करें कि आप किसी के पीछे खुद की वर्थ को डाउन करें, क्योंकि जो लोग खुद को खुद ही वैल्यू नहीं करते तो दूसरे लोग भी कभी उनको वैल्यू नहीं करते। सो वेन यू नो योर वर्थ, द अदर पीपल सीज यू द वे यू सी योर सेल्फ। सो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि अमली ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं, कॉन्वर्सेशंस में, कम्युनिकेशन में, रिश्तों में और ज़िंदगी में कुछ नया हासिल करने में। सो वेल लिसनर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, टीवा डायलॉग का टॉपिक, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और वेल मुझे बहुत मज़ा आया आप सबके साथ गुफ्तगू करते हुए, और आई नो आप सबके बहुत सारे मैसेजेस भी हमें मौसूल हुए थे, चूँकि टाइम की शॉर्टेज है जिसकी वजह से मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी, तो लेकिन मुझे आपका फीडबैक मौसूल हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारी इन्फॉर्मेशन को, हमारी कम्युनिकेशन को इस कदर गौर से सुन रहे हैं कि आप साथ ही साथ अपना सजेशन भी हमसे शेयर कर रहे हैं। सो वेल लिसनर्स, इसी तरह से अपना फीडबैक हम तक पहुंचाते रहें, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना फीडबैक हमसे शेयर करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, साथ ही साथ उम्मीद मिलती है कुछ अलग करने का, कुछ नया करने का।

तो वेल लिसनर्स, बातें करते करते करते मुझे बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि आज हमने द स्पाइस किचन सेगमेंट तो किया ही नहीं, क्योंकि कन्वर्सेशन इतनी अच्छी हो रही थी कि मैं बस उसी में मगन रही। और

वक्त की किल्लत की वजह से अब हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं बचा। सो वेल लिसनर्स, कल हम कोशिश करेंगे कि हम सबसे पहले आपके साथ मज़ेदार से रेसिपीज को शेयर करें, क्योंकि आई नो हमारी डिवाइस वेट कर रही होती हैं कि हम हर दिन उनको कुछ अलग कुछ यूनिक रेसिपीज का बताएं। सो कल आपके इन तमाम तर क्यूरीज को हम ज़रूर फुलफिल करेंगे। फिलहाल के लिए प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और कोशिश यही करिएगा कि आप आज के दिन जिस किसी से भी बातचीत करें अपनी कॉन्वर्सेशन को, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें और बस खुश रहें और अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक जिए। कभी भी किसी के पीछे मत लगे, कभी भी किसी के ओपिनियन को अपनी ज़ात से ज़्यादा वैल्यू मत करें, क्योंकि जब आप दूसरों को खुद से ज़्यादा वैल्यू करते हैं तो वो फर्स्ट स्टेप होता है जहां आप अपनी वर्थ लूज़ कर देते हैं। चलो लिसनर, इस खूबसूरत सी मोटिवेटिंग की बात के साथ मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दे इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और बहुत सारी गॉसिप के साथ। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फिलहाल के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज। चीज़ों से जाते जाते आप सभी के लिए एक खूबसूरत सा प्यार सा ट्रैक प्ले करती चलती हूँ, तो इस ट्रैक को सुनते हैं, साथ ही साथ आप मुझे अलविदा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
1: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793 2।
4: आरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

जटका स्टाइल, लेकिन वो जरा है कि अच्छा लगता है। और इमरान खान साहब ने उस टाइम एक मतलब नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई सी, उस टाइम तो ऐसा म्यूजिक होता ही नहीं सी साडे पंजाब दे विच, ते इहो जी कोई शै मतलब उस टाइम नहीं बन रही सी लाइक, लेकिन उन्होंने एक मतलब कि इंटरनेशनल म्यूजिक सानू ऐसा दिता कि लाइक यार मतलब मजा बहुत आया उस टाइम इस ट्रैक का। मतलब कि फर्स्ट जो ट्रैक इन्हों का सी, इन्हों की भी एक स्टोरी मैं सुन रहा सा, कहते इन्हों ने बड़ा वेट किया लाइक जिस तरह के प्रोडक्शन चाह रहे सन उस तरह की प्रोडक्शन हो नहीं रही सी। दैन आफ्टर दैट इन्होंने जो मतलब प्रोड्यूसर ऐसा मिले फिर इन्होंने एल्बम किया, तो मतलब इन्होंने भी काफ़ी वेट किया, तो वेट करने तो बाद इन्होंने अपने टाइप का बंदा उठाया, तो फिर दैन उन्होंने म्यूजिक किया। हर बंदा किधर ना किधर चीज़ा फेस करता है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल बेसिकली हर जगह पर ही होती है। तो लेकिन यह जी चीज़ मैं जो नोट किया, एक गल की कहता कि तुम किसी चीज़ में जो लैके चलते हो कोई भी चीज़ है तो वह ऑटोमैटिकली लाइक तुम्हें पता है कि फिर उस चीज़ के हर्डल आ भी जाए कभी कदार, तो कदें नहीं भी आदि, तो जो ना आए तो शुक्र करना चाहिए, जे आ जाए तो मेहनत करनी चाहिए है जी। मेहनत तो मतलब कि देखो तुम मुँह तो नहीं हटा सक पिछे नहीं कर सकते, बस कहते ना फिर सिरा लाना होंगे फिर लाई दा जी। तो पर लो इमरान खान साहब ने मैंने उस टाइम मैंने याद आ गया, मैमरीज याद आ गई, स्कूल टाइम याद आ गया जी। अज तो पता लगता है अब पंजाब पहुँच गए हैं, उही सब कुछ चल रहा है लाइक उस टाइम। अच्छा बंदे नू वाकई नहीं पता लगता कि यार हर इंसान है ना, मैं गल अक्सर मैं सोचता वा यार बंदे नू अगले पल का कोई नहीं पता वो बंदा किथे होएगा किथे नहीं, लेकिन जिथे है वो जिथों सुन रहे हो जो जिथे बैठे है वह काम है उत्थे जिंदगी इंजॉय करना, ठीक है। कम से हो कम भी अपना कम इस तरह मतलब कि कम कोई भी कर रहे हो इस तरह लवो कि यार मतलब तुम इंजॉय करके काम कर रहे हो, लाइक ए नहीं मशीन ना बनो, लाइक तुम इस तरह है ना सोचो कि यार बस यह कम है ये मेरे ते मतलब मुसलत करता गया या मेरे ते बस मेरे ते पाती है हूँ मैं इनू किस तरह लैके चला या मैं की करा। लेकिन अगर मैं तुम्हें यह गल कह कि तुम इस काम इस तरह लैके जाओ कि उन्होंने इंजॉय करते रहो, और अपने काम जिहड़ा बंदा इंजॉय करता हुंदा ना वह ना थकदा है, तो वह टाइम जोन तो बाहर आ जाता है, उन्होंने यह नहीं पता हों कि भाई किस टाइम मैं ऑफ करना है किस टाइम नहीं। मोस्टली इस तरह होंगे कि लोग जो होंगे ना टाइम तो पहले ही तैयार होंगे ने कि यार मतलब घड़ी वेख रहे होंगे ने यार इस टाइम मैं जो ऑफ कर जाना है, तो यार उस काम नाल प्यार करो, उस तुसी अपने जो काम नाल प्यार करोगे तो ऑटोमैटिकली दिल भी लगेगा। तो कदी कदार इस तरह होंगे कि तुहानू काम लभ हों लाइक तुहानू उहदे नाल प्यार नहीं होंदा ते ना तुहाडा प्यार बन सकता है, लेकिन कोशिश करो कि उहदे नाल तुसी इस तरह ते कम अज कम तलक बना लो उस काम नाल कि तुहाडा जिहड़ा ना दिल लग भी जाए तो दिन भी लंघ जाए। तो यह तो मैं तुहानू कहां कि फिर तो शायरां नाल आइन होगी ना कि दिल भी लग जाए तो दिन भी लंघ जाए, लेकिन गल फिर उही है कि फिर उस तरह तुसी भी मतलब सैटिस्फाई रहिंदे हो ते तुहाडे जिहड़े मतलब कि तुहाडे कोल बॉस होवन किते तुसी जॉब कर रहे हो वह भी सैटिस्फाई रहिंदे ने, अगर तुसी बिजनेस कर रहे हो तो तुहाडे कस्टमर सैटिस्फाई रहिंदे ने। बस बंदा ना इत्थे मैं हिसाब जिहा लाया बई मेरा मैं जो हिसाब लाया मैं लाया बंदा इत्थे सिर्फ अपना मनवाण आया ते मनवांदे मनवांदे दुनिया तो तुर जांदा, तो क्यों ना जो तक इतने है वो गज वज के रो ठीक है, वक्त का तो पता को नहीं अगली सह का नहीं पता है तो गल कोई शक नहीं, लेकिन जो तक है वो तो फिर बस फिर सिरा लाओ जी कोई नहीं

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

वेलकम बैक। तुझे बात हो रही थी जिंदगी की उन छोटी छोटी खुशियों की जिन्हें हम अक्सर बहुत मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। कभी गौर किया है एक अच्छा सा जुमला किसी का खुलूस से पूछ लेना कि आप कैसे हैं, किसी दोस्त की अचानक कॉल, घर वालों के साथ बैठकर चाय का एक कप, ये सब चीजें बाहर छोटी छोटी होती हैं लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाती हैं। और शायद हमें जिंदगी से शिकायतें कम और शुक्र ज्यादा करना चाहिए क्योंकि जो हमारे पास है मुमकिन है किसी और के पास ये सब कुछ ना हो। तो आज एक छोटा सा काम कीजिए, अपने आसपास देखिए और ऐसी कम से कम ऐसी चीज़ें तलाश कीजिए जिस पर आप दिल से कहें अल्हम्दुलिल्लाह ये नेमत मेरे पास है। और यकीन करें जब इंसान शुक्र अदा करना शुरू करता है तो ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें पहले से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने लगती हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो फ़ज़ा FM 97.1 और मेरे साथ हैं आप, मैं हूँ आपका मेज़बान हुज़ैफ़ा हैदर। और अब बात का ज़रा रुख बदलते हैं क्योंकि आफ्टरनून मिक्स सिर्फ संजीदा बातों का नाम नहीं, यहाँ हल्की फुल्की गुफ्तगु भी होगी, रोज़मर्रा ज़िंदगी की बातें भी होंगी और कुछ ऐसी बातें भी जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लें। तो जहाँ कहीं हमारे साथ जुड़े रहें। अच्छा जी, ज़रा एक बात बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पूरा दिन मसरूफ रहते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं लेकिन जब रात को अकेले होते हैं तो अचानक एहसास होता है कि आज पूरा दिन गुजर गया और अपने लिए तो वक्त ही नहीं निकाला। हमारी ज़िंदगी भी अजीब हो गई है ना, सुबह आँख खुलते ही मोबाइल, फिर काम, फिर जिम्मेदारियाँ, फिर रास्ते की मसरूफियत, और दरमियान में अगर 5 मिनट मिल जाएँ तो हम कहते हैं चलो ज़रा मोबाइल देख लेते हैं और फिर वो 5 मिनट पता नहीं कब आधा घंटा बन जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमें वाकई रुकने की ज़रूरत होती है सिर्फ 5 मिनट के लिए, ना कोई फ़ोन हो, ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई बहस, ना किसी की फिक्र, बस खामोशी से बैठें और अपने आप से पूछें कि मैं कैसा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं जिस ज़िंदगी की तरफ जा रहा हूँ क्या वाकई वो ज़िंदगी मैं चाहता हूँ। ये सवाल शायद आसान नहीं लेकिन बहुत ज़रूरी है। और एक बात हमेशा याद रखिए, हर वक्त मजबूत नजर आना जरूरी नहीं, कभी थक जाएं तो आराम कर लीजिए, कभी दिल बोझल हो तो किसी अपने से बात कर लीजिए, जब कोई रास्ता समझना है तो अपने रब से बात कर लीजिए क्योंकि बाज़ औक़ात मसला हल नहीं होता, बस दिल को सुकून मिल जाता है और वो सुकून भी बहुत बड़ी नेमत है। और हाँ, प्रोग्राम अभी जा रही है, बातें भी जा रही हैं, मुस्कुराटें भी जा रही हैं और आफ्टरनून मिक्स भी जा रही है सिर्फ रेडियो फ़ज़ा FM 97.1 पर। मैं हूँ आपका मेज़बान हुज़ैफ़ा हैदर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, सुनते रहिए फ़ज़ा 97.1 FM।

वेलकम बैक दोस्तों। जिंदगी खूबसूरत तोहफा है और हर नया दिन आपके लिए एक नया मौका ले आता है। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए, रात चाहे कितनी ही काली क्यों ना हो, सूरज को निकलने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी मुस्कुराहट आपकी सबसे बड़ी ताकत है, तो बस दिल खोलकर मुस्कुराइए और इस हसीन पल को जी लीजिए। आज के इस खूबसूरत शो में हम बात करेंगे खुश रहने के छोटे छोटे राजों पर, सुनेंगे आपके पसंदीदा नगमे और शामिल करेंगे आपकी प्यारी प्यारी बातें। तो बगैर किसी तखीर के शुरू करते हैं सुरों का यह सफर एक ऐसे गाने के साथ जो आपके मूड को बिल्कुल ताजा दम और आपके दिल को खुश कर देगा। सुनते रहिए फजा 97.1 FM, जहां जिंदगी है वहां खुशी है।

वेलकम बैक टू फजा 97.1 FM। मैं हूं आपका अपना मेजबान मुज़फ़्फ़र हैदर, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम आफ्टरनून मिक्स। और देखिए, रेडियो की खूबसूरती ही यही है कि आप हमें देख नहीं रहे होते, लेकिन फिर भी एक अजीब सा ताल्लुक महसूस होता है। आप अपने काम में मसरूफ हैं, शायद किसी दुकान पर बैठे हों, शायद गाड़ी चला रहे हों, शायद घर में आराम कर रहे हों, शायद किसी दफ्तर में काम कर रहे हों, शायद किसी चाय के होटल पर दोस्तों के साथ बैठे हैं, या शायद मोबाइल में हाथ में लिए अपने मामूल के मुताबिक काम कर रहे हों। और दूसरी तरफ हम यहाँ बैठे आपसे बातें कर रहे हैं, ना चेहरा सामने है ना एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन आवाज़ के जरिए एक ताल्लुक ज़रूर कायम है। और शायद यही रेडियो की सबसे खूबसूरत बात है। एक आवाज़ कभी इंसान को उस वक्त भी हमारे साथ होती है जब इनकी कोई बात करने वाला नहीं होता। कभी आपका मूड अच्छा होता है तो रेडियो आपकी खुशी का साथी बन जाता है, और कभी दिल थोड़ा बोझल हो तो यही आवाज़ें इंसान को कुछ देर के लिए अपनी परेशानियों से दूर ले जाती हैं। तो आज भी कोशिश यही है कि आफ्टरनून मिक्स का ये वक्त सिर्फ वक्त गुजारने का जरिया ना बने, बल्कि आपके दिन में खूबसूरत सा वक्फा बने। ऐसा वक्फा जहां आप थोड़ी देर के लिए अपनी मसरूफियात भूलें, कुछ बातें सुनें, कुछ बातें सोचें, मुस्कुराएं, शायद किसी बात पर हंसे, शायद किसी बात पर दिल से कहें कि ये बात तो बिल्कुल मेरे दिल की है। और दोस्तों, आज जरा बात करते हैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी की। हम सब की जिंदगी कितनी ही मसरूफ क्यों ना हो, लेकिन जब सुबह आँख खुलती है तो दिन शुरू होने से पहले ही दिमाग में 10 काम चल रहे होते हैं। ये काम करना है, वहां जाना है, फुलां को फोन करना है, फुलां को जवाब देना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, दफ्तर जाना है, कारोबार देखना है, घर के मामलात देखने हैं, किसी ने पैसे देने हैं, किसी से लेने हैं, कोई काम रह गया, कोई वादा पूरा करना है, और इस सब के दरमियान हम खुद कहीं पीछे रह जाते हैं। हम दूसरों के काम याद रखते हैं, अपनी जरूरियात भूल जाते हैं, दूसरों के पैगाम का जवाब देते हैं, लेकिन अपने दिल की आवाज़ सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। दूसरों को कहते हैं कि आराम कर लिया करें, लेकिन खुद सुबह से रात तक एक ही रफ्तार से चलते रहते हैं। फिर रात को जब बिस्तर पर जाते हैं तो जिस्म कहता है कि बस अब आराम चाहिए, लेकिन दिमाग कहता है कि नहीं, अभी तो आज के सारे काम दोबारा सोचते हैं, और यही हमारी जिंदगी बन गई है। हम मुस्तकबिल की फिक्र में आज का सुकून खराब कर लेते हैं, और माजी के बारे में सोच कर मौजूदा लम्हा ज़ाय कर देते हैं। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा वक्त किस चीज पर खर्च होता है? अक्सर हम ऐसी चीज़ों पर वक्त खर्च करते हैं जिनका हमारी ज़िंदगी पर कोई ख़ास असर भी नहीं होता। किसी की पोस्ट देख के उस पर बहस शुरू कर दी, किसी ने एक बात कही, हमने पूरी शाम उसके बारे में सोच लिया, किसी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमने कई दिन दिल में वो बात रखी, किसी ने हमें जवाब नहीं दिया, हमने खुद ही उसका जवाब के 10 मतलब निकाल लिए, और फिर कहते हैं कि हमारे पास सुकून नहीं है। सुकून शायद इसलिए नहीं कि ज़िंदगी में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कभी कभी इसलिए भी नहीं कि हम बात पर झूठ बोलते हैं और हर छोटी सी बात को अपने दिल पर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। देखिए, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, हर बहस जीतना भी ज़रूरी नहीं है, हर शख्स को खुश करना मुमकिन नहीं है, और हर किसी को अपने बारे में वजाहत देना भी ज़रूरी नहीं। कभी कभी खामोश रहना भी बहुत खूबसूरत जवाब होता है। कभी किसी बात को नज़रअंदाज करना भी समझदारी होती है, और कभी ये समझ लेना कि यह मामला मेरे सुकून से ज़्यादा अहम नहीं, इंसान को बहुत सी गैर ज़रूरी परेशानियों से बचा लेता है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है दोस्तों, हमें वाकई सोचना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा ऐसी चीज़ों को दे रहे हैं जो कुछ साल बाद हमें भी याद नहीं रहेंगे। ज़रा अपने पिछले साल को याद कीजिए, एक साल पहले आप किस बात पर परेशान थे, शायद बहुत बड़ी परेशानी थी, उस वक्त लगता होगा कि बस यही मसला सबसे बड़ा है, ये हल हो गया तो ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, लेकिन आज वो मसला कहाँ है? क्या आज भी आप उसी शिद्दत से उसके बारे में सोच रहे हैं? शायद नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, और यही ज़िंदगी है जो मसला आज बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। मुमकिन है कुछ अरसे बाद आप पीछे मुड़ कर देखें और कहें कि मैं इस बात पर इतना परेशान क्यों था। इसलिए आज अगर कोई मुश्किल है तो उसका सामना ज़रूर करें, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी इस मुश्किल के हवाले ना करें। मसला अपनी जगह, आप अपनी जगह, परेशानी अपनी जगह है, अल्लाह की रहमत अपनी जगह। और जब इंसान ये समझ लेता है कि हर मुश्किल हमेशा नहीं रहती, तो दिल के अंदर एक अजीब सा हौसला पैदा होता है। कभी कभी हमें सिर्फ एक दिन और बर्दाश्त करना होता है, कभी एक हफ्ता, कभी एक महीना, और फिर अचानक हालात बदलने शुरू हो जाते हैं। हमें बस इतना करना है कि उम्मीद का दामन हाथ से ना छूटे, और उम्मीद की बात निकले तो एक और बात बहुत अहम है। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी का मुआवजा दूसरों से करते रहते हैं। वो कहाँ पहुँच गया, उसके पास क्या चीज़ है, उसने इतना कमा लिया, उसकी गाड़ी अच्छी है, उसका घर अच्छा है, उसके सोशल मीडिया पर इतने फॉलोअर्स हैं, उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी लगती है, लेकिन हमें सिर्फ दूसरों की जिंदगी का वो हिस्सा नजर आता है जो वो हमें दिखाना चाहते हैं। हमें उसकी परेशानियां नजर नहीं आती, हमें उसकी रातें नहीं मालूम, हमें उसकी मुश्किलात नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम कि जिस इंसान को हम देखकर कहते हैं कि उसकी जिंदगी कितनी बेहतरीन है, शायद वो खुद किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहा हो इसका हमें अंदाजा भी ना हो। इसलिए अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से मत नापें, मत कंपेयर करें। आपका रास्ता अलग है, आपका वक्त अलग है, आपकी आजमाइश अलग है, आपकी मंजिल अलग है, और अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए जिंदगी का एक अलग सफर रखा है। किसी को जल्दी कामयाबी मिलती है, किसी को देर से, किसी की मेहनत का नतीजा चंद महीनों बाद आ जाता है, और किसी को बरसों इंतजार करना पड़ता है। लेकिन देर का मतलब ये नहीं कि आपके लिए कुछ नहीं लिखा गया। कभी कभी देर सिर्फ इसलिए होती है कि इंसान उस चीज़ के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है, और जिसकी उसे अभी समझ भी नहीं होती।
اس لیے اگر آج آپ اپنی زندگی کے کسی مرحلے پر کھڑے ہو کر یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میری محنت کا نتیجہ کب آئے گا، میرے حالات کب بدلیں گے، تو آپ اپنے آپ سے ایک بات ضرور کہیں کہ میں کوشش جاری رکھوں گا، میں جلد بازی نہیں کروں گا، میں مایوس نہیں ہوں گا، میں اپنے رب سے امید نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ ناکامی انسان کی زندگی کا سب سے خطرناک پہلو ہے جس سے امید ختم ہو جاتی ہے. ناکام انسان دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن جو انسان یہ مان لے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے راستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے دل کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی ہر بات ماننے پر مجبور کرے. تھک جائیں تو تھوڑا رک جائیں، لیکن راستہ مت چھوڑیں. چلیے ذرا موڈ کو سوئنگ کرتے ہیں، کیونکہ آپ باتوں سے تھک چکے ہوں گے. سنیے گا ایک خوبصورت سونگ فضا 97.1 FM کے ساتھ، سنتے رہیے.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slusser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slusser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slusser. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।

वेलकम बैक टू रेडियो फजा एफएम 97.1 FM। बात हो रही थी नाकाम इंसान की कि नाकाम इंसान दोबारा खड़ा हो सकता है, लेकिन जो इंसान ये मान ले कि अब कुछ नहीं हो सकता उसके लिए रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने दिल को ये इजाज़त ना दें कि वो आपको हार मानने पर मजबूर करे। थक जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं, लेकिन रास्ता मत छोड़ें। रो लें, दिल हल्का कर लें, लेकिन ख़ुद को ख़त्म करने का मत सोचें। किसी से बात करने की ज़रूरत है तो ज़रूर बात करें। किसी अपने के पास बैठने की ज़रूरत है तो बैठें, और अगर किसी लम्हे में आपको लगे कोई इंसान आपको नहीं समझ रहा तो अपने रब के सामने बैठ जाएं। और वहाँ अल्फाज ज़रूरी नहीं होते, वहाँ सिर्फ एक आपकी आँख का आंसू दुआ बन सकता है। कभी इंसान कुछ मांग भी नहीं पाता, लेकिन अल्लाह जानता है कि दिल में क्या है। और यही तो ईमान की खूबसूरती है। हमें हर चीज़ नहीं जानते, ना ही हमें हर चीज़ चाहिए होती, लेकिन हमारा रब जानता है। हम हर रास्ता नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह देखता है। हमें मालूम नहीं होता कि अगला दिन क्या लेकर आएगा, लेकिन अल्लाह को मालूम होता है। तो फिर क्यों ना हम अपनी कोशिश पूरी करें और बाकी मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें। तो उस ज़िंदगी में एक और चीज़ बहुत कीमती है, और वो है लोगों की कदर करना। हम अक्सर लोगों की कदर इस वक्त करते हैं जब वो हमारे पास नहीं होते। जब कोई हमारे साथ होता है तो हमें उसकी मौजूदगी मामूली लगती है। वालदैन घर पे हैं तो मामूल लगता है, अब दोस्त फ़ोन करता है तो मामूल लगता है, बहन भाई साथ हैं तो मामूली लगता है, कोई हमारे लिए दुआ करता है तो मामूली लगता है। लेकिन एक दिन अगर वो शख्स हमारे पास ना हो तो हमें एहसास होता है कि जिस चीज़ को हम मामूल समझ रहे थे वो दरअसल कितनी बड़ी नेमत थी। इसलिए जब तक लोग आपके पास हैं उनकी कदर कीजिए। वालिदैन से बात करते हुए लहजा नरम रखिए, बच्चों से बात करते हुए उनकी बात सुनिए, अपने दोस्त को भी कभी खुद फ़ोन कर लिया करें। हर बार ये इंतज़ार ना करें कि सामने वाला ही फ़ोन करेगा, कभी आप पूछ लीजिए कि भाई कैसे हो। कभी किसी पुराने दोस्त को सिर्फ सलाम का पैगाम भेज दें, कभी किसी ऐसे शख्स का हाल पूछ लें जिससे काफ़ी अरसे से बात नहीं हुई, हो सकता है वाकई उसे आपकी ज़रूरत। और सबसे खूबसूरत बात यह कि अच्छा सलूक करने के लिए आपको अमीर होने की ज़रूरत नहीं है। किसी को मुस्कुराहट दे सकते हैं, किसी को इज्जत देख सकते हैं, किसी की बात सुन सकते हैं, किसी को रास्ता बता सकते हैं, ऐसे ही किसी की हौसला अफजाई कर सकते हैं, और आप किसी के लिए दुआ भी कर सकते हैं। और ये सब चीजें ऐसी हैं जिनके लिए आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। कभी कभी इंसान को सिर्फ ये सुनने की जरूरत होती है कि फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आप खुद सोचिए, आपको कोई शख्स कहे कि फिक्र ना करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपके दिल की क्या काफ़ियत होगी उस वक्त? क्या आप बयां भी नहीं कर सकते कि ये मिजाजन बंदा मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव कर रहा है। सिर्फ एक जुमला किसी इंसान को अंदर से मजबूत कर सकता है। इसलिए जहाँ मुमकिन हो लोगों के लिए आसानी पैदा करें। हमें मालूम नहीं कि हमारी एक छोटी सी अच्छी बात किसी की ज़िंदगी में कितनी बड़ी जगह बना लेगी। और शायद यही असल खूबसूरती है कि इंसान इस दुनिया से जाए तो उसके पीछे उसकी दौलत नहीं, उसका रवैया याद रखा जाता है। लोग ये याद रखते हैं कि आपने उनके साथ कैसा सलूक किया था, आपने उन्हें ज़िद दी या नहीं, आपने उनकी ज़रूरत के वक्त उनका साथ दिया या नहीं, आपने उनकी खुशी में खुशी महसूस की या नहीं। और यही चीज़ें इंसान को दूसरों के दिलों में ज़िंदा रखती हैं। तो आज के आफ्टरनून मिक्स भी इसी खूबसूरत सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां हम बात कर रहे हैं ज़िंदगी की, लोगों की, उम्मीद की, और उन छोटी छोटी चीज़ों की जो हमारी ज़िंदगी को वाकई खूबसूरत बनाती हैं। और आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो एक लम्हे के लिए अपने इर्द गिर्द देखिए। जो कुछ आपके पास है उसमें से कम एक चीज़ ऐसी ज़रूर होगी इस पर आप दिल से कह सकें अल्हम्दुलिल्लाह, और बस इसी एक लफ्ज़ में बहुत सुकून है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह के सांसें चल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने प्यारों को देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि आज का दिन हमें मिला, अल्हम्दुलिल्लाह कि गलतियों के बाद भी वापस आने का रास्ता मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह कल एक नया दिन होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह की उम्मीद अभी बाकी है। तो दोस्तों, रेडियो फजा एफएम 97.1 के आफ्टरनून मिक्स में ये खूबसूरत गुफ्तगू अभी जारी है। आप मेरे साथ रहिए, अपनी चाय का घूंट लीजिए, अपने काम के दरमियान थोड़ा सा सुकून लीजिए, और इस लम्हे को महसूस कीजिए। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, ज़िंदगी रास्ते में गुजरने वाले उन छोटे छोटे लम्हों का नाम भी है जिन्हें हम अक्सर जल्दी में नज़रअंदाज कर देते हैं। और शायद हमें सिर्फ इतना ही करना है कि थोड़ा सा आहिस्ता चलें, थोड़ा सा मुस्कुराएं, अपनों से बात करें, अपने रब को याद करें, और दिल से कहें जो कुछ मिला उस पर शुक्र, जो नहीं मिला उस पर सब्र, और जो आने वाला है उसके लिए उम्मीद। यही ज़िंदगी है, और यही हमारा आज का आफ्टरनून मिक्स है रेडियो फजा 97.1 FM पर।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

वेलकम बैक आफ्टरनून मिक्स। अभी जारी, आप जहां कहीं भी अपने रेडियो के साथ रहिए, अपनी मसरूफियात के दरमियान हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, क्योंकि बातें अभी ख़त्म नहीं हुई। एक बात दूसरी बात से निकलती है, एक बात से दूसरी बात निकलती है, और प्रोग्राम अभी जारी है, या एक से दूसरी बात याद आ जाती है, एक वाक़ा हमें दूसरे वाक़े से तक ले जाता है। और यही तो रेडियो की खूबसूरती है, यही कोई यहाँ किताब नहीं, एक सफ़ा ख़त्म हुआ तो बाब ख़त्म हो गया। ये तो एक गुफ्तगू है आप और हमारी, जब तक आप सुन रहे हैं गुफ्तगू जारी रहेगी। मैं हूँ हुज़ैफ़ा हैदर, आप सुन रहे हैं रेडियो फ़ज़ा FM 97.1, और ये है आपका आफ्टरनून मिक्स। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी इस महफिल में बहुत सी बातें बाकी हैं, बहुत से मौजूद बाकी हैं, कुछ मुस्कुराहटें बाकी हैं, कुछ यादें बाकी हैं, और शायद कुछ ऐसी बात भी है जो आपके दिल को छू जाए। तो आवाज़ के साथ कायम रखिए और आफ्टरनून मिक्स को सुनते रहिए सिर्फ रेडियो फ़ज़ा FM 97.1 पर।

असल बात यह कि इंसान गिरने के बाद उठता है या नहीं, और शायद ज़िंदगी हमें बार बार यही सिखाती है। बचपन में जब बच्चा चलना सीखता है तो वो एक दिन में नहीं सीखता, वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर कोशिश करता है, फिर एक कदम आगे बढ़ाता है। अगर वो पहली मरतबा गिर कर ये फैसला कर लेता कि मैं चल ही नहीं सकता, तो आज हम में से कोई भी चलना ना सीखता। लेकिन बच्चा नाकामी को नाकामी नहीं समझता, वो सिर्फ दोबारा कोशिश करता है। फिर हम बड़े हो जाते हैं और एक दो नाकामियों के बाद खुद को फैसला सुना देते हैं कि शायद मैं इस काबिल नहीं। नहीं दोस्तों, एक नाकामी आपकी पूरी सलाहियत का फैसला नहीं करती, एक गलती आपकी पूरी शख्सियत नहीं है, एक बुरा दिन आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं, और एक बंदा बंद दरवाज़ा ये साबित नहीं करता कि दुनिया में आपके लिए कोई दरवाज़ा बाकी नहीं है। कभी कभी हमें सिर्फ समत बदलने की ज़रूरत होती है, और ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। हमें सीखना चाहिए कि हर चीज़ हमारे मनसूबे के मुताबिक नहीं होगी, हमने जो सोचा ज़रूरी नहीं वैसा ही हो, हमने जिस शख्स पर इत्मीनान किया ज़रूरी नहीं वो हमेशा ही हमारे साथ रहे, हमने जिस रास्ते को कामयाबी का रास्ता समझा ज़रूरी नहीं कि वही रास्ता हमें मंजिल तक ले जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सफ़र ख़त्म हो गया है, बस शायद रास्ता बदल गया। और रास्ता बदलने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, इंसान को कभी कभी अपनी गलती माननी पड़ती है, कभी अपनी सोच बदलनी पड़ती है, कभी किसी फैसले पर दोबारा गौर करना पड़ता है, और ये कमज़ोरी नहीं है, ये समझदारी है। ज़िंदगी में सबसे मुश्किल कामों में से एक ये भी है कि इंसान अपने आप को ये मानने की इजाज़त दे दे कि मैं गलत था। हम अक्सर अपनी अना की वजह से ऐसी चीज़ पकड़ कर बैठे रहते हैं जो हमारे लिए ठीक ही नहीं होती।

सिर्फ इसलिए कि अगर मैं पीछे हट गया तो लोग क्या कहेंगे, लोग तो वैसे भी कुछ ना कुछ कहेंगे, आप कामयाब हो गए तो भी बात होगी, आप नाकाम हो गए तो भी बात होगी, आप खामोश रहेंगे तो भी लोग सवाल करेंगे, आप बोलेंगे तो भी लोग सवाल करेंगे, तो फिर क्यों ना इंसान वो करे जो उसके लिए दुरुस्त है। अपनी नीयत दुरुस्त रखें, अपनी मेहनत दुरुस्त रखें, अपने मामलात दुरुस्त रखें और बाकी लोगों की बातों को हर वक्त अपने दिल पर सवार ना करें। हम दूसरों की राय को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, फलां मेरे बारे में क्या सोचेगा, फलां क्या कहेगा, फलां को बुरा तो नहीं लगेगा। देखें, जहां किसी का हक बनता है वहां उसका ख्याल ज़रूर रखें, लेकिन हर शख्स किसी की पसंद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं है। आप हर इंसान को खुश नहीं कर सकते, और अगर आप हर एक को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आखिर में मुमकिन है कि आप खुद से दूर हो जाएं। इसलिए अपने उसूल वाज़े रखें, जो सही है उसे सही कहें, जो गलत है उसे गलत समझें, और जहां आपसे गलती हो वहां माजरत करने में देर न करें। माफ़ी मांगने वाला छोटा नहीं होता। बल्कि कई मरतबा माफ़ी मांगने के लिए ज़्यादा हौसला चाहिए होता है, और माफ़ करना ये भी एक बड़ी ताकत है। लेकिन माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर गलत रवैये को दोबारा कबूल करें। आप किसी को दिल से माफ़ कर सकते हैं और फिर भी इससे मुनासिब फासला रख सकते हैं। आप किसी के लिए दिल में नफरत ना रखें, लेकिन अपनी हदूद भी कायम रखें। ज़िंदगी में सुकून के लिए तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। ना हर इंसान को दुश्मन बनाएं, ना हर इंसान को अपने दिल के अंदर जगह दें। हर शख्स का अपना मकाम है। कुछ लोग सिर्फ रास्ते के मुसाफिर होते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा साथ चलते हैं, कुछ लोग लंबा सफर करते हैं, और कुछ लोग जिंदगी भर के साथ ही बन जाते हैं। लेकिन हर शख्स से एक जैसी तवक्को रखना खुद को तकलीफ देने के बराबर है। किसी से जितनी तवक्को रखेंगे उतना ही दिल से उसका हाथ थामेंगे और उसी के दिल के हाथ में हाथ देंगे, और जब तवक्को पूरी नहीं होगी तो तकलीफ भी उतनी होगी। इसलिए मोहब्बत करें, खुलूस रखें, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी इंसान को अपनी जिंदगी का मुकम्मल सहारा ना बनाएं। इंसान बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा हमेशा खुला है। और शायद यही वजह है कि मुश्किल वक्त में इंसान जब सब रास्ते बंद दिखते हैं तो एक रास्ता फिर भी खुला होता है, दुआ का रास्ता। और दुआ सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह ये मुझे चीज़ दे दे, दुआ कभी ये है या अल्लाह मुझे सही फैसला करने की तौफीक दे, अल्लाह मेरे दिल को सुकून दे, या अल्लाह मेरे अंदर सब्र पैदा कर, या अल्लाह मुझे किसी के लिए आसानी का जरिया बना, अल्लाह अगर ये चीज़ मेरे हक़ में बेहतर नहीं है तो मेरे दिल को इससे हटा दे, तो मेरे लिए बेहतर रास्ता खोल दे। ये दुआएं इंसान को अंदर से बदल देती हैं, और जब इंसान का अंदर बदलता है तो बाहर के हालात भी मुख्तलिफ महसूस होने लगते हैं। हम हमेशा हालात बदलने की दुआ करते हैं, कभी कभी अपने दिल के बदलने की दुआ भी करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हालात वही होते हैं लेकिन इंसान उन्हें देखने का अंदाज़ बदल लेता है। पहले एक मुश्किल पहाड़ लगती थी, अब वही मुश्किल एक सबक लगती है। पहले तन्हाई बहुत तकलीफ देती थी, अब वही तन्हाई इंसान को अपने रब के करीब ले आती है। पहले नाकामी शर्मिंदगी लगती थी, अब वही नाकामी तजर्बा बन जाती है, और यही पुख्तगी है। ज़िंदगी इंसान को आहिस्ता आहिस्ता सिखाती है कि हर चीज़ का जवाब फौरन नहीं मिलता, कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है, कुछ का जवाब हालात देते हैं, कुछ का जवाब तजर्बा देता है, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब शायद हमें बहुत बाद में समझ आता है। इसलिए हर चीज़ को फौरन समझने की कोशिश ना करें, कुछ चीज़ें वक्त पर छोड़ दें। अगर आज कोई बात समझ नहीं आ रही तो शायद कल समझ आ जाए। अगर आज किसी फैसले पर दिल मुतमईन नहीं तो जल्दबाजी ना करें, थोड़ा रुकें, सोचें, दुआ करें, मशवरा करें और फिर कदम उठाएं, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए फैसले कभी कभी इंसान का सफ़र मुश्किल बना देते हैं। और एक बात नौजवान दोस्तों के लिए भी, अपनी ज़िंदगी का मुवाज़ना सोशल मीडिया से मत करें। सोशल मीडिया पर हर शख्स अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा दिखाता है। किसी की कामयाबी नज़र आती है उसकी नाकामी नहीं, किसी का सफ़र नज़र आता है उसकी थकन नहीं, किसी का खूबसूरत घर नज़र आता है उसकी मुश्किलात नहीं, ऐसे ही किसी खुशी नज़र आती है उसके आंसू नहीं। इसलिए अगर आप किसी की ज़िंदगी को देखकर अपनी ज़िंदगी को कम समझने लगें तो थोड़ा रुक जाएं, अपने पास मौजूद नेमतों को देखें। आपने कितना सफ़र तय किया उसे देखें, 5 साल बाद आप पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं। शायद आपने बहुत कुछ हासिल किया है लेकिन आप सिर्फ इस चीज़ को देख रहे हैं जो अभी नहीं मिली। कभी कभी हमें अपनी कामयाबियों की फहरिस्त भी बनानी चाहिए। आपने तालीम हासिल किया, आपने कुछ सीखा, आपने मुश्किल वक्त गुजारा, आपने किसी को माफ़ किया, आपने किसी की मदद की, आपने किसी गलत रास्ते पर से वापस आने का फैसला किया, आपने अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छी आदत पैदा की, ये सब कामयाबी हैं। कामयाबी सिर्फ पैसे, गाड़ी, घर और अहदे का नाम नहीं, कामयाबी ये भी है कि आपके कल के मुकाबले में आज बेहतर इंसान है। आप बहुत जल्द पहले गुस्सा करते थे, अब सब्र करने लगे हैं। पहले छोटी बात पर दिल पर ले लेते थे, अब नज़रअंदाज करना सीखें। पहले दूसरों की कामयाबियों से परेशान होते थे, अब उनके लिए खुश होना सीखें। पहले अपने वालदैन के साथ वक्त कम गुजारते थे, अब उनकी कदर ज़्यादा करने लगे हैं, और यही तरक्की है।
हम बाहर की दुनिया को बहुत तेजी से बदलना चाहते हैं, लेकिन असल तब्दीली अंदर से शुरू होती है। आप अपने आप को बेहतर बनाएं, अपनी जबान बेहतर करें, अपना रवैया बेहतर करें, अपनी आदत बेहतर करें, अपना वक्त बेहतर इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने रब से ताल्लुक बेहतर करें, और फिर देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के बहुत से हिस्से खुद बेहतर महसूस होने लगते हैं। और सेहत की बात हुई तो एक बात यहाँ भी ज़रूरी है कि हम अपने मोबाइल की बैटरी ख़त्म होने पर फ़ौरन चार्जर ढूंढते हैं, लेकिन जब हमारा जिस्म और जहन थक जाता है तो हम उसे आराम नहीं देते। हम मोबाइल को 15% बैटरी पर भी कहते हैं कि बस अभी चल जाएगा, लेकिन खुद जब जिस्म कहता है कि आराम चाहिए तो हम कहते हैं नहीं, ये काम पहले मुकम्मल करना है। दोस्तों अपने जिस्म का भी ख्याल रखें, नींद पूरी करें, खाना वक्त पर खाएं, कुछ वह चहलकदमी करें, अपने जिस्म को हरकत दें और जहन को भी वक्फा दें। हर वक्त मसरूफ़ रहना कामयाबी की अलामत नहीं है, कभी कभी आराम भी काम का हिस्सा होता है, और अगर आपके पास घर में बच्चे हैं तो उनके साथ वक्त गुजारना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे हमेशा आपके पास ये चीज़ें याद नहीं रखते कि वो आपका वक्त याद रखते हैं, उन्हें याद रहता है कि अब्बू मेरे साथ बैठे थे, अम्मी मेरी बात सुनती थी, घर में मेरे साथ हंसा जाता था, मुझे डांट के बाद समझाया भी जाता था। ये छोटी चीज़ें बच्चे के अंदर पूरी ज़िंदगी रहती हैं। इसी तरह वालिदैन के साथ वक्त गुजारना भी ज़रूरी है। एक वक्त आता है जब इंसान चाहता है काश मैंने उनके साथ वक्त गुजारा होता। इसे जब मौका अभी मौका है अभी कदर कर लीजिए, किसी का इंतज़ार ना करें, किसी ख़ास मौके का इंतज़ार ना करें। मोहब्बत के लिए कोई कैलेंडर नहीं होना चाहिए, शुक्रिया कहने के लिए कोई ख़ास दिन नहीं होना चाहिए, माफ़ी मांगने के लिए ईद का इंतज़ार नहीं चाहिए, वालिदैन को गले लगाने के लिए किसी तकरीब की ज़रूरत नहीं है, दोस्त को फ़ोन करने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। ज़िंदगी अभी बाकी है, और इसी ज़िंदगी में हम आपको सुनवा देते हैं एक खूबसूरत सा सॉन्ग। सुनिएगा और सर दुनिएगा, सुनते रहिए फजा 97.1 FM, क्योंकि फजा 97.1 FM आपका अपना रेडियो है।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
8: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: पंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फजा 97.1 एफएम एंड आपके लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान, आपका होस्ट एंड आपका दोस्त उस्मान खान। वेलकम, खुश आमदेद जी अनु सद, बिस्मिल्लाह, पखैर राग ले अस्ता लविस्ता आओ का ना दिल तराशे। उम्मीद वासेगा जी, जहाँ जिस हाल में होगा खुशबाश होकर अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन बनाने की तगदों में मशगूल होगा, और अगर नहीं है तो उसको हो जाना चाहिए, क्योंकि चार दिन की ज़िंदगी है, दो गुजर चुके हैं, दो रह चुके हैं, और जो दो रह चुके हैं इनको बेहतर है कि अच्छे तरीके से गुजारा जाए, और अच्छे तरीके से गुजारने के लिए अच्छा तरीका इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। और अच्छे तरीके इस्तेमाल करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो है हाज़िर दिमागी। आपको हाज़िर दिमाग रहना होता है, मेंटली फ्रेश रहना होता है, तभी जाकर आप अपने तमाम तर मामलात को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। और दिमाग को फ्रेश करने के लिए आपका मेज़बान उस्मान खान मौजूद है आपके साथ प्रोग्राम ड्राइव टाइम में। इस वक्त जो जहाँ जिस हाल में भी मुझे सुन रहे हैं, अपने होने के एहसास मुझे दिलाए और मुझे बताएं कि आप फलां इब्ने फलां फलां जगह से मुझे सुन रहे हैं, गाड़ी ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं, घर में मुझे सुन रहे हैं, ऑफिस में सुन रहे हैं, या फिर आईटी पार्टी के बीच में मेरे साथ मौजूद हैं। खैर, जहाँ भी जिस हाल में भी हैं, जिस तरह भी मुझे सुन रहे हैं, बस बता दीजिएगा। और बताने का तरीक़ाकार जो है वो थोड़ा सा आगे चल के आपको बताएंगे, अभी अभी तो आए हैं, थोड़ा बैठिए तो सही। अव्वल जना प्रोग्राम जिसका नाम ड्राइव टाइम है, बंदे ने चीज़ जिसका नाम उस्मान खान है, और रेडियो आपका अपना फजा 97.1 एफएम एंड आल्सो डैब। इस प्रोग्राम में करते हैं हम खुद मोमस्ती, हंगामा, हल्ला गुल्ला, और वो तमाम दर बातें जो आपके दिल में छुपी होती हैं, वो तमाम सारे दिन की थकावट जो है आपने इस प्रोग्राम में उतारनी होती है, वो मेरे से बातें करके उतारनी होती है, माइंड को ज़रा फ्रेश करना होता है, क्योंकि अगर इस वक्त मोस्टली लोग जो हैं वो अपने ऑफिस से घर की तरफ रवा दवा होते हैं, तो जब बंदा घर की तरफ जा रहा होता है तो सारे दिन की थकावट जो उसके चेहरे से आया होती है, और वो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अगर आपके चेहरे से किसी भी किस्म का गुस्सा या थकावट नज़र आ रही है तो उसको घर के दरवाजे पर रख कर फिर घर के अंदर एंटर होइएगा, क्योंकि आपके घर वाले जो हैं वो आपका यह थका हुआ फेस नहीं देखना चाहते, लेकिन आपके चेहरे पर फ्रेशनेस देखना चाहते हैं। सारे दिन की बातें उन्होंने आपके लिए जमा करके रखी होती हैं, और आपके बच्चे, आपकी मिसेज, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, ये तमाम तर वो लोग हैं जो आपके इंतज़ार में होते हैं, और अगर आप इस तरह का गला सड़ा मुँह लेकर जाएँगे तो यकीनन उनके दिल में अगर कोई बात होगी भी तो वो आपसे नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी जाएँ अपने चेहरे को फ्रेश लेकर जाएँ, और सबके साथ घुल मिल कर बैठें, कुछ वक्त जो है फ्रेश होने से पहले उनके साथ गुजारें। और हाँ, अगर आप खाली हाथ घर जा रहे हैं तो बहुत बुरी बात है, खाली हाथ बिल्कुल घर नहीं जाना चाहिए। आप एक चॉकलेट का पैकेट लेकर जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ घर ज़रूर लेकर जाया करें जब भी आप घर में जाते हैं। तो आपके बच्चे हैं या नहीं हैं, मिसेज हैं या नहीं हैं, माँ बाप तो होंगे ना, अब वो भी नहीं है, यार दोस्त भी नहीं है, कोई भी नहीं है, अकेले रहते हैं, कोई मसला नहीं है, अपने लिए ले जाए। ज़रा सोच के मुझे बताइएगा कि आखिरी टाइम पे आपने खुद को कब गिफ्ट दिया था। दूसरों को तो देते हैं खुश करने के लिए, कभी अपने लिए कुछ दिल किया अपने आप को गिफ्ट करने का? अगर नहीं किया तो आज से इस बात की रूटीन बना लीजिए कि आज से आप अपने लिए भी कोई ना कोई गिफ्ट खरीदेंगे, मंथ में एक दफ़ा, वीक में एक दफ़ा, साल में एक दफ़ा, लेकिन एटलीस्ट अपने लिए खुद कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर खरीदिएगा जो आप अपनी ज़ात को खुद दे सकें, एक अंदरूनी खुशी मिलेगी, कभी करके देखिएगा। वजना प्रोग्राम में शामिल होने का तरीक़ाकार भी उन लोगों को बता देते हैं जिन्होंने आज पहली बार फजा 97.1 एफएम पर हमें ट्यून किया है या डैब पर हमें सुन रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मैं आपको एक अदद नंबर बताऊंगा, उस नंबर का नोट कीजिएगा, सेव कीजिएगा, सेव करने के बाद व्हाट्सएप पर जाइएगा, वहाँ पर जाकर कोई भी अपनी पसंदीदा गज़ल, नज़म, चंद अशआर, कोई कोटेशन, कोई बात, कोई सलाम, कोई दुआ, या कहीं दूर बैठे अपने किसी प्यारे के नाम कोई भी खूबसूरत सा पैगाम लिख कर भेज दीजिएगा। जल्दी से मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन कर लीजिए और नंबर नोट करिए, द नंबर इज 0115 7100971। आई अगेन रिपीट दिस नंबर इज वेरी स्लोली स्लोली, 0115 7100971। इस नंबर को सेव कीजिए और व्हाट्सएप पर जाकर अपना नाम लिखकर मुझ तक पहुंचा दीजिए। हवा के दोष पे लहराता गुनगुनाता सनसनाता हुआ आपका खूबसूरत सा पैगाम जैसे मेरे काका कंप्यूटर की स्क्रीन पर चकमगाएगा,
हजूर सुनते हुए तमाम दर खूबसूरत सी समाहतों की नजर हो जाएगा। सो वाई यू वेटिंग, जब तक आप मैसेज करते हैं तब तक आपको बताते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा और किस तरह बन सकते हैं। यानी कि अगर आप तक रेडियो की ट्रांसमिशन ठीक से नहीं पहुंच पा रही, कोई रोला रपा है, तो फिर आपने करना क्या है, आपने प्यारे से मोबाइल फ़ोन के गूगल पे जाना है और गूगल पर जाकर आपने हमें लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू ज्वाइन करना है। उसके लिए आपने गूगल पर लिखना है radiofaza.co.uk UK जी हाँ, radiofaza.co.uk पे आप जाएंगे, पहली आने वाली वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा और मुझे लाइव सुन लीजिएगा। इसके अलावा हमारे तमाम तरह आरजेस की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ से मिल जाएगी, कौन सा आरजे किस टाइम पे कौन सा प्रोग्राम करता है, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन और आप चाहते हैं कि रेडियो फजा आपके बिजनेस को प्रमोट करने में आपका साथ दे, सो मोस्ट वेलकम जनाब, आप हमारी मार्केटिंग टीम से रابطہ कर सकते हैं। इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रابطہ कर लीजिए, वेबसाइट पे रابطہ कर लीजिए, जहां आपका दिल करे आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। रेडियो फजा आपकी बिजनेस को प्रमोट करने में आपका पूरा पूरा साथ देगा, इनफैक्ट आपके बिजनेस को चार चांद लगाने में आपका साथ देगा। अगर ये रास्ता भी मुश्किल लगता है तो तीसरा रास्ता हमारे पास एप्लीकेशन का है। उसके लिए आपके मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर है या फिर एप्पल स्टोर है, उसको ओपन कीजिएगा, सर्च बार में जाइएगा और जाकर लिखिएगा रेडियो फजा 97.1 FM। जी हाँ, RADIO FAZA 97.1 FM सर्च कीजिएगा। आने वाली ये खूबसूरत सी वेबसाइट तो बता चुके हैं, इसको एप्लीकेशन कहते हैं, माँ सदके जाए। हाँ जी, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा, पर्पल बैकग्राउंड के साथ एक खूबसूरत सा गोल्डन माइक आपको मिलेगा, बस उसी वाली को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। सो उसके बाद दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह आसानी आप बैठे मुझे सुन सकते हैं, बशर्ते इंटरनेट आपके पास मौजूद होना चाहिए। ना सिर्फ मुझे सुन सकते हैं बल्कि 24/7 आप किसी भी वक्त रेडियो फजा को ट्यून कर सकते हैं, कोई ना कोई यार से आपको अपनी खूबसूरत सी आवाज़ से ज़रूर अपनी तरफ खींचेगा। और एक और रास्ता है, अगर आप ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं तो आपकी गाड़ी में अगर डैब मौजूद है तो डैब पर सिर्फ फजा ट्यून कर लीजिएगा और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइएगा। ये वो तमाम तर रास्ते हैं जिन रास्तों के होकर अगर आपने मुझ तक पहुंचना है और मेरी गाड़ी में मेरे साथ बैठना है, तभी तो हम ड्राइव को मज़ीद ड्राइव जोन बना सकेंगे। तो जब तक आप लोग प्रोग्राम में मेरा साथ देते हैं, तब तक आपको एक बड़ा ही खूबसूरत सा ट्रैक सुनाता हूँ, उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आने वाला है। ट्रेंडिंग सॉन्ग है जादू। अच्छा, ये वो वाला जादू नहीं है, ऋतिक रोशन वाला, ये एक नया जादू है। सो आइए आपकी समातों पर जादू जगाते हैं, आपको अपना बनाते हैं। ड्राइव करते हुए थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा और स्पीड को हल्का कर लीजिएगा, मोबाइल फोन से नजरें हटा लीजिए और सामने स्क्रीन पर देखिए, मोबाइल की नहीं गाड़ी की। हल्की हल्की साथ चुटकियां बजाते रहिए, म्यूजिक को एंजॉय कीजिए। लौट कर आते हैं वापस इस खूबसूरत सी आवाज के उस पर। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू लिसनिंग फॉर द 97.1 FM एंड आल्सो डैब।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
6: Radio Bazaar 97.1 FM.

ऑलराइट वंस अगेन वेलकम बैक आ चुके हैं जनाब एक छोटी सी प्यासी कमर्शियल ब्रेक के उस पार आपने सुना खूबसूरत सा म्यूजिक म्यूजिक उस पार आपका बनाने अच्छे जस्वान खान आपके साथ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं। नया नवे तमाम तर मौजूद मेहमानों को खुश आमदेद कहेंगे अपने प्रोग्राम में और बेहद शुक्रिया आप तमाम तर समातों के जिन्होंने इन खूबसूरत से लम्हात में खूबसूरत से रेडियो 97.1 FM को ट्यून कर रखा है। जनाब मुझे कहते हैं उस्मान खान प्रोग्राम सुन रहे हैं आप ड्राइव टाइम और इस ड्राइव टाइम में हम मौज मस्ती तो करते करते हैं लेकिन साथ साथ कोशिश करते हैं कि आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें भी आपके साथ शेयर करें। वो क्या है ना कि ज़िंदगी में और कुछ हो ना हो अच्छे काम लाजमी होने चाहिए क्योंकि कल कला अपने बच्चों ने भी तो दसना है ना यू नो सो खैर जी प्रोग्राम में हम अच्छी अच्छी बातें भी शेयर करेंगे आपके साथ। उम्मीद है कि अगर आप मेरी किसी एक बात को भी फॉलो कर लेंगे तो हो सकता है कि मेरे प्रोग्राम करने का मकसद पूरा हो जाए, मेरी एक छोटी सी बात से आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छी तब्दीली जो है वो रुनुमा हो जाए। अगर अच्छी तब्दीली आपकी ज़िंदगी में आ गई तो सारी ज़िंदगी मैं आपकी दुआओं में रहूँगा, फिर एक हमारा एक अच्छा रिश्ता बन सकता है, चाहे वो सिर्फ दुआओं की हद तक हो चाहे वो सिर्फ सोचने की हद तक हो लेकिन एक अच्छा रिश्ता बन सकता है। वो कहते हैं ना कि रिश्तों का ना होना इतना तकलीफ देह नहीं होता जितना कि रिश्तों के होते हुए एहसास का मर जाना होता है। तो आपको अगर रिश्तों से तकलीफ़ पहुंचती है तो डजेंट मैटर, बस ख्याल इतना कीजिएगा कि उन रिश्तों में एहसास ख़त्म ना हो जाए। ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपकी तरफ से रिश्ते में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है और अगला पर्सन जो है जिसके साथ आपका रिश्ता है उसकी तरफ से कोई कमियाँ कोताहियाँ गलतियाँ हैं तो आप उसकी वजह से रिश्ता ही ख़त्म कर दें या ख़त्म, बल्कि मैं तो कहता हूँ ना ही ख़त्म करें, बस एहसास इस चीज़ का रखिएगा कि उस रिश्ते में हल्का फुल्का एहसास बाकी है। यानी पंजाबी की कहावत आपको याद होगी, बचपन में सुना करते थे, कहने ने कि नो वन आलू मांस नहीं निखरदा, चाहे कोई आपका जो अपने सगे होते हैं आपके जो रिश्ते होते हैं खालिस रिश्ते खून के रिश्ते जो होते हैं वो चाहे जैसे मर्जी हो जाएं जितने मर्जी बुरे हो जाएं लेकिन फिर भी वो आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। अगर आप उनको साथ ना भी रखना चाहें तो ज़िंदगी के किसी न किसी मुकाम पर ही जाकर वो लोग आपको उन आपकी पहचान जो है उनकी वजह से भी हो सकती है। तो नो वन आलू मांस कभी नहीं निखरता, यानी कि नाखूनों से मांस जुदा कभी भी नहीं हो सकता। तो इसी तरह आपके रिश्ते जो हैं वो आपसे अलग नहीं हो सकते, हाँ वक्ती तौर पे दूर हो सकते हैं, आप उन्हें भुला सकते हैं या वो आपको भुला सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी किसी न किसी मुकाम पर जाकर आपकी पहचान या उनकी पहचान आपकी वजह से ज़रूर होती है। तो इस वजह से कभी भी अपने रिश्तों से दूर ना हो। रिश्ता अगर आप लगता है कि आपके रिश्तों की वजह से आप थक गए हैं तो डजेंट मैटर, आप उसमें बेहतरी लाने की कोशिश कर सकते हैं, एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा चाहे 10 दफ़ा लेके आने पड़े लेकिन कोशिश करें। हमारे यहाँ ये बड़ा कॉन्सेप्ट बन चुका है कि हम रिश्तेदारों को बड़े बुरे तरीके से याद करते हैं, बड़े बुरे तरीके से बुलाते हैं, रिश्तेदार ऐसे होते हैं रिश्तेदार वैसे होते हैं। हर किसी को ये लगता है कि आपके अच्छे वक्त में आपके रिश्तेदार जो हैं वो आपका साथ देते हैं और बुरे वक्त में आपका साथ नहीं देते। तो बजाय ये चीज़ सोचने के कि रिश्ते जो हैं वो अच्छे वक्त में आपका साथ देते हैं और बुरे वक्त में नहीं देते, तो आप बुरे वक्त में उन्हें याद ही ना करें, आप सिर्फ अच्छे वक्त में उन्हें साथ रखें। देखें रिश्तों का साथ होना बड़ी बात होती है, जैसे वो कहते हैं ना घर में बुज़ुर्गों का होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में उस तरह की वो चीज़ ना रह गई, यानी कि आपके अगर वालिद साहब हैं और वो बूढ़े हो चुके हैं वो शायद आपको अब कमा के नहीं दे सकते लेकिन उनका घर में होना ही बड़ी बात होती है। तो सेम एज इट इज़ आपके रिश्तों का आपकी ज़िंदगी में होना ही बड़ी बात होती है, चाहे वो अच्छे वक्त के साथी हों या बुरे वक्त के साथी हों, एटलीस्ट साथी तो है ना। वो किसी ने कहा था ना कि तुमसे तो मेरे दुश्मन ही अच्छे हैं, कम से कम ये तो कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वेल जनाब आप लोग प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। नया नंबर जो भी हमारे सामाइन हैं आपको बताते चलें कि 0115710097 पे आपने व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज चाहे तो कॉल करके मेरा साथ निभा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ओके रिमशा हमारा साथ दे रही हैं और कहती हैं मैं ब्रेडफोर्ड से आपका साथ दे रही हूँ और आपने रिश्तों की बात की है तो मैं आपको बता दूँ कि मैं वो लड़की हूँ जो हर रिश्ते को खोने के डर से उसके मुताबिक ढलने की कोशिश करती हूँ और बुरी तरह रौंद दी जाती हूँ। ओए होए होए
तेरा बेड़ा तर्जे। देखिए जी, मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि आप अगर रोंद दी जाती हैं, अगर आपके रिश्ते आपको नहीं समझ रहे, तो इट्स ओके, आप उनको समझ लीजिए। कोशिश करें कि देखिए, आप जब किसी इम्तिहान में बैठते हैं, एक दफ़ा फेल होते हैं, आप फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर वो ट्राई ट्राई अगेन वाली कहानी तो आपने सुन रखी है ना। तो रिश्तों के मामले में भी यही चीज़ होती है कि देखें, आप ये सोचें कि उन्हें चाहिए क्या आपसे। जो चीज़ उन्हें चाहिए होती है, आप वो चीज़ उन्हें दे दें। मतलब अगर वो आपसे इस चीज़ की डिमांड रखते हैं कि आप उनको अच्छा खिलाएं पिलाएं, आप उनके साथ अच्छे बिहेव करें, आप उनकी ज़रूरतों की, ख्वाहिशों की ख्याल रखें, तो आप रख लें ना। अपने बच्चों के साथ आपका रिश्ता है, आपके माँ बाप के साथ आपका रिश्ता है, उनके लिए भी तो करते हैं। तो ये जो रिश्तेदार हैं, ये भी आपके या उनके कुछ ना कुछ लगते ही हैं। तो खुशी होती है कि जब आप अपने किसी पर खर्च करते हैं। बेहतरीन सदका ये है कि अपने पर खर्च करना और फिर अपनों पर खर्च करना। तो आप अपने समझ के उन पर खर्च कर दिया करें, कोई बात नहीं, सदके दा सदका ही सही।

वेल उम्मीद है कि जी आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, और उसके बावजूद अगर आप नहीं समझना चाहते तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वो कहते हैं समझने वाले समझ गए थे, ना समझानो की, लेकिन कोशिश करें कि रिश्तों को गवाइएगा नहीं, खो मत दीजिएगा इस डर से कि देखी जाएगी। यकीन करें हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं, ये कहते हैं कि देखा जाएगा, टाइम आएगा, वक्त आएगा तो देखा जाएगा। मैं दावे से ये बात कहता हूँ कि जब वक्त आता है ना तो फिर देखने नहीं होता, फिर बंदा नसंदा राह लभद है तो भी नहीं लभदा। सो इस वजह से कभी भी इस बात को मत कहिएगा कि वक्त आएगा तो देखी जाएगी, यकीनन वक्त आने पर नहीं देखा जाता। इसलिए पहले से ही तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अपने साथ कैरी कर लिया करें, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए रिश्तों का साथ होना ज़रूरी है। अच्छे हों या बुरे हों, रिश्ते रिश्ते होते हैं। वो बड़ा ही खूबसूरत सा गाना भी तो था ना, अपने तो अपने होते हैं। मैं सोच ही रहा था किसी दिन मैं इसको शामिल करूँगा, लेकिन वो थोड़ा सा सेंटी हो जाता है ना, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि ना ही शामिल किया जाए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब बात चूँकि चल पड़ी है तो हम ज़रूर शामिल करेंगे। बूबी देओल, सनी देओल और धर्मेंद्र साहब पर पिक्चराइज हुआ था ये गाना, खूबसूरत सा सोनू निगम की आवाज़ थी और हिमेश रेशमिया भी इनके साथ थे। उम्मीद है कि आपको ये ट्रैक ज़रूर अच्छा लगेगा, और ये ट्रैक जो है आपको अपनों की याद ज़रूर दिलाएगा। सलीजी ये खूबसूरत सी आवाज़, आप सभी खूबसूरत सी सवादों की नज़र, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये ख़ास तौर पर ट्रैक मैं फिर से कह रहा हूँ उन लोगों के नाम जो अपनों से थोड़े से नाराज़ हैं, ये आपके लिए।

बिल्कुल जनाब, अपने तो अपने होते हैं और उम्मीद है कि आपके जो अपने हैं वो आपके साथ साथ हैं। अगर आपके अपने आपके साथ नहीं हैं तो आप अपनों के साथ हो जाएं, और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि जब आप अपने अपनों के साथ हो जाएंगे तो इस वक्त उस बार आपको मिलने जा रही है एक और खूबसूरत सी आवाज़ जो कि मेरी तो नहीं है। जी हाँ, आपके साथ जो प्रोग्राम में मोस्टली अब जो आपको प्रोग्राम में इस टाइम पे खूबसूरत सी आवाज़ सुनने को मिलती होती थी, कभी वो तो उस्मान खान की थी, लेकिन खैर आजकल जो आवाज़ आपको सुनने को मिल रही है वो आरजे काशिफ की आवाज़ है। हल्की सी पीछे से आपको आई होगी तो मुझे तो फिलहाल आप इजाज़त ही दे दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। काशिफ आपको मज़ीद जो है वो ज्वाइन करेंगे और एंटरटेन भी करेंगे। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए काशिफ को ज्वाइन कीजिएगा।

वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट आकाशिफ समीर और यू आर लिसनिंग फजा 97.1 FM एंड मेरे से पहले आपका साथ दे रहे थे आरजे उस्मान खान, हु इज माई मेंटोर। कुछ मसरूफियत की वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया बेसिकली, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैनेज करके मैंने कहा कि मैंने अपना शो जाके करना है और अपने लिसनर्स के साथ जो मेरा एक ताल्लुक है वो बना रहना चाहिए। आज हमारे शो का जो टॉपिक है वो होगा कन्वर्सेशन, बातचीत। ज़िंदगी में बातचीत करना कितनी ज़रूरी है और बातचीत का जो बेसिकली एक हमारे जो पेरेंट्स थे और हम जब तकरीबन 30-40 साल पीछे की जो हिस्ट्री है सोशल मीडिया से पहले, उसमें लोग बातचीत किया करते थे। जो हमारे घर के बड़े होते थे वो बच्चों को स्टोरी वगैरह जो है सुनाया करते थे, और बैक इन कंट्रीज़ इन पाकिस्तान एंड इंडिया बहुत सारे जो हमारे चौराहे होते थे और उधर एक प्रॉपर बैठने की जगह होती थी और हर एज के जो बुज़ुर्ग होते थे उधर बैठते थे और वो जो उनका अपना एक्सपीरियंस होता था वो भी शेयर करते थे और बच्चों को काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती थी। तो अभी इस मॉडर्न इरा में हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तो आ गए हैं, लेकिन मसला ये है कि अभी हमने जो एक फ़िज़िकल और जो आमने सामने बैठ के बात करने वाला जो हमारा टाइम था वो हमें नहीं मिल पा रहा। क्या आप लोगों को भी ये कमी महसूस होती है?

हमारा ये शो है ड्राइव जोन, और इसका जो मेन पर्पज है वो है एंटरटेनमेंट। जब आप अपने काम से लौट रहे होते हैं और दिन बन के भर की थकावट होती है, तो इसमें आपको ज़्यादा बातें तो अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन मसला ये है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होना भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि जब हम ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे लोगों को दोबारा रिकनेक्ट और रिकॉल चीज़ें होती हैं, और वो फिर जो है वो समटाइम हमें जब कोई नई चीज़ सुनते हैं तो माइंड उस

बीजेम लौट के आ चुके हैं। एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग था सिद्धू मूसेवाला का। तो आज हमारा टॉपिक है जो कम्युनिकेशन, बेसिकली बातचीत। अभी जो मॉडर्न ईरा चल रही है, इसमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास वो तमाम वसाइल तो मौजूद हैं जिसके थ्रू हम पूरी दुनिया में अपने जानने वालों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एनीवेयर एनी टाइम। पर मसला ये है कि हम इतने ज़्यादा इन गैजेट्स में बिज़ी हो गए हैं कि हमें जो टाइम नहीं निकाल पाते अपने अपने प्यारों के लिए। मेरे एक जो फैमिली है वो तो पाकिस्तान में है ही, और एक मेरे भाई जो हैं वो यूएई में होते हैं, तो वो बेसिकली टाइम डिफरेंस पाकिस्तान और यूएई का भी इंग्लैंड से डिफरेंट है। तो कोशिश भी करते हैं लेकिन हफ्तों उनके साथ बात नहीं हो पाती, तो जिसकी वजह से जो है ना कहीं कमी महसूस होती है। क्या आप लोगों को भी ऐसा महसूस होता है?

लेकिन आज वक्त ये आ गया कि घर में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स अवेलेबल हैं और हमारे जो अपने बच्चों के साथ भी कहीं ना कहीं जो है वो रब्ता मुनक़ता हो गया। जब मुझे अपना बचपन देखते हैं तो जब हमारे जो वालिद साहब थे घर आया करते थे तो हम जो है ना प्रॉपर बैठ के एक फैमिली डिनर किया करते थे। तो ये चीज़ें और फैमिली डिनर में वो सारे दिन की वो अपनी जो है वो सारे दिन की रूटीन हमारे साथ डिस्कस करते थे और हम जो है वो हमारा पूछते थे कि आज बच्चों का जो है वो बेसिकली दिन कैसा गुजरा है, कितनी कंप्लेंट्स आई हैं, क्या क्या किया है इन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा फैमिली टाइम था और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो क्वालिटी टाइम था। तब पैसों की कमी तो थी लेकिन अपनों का टाइम बहुत ज़्यादा था।

तो अभी हम लोग जो है एक सक्सेस की दौड़ में इतने बिजी हो गए हैं कि हमें अपने रिश्तों के लिए टाइम निकालना भी चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश भी होती है, लेकिन हमसे वो टाइम निकल नहीं पा रहा। और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो बेसिकली हम स्टडी तो उधर करते हैं लेकिन हमें जो कम्युनिकेशन के स्किल्स हैं वो नहीं सिखाए जाते। और जब हम जॉब्स और बिजनेस में आते हैं तो उधर जो कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ी चीज़ है। दुनिया को कोई भी काम करना है तो वो सबसे पहले उधर बातचीत होगी, रूल्स टर्म्स एंड कंडीशन और इस तरह की चीज़ें डिस्कस होंगी, देन जो है वो आगे वो जो भी जॉब है उसको डन किया जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं उनके अंदर जो है ना समुंदर होता है नॉलेज का और एक्सपीरियंस का, लेकिन कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन में लैग करते हैं और वो जो अपनी अंदर की जो एक्सपर्टीज़ हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते और दूसरों तक वो पहुँचा नहीं पाते। आगे जी हमारी कुछ जो है वो आगे हमारी कमर्शियल ब्रेक आ रही है और वो बड़ी ही इंफॉर्मेटिव होगी। उससे पहले एक जो है ना बात करते चलें कि हमें बिल्कुल अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, अपने दोस्तों के लिए और अपनी फैमिली के लिए।

0: आज बेसिकली मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो मुझे आज एक्सीडेंटली बड़े अरसे के बाद अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है। हालांकि जॉब में और बिजनेस में स्केड्यूल को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन उनके साथ जो है वो 2-3 घंटे ऐसे गुजरे हैं।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड, नॉटिंघम, या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
6: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
8: Hit music. Back to back.

Welcome back again in Faza 97.1 FM and Dab. And we are returned from such a beautiful commercial break. It was so informative. और हमारी जो मार्केटिंग टीम है वो हर वक्त जो है वो आपकी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हाजिर होती है. अगर आप लोग अपना बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ आप रब्ता कीजिए. वो आपके लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगी और आपके बिजनेस को जो है प्रमोट करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी. हमारा लाइव कॉल के लिए जो व्हाट्सएप नंबर है 011-5710-971, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं और अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. और आज हम जो बात कर रहे हैं वो है हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन, बातचीत. इसका हमारी जो डेली लाइफ है इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और स्किल के बगैर दुनिया में अब मूव करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, इस पे हम थोड़ी सी डिबेट भी करेंगे और साथ साथ एंटरटेनमेंट भी चलती रहेगी.

दुनिया में जब हम इर्द गिर्द देखते हैं तो बड़े ही जो कामयाब लोग होते हैं उनमें एक क्वालिटी ये भी होती है कि वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। उनको जो अपना पॉइंट होता है वो बड़े अच्छे से प्रूव करना आता है और वो अपनी जो आइडियाज़ होते हैं उनको बड़े अच्छे से नरेट कर पाते हैं। उनको अपनी जो स्टोरी टेलिंग की टेक्निक होती है वो बड़ी उनकी इम्प्रूव्ड होती है। जब हम इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते भी हैं और पढ़ चुके भी हैं और हमारे जो घर से नेफ्यू नीजीज और बच्चे भी जाते हैं स्कूल, तो उनमें मुझे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो देखने में यही आया कि उधर फिर एक ही चीज़ से कही जाती है कि खामोश खामोश, और टीचर भी यही कहते हैं कि आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस। तो मुझे ऐसी साइलेंस चाहिए कि कमरे में जो है ना अगर सुई भी गिरे तो उसकी भी आवाज़ आनी चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में और हम में भी ये कमी ऐसी रह गई है कि इसको हम जो है फियर बैठ गया कि लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। बहुत सारे काबिल लोग हैं वो बिल्कुल माइक का सामना और जो है स्टेज पे वो बिल्कुल जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। आई एम वन ऑफ दोज। जब मैं बचपन में जो टीवी पे को शो होस्ट होते थे उनको देखता था तो वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो पूरी स्टेज को सेट कर रहे हैं और जो है बड़े अच्छे तरीके से अपने जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इन लोगों में क्या ऐसी खासियत होती है, इसको कैसे सीखा जा सकता है, इस काम को कैसे किया जा सकता है। वक्त गुजरता गया और एक दिन ऐसा भी आया कि मुझे जो है वो रेडियो का जो टाइम था तकरीबन जो है 2000 से लेके 2010 तक मोबाइल नए नए आम हो रहे थे, तो फिर वो रेडियो पे शो वगैरह सुनना और अच्छे जो आरजेज होते थे उनके शोज सुनना और उनकी आवाज़ में जो एक निखार होता था तो वो चीज़ें मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। तो एक बार हमारी सिटी में एक रेडियो चैनल था तो मुझे उधर जो है ना वो वैकेंसीज आई हुई थी, बेसिकली ऑडिशन हो रहे थे, तो मेरे भी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं मुझे भी आरजे बनना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला और जो है अपॉर्चुनिटी ना मिल सकी। तो वक्त गुजरता गया लेकिन रिसेंटली मुझे अपॉर्चुनिटी मिली आरजे बनने की और मुझे एक जो है इस रेडियो फजा 97.1 FM ने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, तो मैंने अपने मेंटोर से ट्रेनिंग ली और अभी भी सीख रहा हूँ। अभी जो इब्तिदा है मेरे इस कैरियर की, लेकिन जब आप किसी भी फील्ड में नए जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि उसका जो बेसिक जो फर्स्ट ईरा होता है ना, मतलब टाइम होता है, उसको लेके चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो वो एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं तो सम टाइम लगता है कि ये जो काम कर रहे हैं बड़ी आसानी से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो शो है इसका जो मेन पर्पज़ है वो है एंटरटेनमेंट, और साथ साथ आप जो है अपना सॉन्ग किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारा लाइव कॉल का नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो आपने उस पर जो है अपना नाम लिखना है और स्पेस डालनी है, और आगे जो जो सॉन्ग सुनना चाहते हैं जो किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो वो आप हमें टाइप करके सेंड करेंगे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो डेडिकेशन है जो रिक्वेस्ट है उसको हम ज़रूर प्ले करें अपने शो में, बिकॉज इट इज़ योर शो

Welcome back again in Faza 97.1 FM. You are listening. RJ Kashif Sammi. कम्युनिकेशन की वैल्यू मैंने उस दिन सीखी कि मैं एक पाकिस्तान में एक शोरूम था तो मुझे उधर काम करने का मौका मिला। जो ऑनर थे उनके पास, जो हमारी कंट्री में हाई एंड गाड़ियां थी वो उनके पास थी, और उन्हीं का जो है ना वो सेकंड हैंड सेल परचेज का काम था उनका। उनको जो बेसिकली जो है ना मोबाइल से वो किसी का नंबर टाइप नहीं कर सकते थे, इसको मैसेज नहीं लिख सकते थे, तो एकेडमिकली उनकी बिल्कुल क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन उन जैसा अच्छा कम्युनिकेटर अभी तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। जब वो कस्टमर आते थे उनको अटेंड करना और बड़ी डिटेल के साथ पहले कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना। समटाइम ऐसा भी होता है कि कस्टमर को जो मतलब माइंड में कोई और चीज़ चल रही होती है लेकिन उसकी जो नीड होती है वो बेसिकली डिफरेंट होती है। जो एक अच्छा सेल्समैन है वो सबसे पहले जो है ना वो कस्टमर की साइकी और उसकी जो है ना छोटे छोटे सवाल करके वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कस्टमर बोले, कम्युनिकेट करे, और उससे वो आइडिया लगाए कि बेसिकली कस्टमर की जो ओरिजिनल नीड और डिज़ायर क्या है। तो वो जब मैं उस शोरूम पे काम किया करता था तो मुझे ये सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिली। हालांकि मैं कॉलेज में भी पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी में भी गया हूँ, तो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले हमारे जो मेंटोर्स होते हैं, उस्ताद होते हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बेसिकली एकेडमिक के रिलेटेड होते हैं। तो एट द एंड हमें जो है वो मार्केट में आना पड़ता है, क्योंकि इंसानी नीड ऐसी है कि हर बंदे को जो है ना वो अर्निंग करनी पड़ती है। तो अर्निंग के लिए आपको स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जितने अच्छे आपके स्किल्स होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी आप लोगों की अर्निंग होगी। मैं उनसे वो चीज़ें सीखता गया और कम्युनिकेशन के जो छोटी छोटी टिप्स होती थी वो मैं मेमोराइज करता गया और उनको अपने जो है नज़े नशीन करता गया बेसिकली। तो एक दिन शोरूम में कोई भी नहीं था तो मैंने क्या किया कि कस्टमर आया, उसको वाइट कलर की गाड़ी चाहिए थी, वो रहते जो है वो बेसिकली हिली एरिया में थे, तो मैंने जो चीज़ें उधर ऑब्जर्व की जो सीखी उनसे, तो मैंने कहा आज टाइम है, मौका भी है, तो इनको क्यों ना यूटिलाइज़ किया जाए। तो मैंने जो है उस कस्टमर के साथ छोटे छोटे सवाल जो आप करना शुरू किए और मुझे जो है बेसिकली अंदाज़ा हो गया इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है। वो एक जो है बेसिकली ऑटोमेटिक गाड़ी जो है वो ढूंढ रहे थे, तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन था, लेकिन ब्लैक वो वाइट कलर की गाड़ी ढूंढ रहे थे, हमारे पास उससे भी सुपीरियर ऑप्शन था लेकिन था वो ब्लैक कलर में और मैनुअल ट्रांसमिशन में। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप किधर से आए हैं, कहते हैं कि मेरी लोकेशन का गाड़ी के साथ क्या रिलेशन है। मैंने कहा गाड़ी को अपने घर नहीं लेके जाना, कहते हैं बात तो सही है। तो फिर मैंने डिटेल में क्वेश्चन करता गया और एक वक्त ऐसा आया कि मैंने उनसे पूछा जो आपके जो रिलेटिव्स हैं और जानने वाले लोग ज़्यादा जो प्लेन एरिया पंजाब में है या कश्मीर में है। तो फिर वो जो कस्टमर है वो थोड़े से गुस्सा कर गए और कहते हैं कि मेरे जो मतलब जानने वाले लोग और जो रिलेटिव्स हैं उनका इस गाड़ी के साथ क्या संबंध, क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है। मैंने कहा संबंध तो है, कहते हैं वो कैसे। मैंने कहा मेन मसला ये है कि जब आप हिली एरिया में जाएंगे खुशी में गमी में तो ये जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं ये अपनी मर्जी से चलती हैं, तो गियर इनके वो कंप्यूटराइज जो उनका प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं, और ये जो हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है ये है मैनुअल में, कि ड्राइवर के माइंड सेट के अकॉर्डिंगली वो जितनी पावर चाहिए होती है, जैसे वो उसकी वो नीड होती है उसके अकॉर्डिंगली चलता है। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप मैनुअल गाड़ी लें। तो ये लॉजिक जो है वो कहीं किसी हद तक उनको समझ आ गया और वो लेने तो घर से वो वाइट कलर की गाड़ी आए थे ऑटोमेटिक,
मैंने जो मेरा प्रायर एक्सपीरियंस था और जो मुझे वो माहौल मिला कम्युनिकेशन के, वो जितने स्किल्स थे मैंने उनसे सीखे, वो मैंने सब जब सारी यूटिलाइज करने की कोशिश की तो मुझे ब्रेक थ्रू ये मिला कि वो ब्लैक कलर की गाड़ी विदिन वन मंथ की मैकेनिकल ट्रेनिंग में, ये सारे स्किल मुझे उधर जो सीखने को मिले वो कस्टमर के साथ मैंने कम्युनिकेट किए और मैंने उनकी जो नीड्स हैं वो बेसिकली जानने की कोशिश की। वो जो कस्टमर थे वो वाइट कलर की गाड़ी लेने आए और मैंने जो है उनको उनकी नीड्स को समझते हुए और उनको समझा कर ब्लैक कलर की गाड़ी जो है मैंने उनको सेल की। तो तब मुझे ये समझ आई है कि बेसिकली कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन से पहले कम्युनिकेशन के जो रेलिवेंट स्किल्स हैं वो सीखना कितना ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ जो है वो हमारी जो सॉन्ग्स की डेडिकेशन और आप लोगों की जो रिक्वेस्ट आ रही हैं तो उसके साथ साथ उसको भी प्ले करेंगे क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, मुकाबला बड़ा सख्त है।

0: दुनिया में सबसे ज्यादा जो दुनिया में सबसे ज्यादा जो इजी बंदा रहकर अपना जरिया मुआश और जो है वे ऑफ अर्निंग जनरेट कर सकता है वो है सेल्समैन, मेरी नज़र में। और सेल्समैन की जो सबसे प्यारी जो खासियत होती है वो है कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट कैसे करना है, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने जो है वो पिच कैसे करना है और उसको एक्सप्लेन कैसे करना है और इसमें जो प्रूफ करना है कि इस जो कस्टमर की जो बेसिकली डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन है इस प्रोडक्ट में। दुनिया में बेसिकली हर बंदे को ही कम्युनिकेट करना पड़ता है, चाहे कोई प्रेसिडेंट है चाहे कोई बैगर है, एवरीबडी हैज टू बी कम्युनिकेट विद ईच अदर। लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी क्वालिटी होती है और वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बाय बर्थ ऐसी उनकी ये खुदादाद सलाहियत है जो लोगों में पहले से ही अल्लाह की तरफ से होती है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर इस पे काम ना किया जाए तो ये सीखा नहीं जा सकता। तो कहीं पे बड़ी एक खूबसूरत बात लिखी थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है जब कभी मैं कोई नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश करता हूँ और मैं कोई नया स्किल सीखने की कोशिश करता हूँ तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है, और वो जो है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मुझे बुक रीडिंग का भी बड़ा शौक है। एक बुक में एक चीज़ ये एक वर्ड लिखा हुआ था, इफ इट इज़ टू बी वाई नॉट मी, अगर ये काम हो सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता या कर सकती। किसी के साथ हमारा रिलेशन होता है या हमारी दोस्ती होती है और हमारा जानने वाला होता है और बड़ा अजीज़ होता है, लेकिन वक्त ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम करना चाहते हैं और किसी वजह से नहीं कर पाते। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा और वो शख्स या वो बंदा या वो बंदी इस दुनिया से चला जाता है, तो देन जब वो चले जाते हैं और उनकी हमें कमी महसूस होती है और हमें लगता है कि बहुत सारी ऐसी अधूरी बातें हैं जो रह गई हैं, तो वक्त पे हमें जो है वो उनके साथ बेसिकली ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए था, लेकिन हमें वो बहुत ज़्यादा वो शिद्दत के साथ ये कमी महसूस होती है। तो इसीलिए जो कहते हैं ना कि कोई बात अधूरी नहीं रहनी चाहिए, अगर बात शुरू करें तो उसको ख़त्म करना चाहिए। लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। सांस का रिश्ता है जो कभी चलता है कभी रुकता है। आगे जी एक बड़ी प्यारी सी कमर्शियल ब्रेक आ रही है, तो कमर्शियल ब्रेक के उस पार हमारा अब और आपका जो है वो साथ जारी रहेगा। आप लोगों का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको भी हम साथ साथ ऐड करेंगे अपने इस शो में। तो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 0115।
1: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
2: What happened? You look very happy.
3: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
2: Congratulations. That was very quick.
3: I was very lucky. I used the local visa experts.
2: Who helped you with the application?
3: AMH solicitors. They were brilliant. friendly, fast, and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain, and citizenship applications.
2: Where is AMH Solicitors based?
3: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
2: Brilliant! I will contact them to help my family's visa.
3: Sure. Their number is 0115 671 3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
4: AMH Solicitors, immigration lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available or call them on 0115 671 3677.

Welcome back again from such an informative commercial break. And you are listening to Fizzah 97.1 FM and that. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन एंड बातचीत. एक वक्त हुआ करता था, थोड़ा सा 10-12 या 20 के साल पीछे जाएं, तो हमारे पास इतना टाइम था कि हम जो है वो लोगों को देखते थे घर में भी और ओवरऑल जो है गली मोहल्ले में भी, बैक इन आवर कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान, शहरों के अलावा लोग जो है वो एक दूसरे के पास घंटों बैठ के बातें करते थे और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो एक्सचेंज होती थी. लेकिन आज वक्त ऐसा आ गया कि हमारे पास बिल्कुल जो है वो बातचीत का टाइम नहीं रहा. और हमारे पास मॉडर्न गैजेट्स तो हैं और हमारे जानने वाले और जो दिल के करीब लोग हैं वो भी ऑनलाइन होते हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, तो जिसकी वजह से हमारे अंदर एनजाइटी और जो है वो अकेलेपन की वजह से डिफरेंट किस्म की डिजीज़ हैं, वो बेसिकली बीमारियाँ वो बढ़ती जा रही हैं. तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, जब हमें इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं तो हमें सम टाइम बुरा भी लगता है. वो ऐसी बातें होती हैं जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ये भी पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है. और सम टाइम जो है कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बातें हमें हमारी तबीयत पर और हमारे माइंड पर बहुत अच्छा तासर छोड़ती हैं, तो हमारा दिल करता है बार बार इन लोगों को सुने कि आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं. वो कहते हैं ना कि सवाल पूछना बेसिकली आधा इलम होता है. अभी हमारा जो शो है इसका नाम है ड्राइव जोन, और मोस्ट ऑफ द हमारे लिसनर हैं जो वो ड्राइविंग के जोन में ही चल रहे हैं, कोई काम पे आ रहा है या कोई काम पे जा रहा है. तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो है वो इस तरह की छोटी मोटी इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन होना बहुत ज़रूरी है. इसी जो है ना सोसाइटी हेल्दी रहती है, और जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और इसके साथ साथ आप लोगों की जो सॉन्ग की डेडिकेशंस हैं और आपकी जो रिक्वेस्ट हैं उसको भी साथ साथ मद्देनज़र रखा जाएगा, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी को जो है ना वो खुश किया जाए. हालांकि नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम ऑफ जो आपकी रिक्वेस्ट हैं उनको जो है वो ज़रूर प्ले करें अपने शो में. हमें अभी एक रिक्वेस्ट आई है, वो उनका नाम है सिमरन, और उन्होंने जेनिफर लोपेज़ का एक बड़ा प्यारा सॉन्ग है उसकी रिक्वेस्ट की है, तो उसको हम ज़रूर जो है ना वो कोशिश करेंगे अपने इस शो में प्ले करने की.

J-Lo. Y'all decide. My, my, my.

अभी हम लौट के आ चुके हैं एक बड़े प्यारे सॉन्ग से, और हमारे बड़े ही कस्टमर की जो हमारा बेसिकली बड़े अच्छे लिसनर है, उनकी जो एक फरमाइश थी, और ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं। और आज हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन पे और बातचीत पे। आज वक्त ऐसा आ गया कि हमारे पास बिल्कुल जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए टाइम नहीं है, हालांकि हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा जो है ना मोबाइल्स और जो डिफरेंट किस्म के गैजेट्स हैं इनकी वजह से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के दौर में रह रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हमें अपने रिश्तों को टाइम देना चाहिए, और टाइम दे के जो है ना वो अपने जो बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो अपनी इस पैसों की दौड़ में और जो डॉलर्स और पाउंड और जो नंबर्स को अपने अकाउंट्स में ऐड करने के लिए दिन रात एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं, तो जिसमें वो उनको जो है लगता तो अपेरेंटली लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कामयाबी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते, हमारे दोस्त और हमारे जो बहुत सारे लोग हैं वो इस दौड़ की वजह से पीछे रहते जा रहे हैं। लेकिन एक वक्त आएगा कि हमारे पास सिर्फ ये चीज़ें एसेट्स हमारी जो काबिलियत है इसके अकॉर्डिंगली तो होंगी, लेकिन हमारे पास जब हम बात करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास रिश्ते नहीं बचेंगे। तो आप कोई भी चीज़ है तो उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, अगर आप घर पे पेट रखते हैं तो उसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ता है, तो वो भी आपकी एक प्रॉपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो आप सारी मसरूफियत के बावजूद उस चीज़ को भी टाइम देते हैं। अगर आप घर पे प्लांट्स वगैरह लगाते हैं तो उनको भी पानी देना पड़ता है, और उनके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, ऐसा ही है। और जब हम गाड़ी या कोई भी ऐसी चीज़ रखते हैं तो उसकी एक प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है। जो अभी वाटर नीरा आ रहा है और हमारे जो बच्चे हैं बेसिकली वो घरों तक महदूद रह गए हैं, तो अभी हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन डिलीवरी पे शिफ्ट हो गई हैं, तो आने वाला वक्त जो है वो मुझे इतनी तरक्की और इतनी जो है प्रोग्रेस के साथ साथ वो सारी चीज़ों में डर भी लगता है। जब हम रिसर्च पढ़ते हैं और डिफरेंट किस्म के व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स और रिसर्च जो जब हम इसकी कंक्लूजन निकालते हैं, तो आने वाली जनरेशन में जो है वो ये जो मॉडर्न गैजेट्स हैं इनकी इंफॉर्मेशन और इनको चलाने का तजर्बा तो ज़रूर होगा, लेकिन कम्युनिकेट करने का बिल्कुल भी उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, और उनको ये बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि जो सोसाइटी में जब हम मूव करते हैं अपने घर से बाहर निकलते हैं तो लोगों के साथ बातचीत कैसे करनी है, अपने स्टडीज़ में अपने सर्कल है उसको कैसे लेके चलना है, और साथ साथ जो है वो जिधर हम जॉब करते हैं तो जॉब में एक बात की मतलब 10 मतलब होते हैं, तो उनमें 10 जो इन सारी चीज़ों को एक बात के पीछे जो छुपी हुई बात होती है तो उसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, तो ये तभी मुमकिन है कि जब हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उनका बड़ों के साथ रिलेशन होगा, जब वो सवाल करेंगे, बड़े अपना तजर्बा उनके साथ एक्सपीरियंस जो है वो बेसिकली शेयर करेंगे, तो तभी नेक्स्ट जनरेशन है वो हमें रिप्लेस करने के काबिल होगी। आप लोगों को भी ऐसे ही लगता है? लेकिन मसला ये है कि लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि हमारे पास अपने बच्चों का वो जो बचपन है वो देखने का टाइम नहीं, उनकी शरारतें देखने का टाइम नहीं, जो बेसिकली छोटे बच्चे हैं, 1 साल 2 साल इस तरह के छोटे बच्चे हैं जो मासूमियत से भरे हुए हैं। हमें जो है इस ज़िंदगी की और इस पैसे की दौड़ में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं कि हमारे पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, और हम अपनी फैमिली की ज़रूरतें तो पूरी कर लेंगे लेकिन कुछ ख्वाहिश ऐसी पैदा हो गई है सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि हर चीज़ जो है वो बेसिकली हम देखते हैं कि कपड़ों के ब्रांड हैं और कोई भी चीज़ है कंज्यूम करते हैं तो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें सोशल मीडिया पे मिलती हैं, और वो ब्रांड्स के टैग भी होते हैं, तो उन ब्रांड के टैग्स के लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, तो सम टाइम वो हमारी बेसिक नेसेसिटी नहीं है, लेकिन जो है ना वो अपनी सोसाइटी में मूव करने के लिए वो एक्स्ट्रा जो है वो जो पाउंड्स और जो मनी रिक्वायर्ड है अपनी सोसाइटी के साथ मूव करने के लिए, तो हम एक्स्ट्रा मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास अपने रिश्ते छूटते जा रहे हैं, हमारे पास अपनी लाइफ पार्टनर के लिए टाइम नहीं है, अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं है, अपने बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है, तो हमें तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा टाइम चल रहा है कि हमें ये नहीं समझ आ रही कि हम काम के लिए पैदा हुए हैं या काम करके हम अपनी जो लाइफ के को बेसिकली आ,
बैलेंस कैसे करना है, तो हम वो सी कंफ्यूज। अभी जो हम जो हमारी जनरेशन है बेसिकली वो बड़ी कंफ्यूज जनरेशन है। हम उस दौर से आए हैं जब मैंने जो है अपने बचपन में ब्लैक एंड वाइट टीवी भी देखे हैं, तो अभी सारी चीज़ें सिमट के एक मोबाइल फ़ोन में आ गई हैं। तो अभी हमारे पास जो टाइम को मैनेज करने की बेसिकली जो स्किल होना चाहिए वो हमें बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा। मेरा ये जो है ना पर्सनल एक छोटा सा मशवरा है जो मुझे सीखने को मिला है, और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि अपने लिसनर्स के साथ इसको शेयर करूँ, मे भी ये बात जो है वो किसी के काम आ जाए। अगर किसी एक की भी लाइफ इसमें थोड़ी सी बेटर होती है, तो मेरा ये शो करने का और इस टॉपिक को अपने शो में रखने का जो पर्पज़ है वो ज़रूर मिल जाएगा। तो हमें बिल्कुल चाहिए कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने दोस्तों को कॉल करें, एक टाइम निकालें, दो चार घंटे निकालें, चलें 150 या जो भी हर बंदे के टाइम की एक अपनी अपनी वैल्यू है, तो उसके हट के भी उस दिन हमें पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उस दिन हमारे जो रिश्ते हैं उनको जो दोबारा रिचार्ज होने का मौका मिलेगा जब हम कॉल करेंगे। तो बहुत सारे लोग इसलिए एक दूसरे को कॉल नहीं करते कि पहले वो कॉल करे तो फिर मैं जो है कॉल करूँ। तो इसी तरह जो है वो वक्त गुजरता जाता है, और जो है वो घंटे हैं वो जो दिनों में बदलते हैं, और जो दिन हैं वो हफ्तों में और हफ्ते सालों में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और हमारे बहुत से अजीज़ हमसे जो है वो बात ना करने की वजह से दूर होते जा रहे हैं। जब एक वक्त आएगा हमारे पास वो सारी वो जो है वो ख्वाहिशें पूरी कर लेंगे, गाड़ी भी आ जाएगी, पैसे और सारी चीज़ें होंगी, तो जब हम अपने ढूंढेंगे तो वो हमें बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मुझे इन चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा डर लगता है, और मैं ये कहता हूँ कि अभी जो बड़े लोग हैं जो काम कर रहे हैं तकरीबन 20-30 से 40 और 45 के बीच में हैं, इस एज के लोग पूरी दुनिया में जो है वो दुनिया को रन कर रहे हैं, और इन्हीं के वो स्किल्स हैं वो डेली बेसिस पे हर जो एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में वो सर्व कर रहे हैं, चाहे कोई भी दुनिया की फील्ड है। तो इनको रिप्लेस करने वाली नेक्स्ट जनरेशन हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। जो नेक्स्ट जनरेशन है वो गेम्स और इस तरह की जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं इसमें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है कि उनके पास जो अपनी स्टडीज़ को प्रॉपर टाइम देने के लिए टाइम नहीं रहा, और वो बहुत ज़्यादा गेमिंग और इस तरह की जो चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं। और पेरेंट्स जो अभी मॉडर्न पेरेंट्स हैं वो दोनों जो हैं वो काम कर रहे हैं, जब वो काम करने चले जाते हैं तो बेसिकली फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो जो घर पे आप नैनी या इस तरह के वो डे केयर में छोड़ते हैं बच्चों को, तो वो बच्चे जो हैं वो बेसिकली आजकल जो नया इशू आ रहा है वो इशू ये आ रहा है कि बच्चों में बोलने का प्रॉब्लम आ रहा है, कि बच्चे प्रॉपर 2-4 साल एज हो गई है, 5 साल एज हो गई है, वो प्रॉपर जो है वो बात नहीं कर पा रहे। तो मसला ये है कि जब उनको अपने बड़ों की अपने पेरेंट्स की ज़रूरत थी, और पेरेंट्स वो जो

आज से हम सब ने जो है वो ये डिटरमाइन करना है, और हम आज से हमने ऐड भी करना है, और तो इस चीज़ को जो है ना वो कोशिश करेंगे हम जो है ना एक हफ्ते में एक दिन या एक दिन में तकरीबन 3-4 घंटे या 5 घंटे ऐसे निकालेंगे जिस दिन हम अपना मोबाइल फ़ोन बिल्कुल साइलेंट पे रखेंगे, क्योंकि इसको साथ रखना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर जो है लाइफ का जो है बिल्कुल चलना मुश्किल हो गया। और अपने किसी रोज़ अपना स्केड्यूल बनाएंगे, अपने जो हमारे बहुत ज़्यादा अजीज़ दोस्त थे उनके लिए उनकी एक लिस्ट बनाएंगे कि जब मैं फ्री होऊंगा तो एक घंटा या आधा घंटा मैं टाइम निकाल के और उसके साथ टाइम एडजस्ट करके तो अपने वो जो मेरा जिगरी दोस्त था या सहेली थी उसको कॉल करेंगे और चेक करेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और वो जो एक अच्छी कन्वर्सेशन जो है ना उसका हेल्दी कन्वर्सेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो दोस्ती वो तल्लुक जो है वो कायम रहेगा। फिर हमें जो अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारना चाहिए। पेरेंट्स उस एज के हिस्से में आ जाते हैं जब उनको ना तो पैसों की ज़रूरत रहती है और ना इस तरह की गाड़ियों की या कोई भी ऐसी चीज़ है जो मटेरियलिस्टिक है, तो वो इस चीज़ों में से वे उनको इस्तेमाल करके और इन चीज़ों से गुजर जाते हैं, तो उनको अपने बच्चों के साथ जो है बातचीत करने की बड़ी शिद्दत से कमी महसूस होती है। हम भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं और बातचीत में और कम्युनिकेट करने में हमारी बहुत ज़्यादा जो है हमारा जो कमी हो गई है, लेकिन आज अगर हम अपना जो अपने पेरेंट्स को अपने दोस्तों को टाइम नहीं निकालेंगे और अपने बच्चे हमारे जब हमें देखते हैं, तो मेरा ये मानना है जो बच्चे होते हैं वो बड़ों का साया होते हैं, तो जैसा उनको माहौल मिलता है तो वो वैसा ही काम करते हैं। तो अभी जब हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं अपने मॉनेटरी गोल्स को अचीव करने में, बच्चों के पास घर में कोई ऐसा बंदा नहीं रहता जिसके साथ वो कम्युनिकेट करें, फिर वो ऑनलाइन गेम्स और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जब हम 2-3-4 साल बाद वापस लौटते हैं और बच्चों की तरफ तवज्जो करते हैं तो तब बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। क्या आप लोगों को भी इन्हीं प्रॉब्लम्स और ये चीज़ें देखने को मिलती हैं? मैं तो जब सोसाइटी में थोड़ा सा डीप जो है वो ऑब्जर्वर हूँ और मुशाहदा करता हूँ कि आगे पीछे सराउंडिंग में इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें चल रही हैं, तो आने वाला टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, तो हमें कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए और अपने से जो बड़े लोग हैं जो किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनके साथ सवाल जवाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आपका जो आपने 20 साल में जो चीज़ें सीखनी है वो आपको जो है ना वो 1-2 माह में वो आपका जो टाइम सेविंग होगा और वो आपके साथ जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वो ऐसी बातें होंगी जो आप 20 साल गलतियां करके एक्सपीरियंस के साथ भी वो चीज़ें सीख नहीं सकते, क्योंकि वो जो लोग हैं वो 30-40 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। एक बड़ी ही शानदार बुक में एक बड़ी शानदार लाइन थी, कहते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ जल्दी सीखनी है तो अपने साथ की अपने मेंटोर्स की जो है उन्हों तादाद को बढ़ा दें, जितना हो सके अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो उस्ताद हैं उनके साथ अपना रबता जो है वो बहाल रखें। तो वही एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में जो प्रॉब्लम आपको डिस्टर्ब कर रही है तो उन सभी के साथ शेयर करें, तो आपको जो है ना डिफरेंट किस्म के एनालिसिस और जो है ना वो सोल्यूशन मिलेंगे, तो उन सोल्यूशन को जब आप एक कंक्लूजन में लेके आएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अच्छा जी, आप टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला और हमारा शो जो है वो बिल्कुल एंडिंग पोजीशन पे आ गया और एक सॉन्ग के साथ आपको छोड़े जाते हैं, तो नेक्स्ट शो में दोबारा आप लोगों के साथ इसी टाइम जो है वो दोबारा मुलाकात होगी और आपको भी सुनेंगे और अपनी बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: Ready to move.
6: It's all about the beats. Wow,
7: FM. Only Tune Super Hit Channel.
8: Says on 97.1 FM.

जी हाँ, तन्हाई ऐसा गाना जिसे कई सालों से मैं सुन रहा हूँ और बहुत से लोग सुनते होंगे। अगर आपको फिल्म की स्टोरी पता हो ना, फिर गाना सुनने का और भी मजा आता है। इस फिल्म में जो आमिर खान होते हैं ना, आमिर खान की एक ऐसी फिल्म है जो बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक थी, जिसमें उन्हें पूरी फिल्म में मोहब्बत नहीं होती, पूरी जिंदगी उनकी जितनी भी गुजर जाती है, लेकिन जब मोहब्बत होती है वो इंतहाई सीरियस हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, मोहब्बत एक ऐसी शय है जो किसी न किसी को जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर जरूर होती है, और जब उसे मोहब्बत हो जाती है तो उसे लगता है कि उसके अलावा उसे और कोई शख्स नहीं चाहिए, वही उसकी दुनिया बन जाती है। आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM लाइव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम नॉटिंघम, दिस इज मी ज़की खान। मॉडर्न सोसाइटी अनफिल्टर्ड का ये शो हम आपके लिए लेके आते हैं एवरी वेडनेसडे 7 to 9 PM, और उम्मीद है कि अब बिल्कुल ताखीर नहीं होगी और छुट्टियां भी नहीं होंगी। जितनी छुट्टियां हुई हैं उनको माफ फरमाइएगा। आज का जो टॉपिक है, आर वी कनेक्टेड या फिर वी आर मोर लोनली, क्या हम कनेक्टेड हैं या फिर हम तन्हा हैं, अकेले हैं। टेक्नोलॉजी अलाउज अस टू कॉन्टेक्ट एनी वन इंस्टेंटली। हम इस टेक्नोलॉजी के जरिए किसी को भी बहुत जल्दी बआसानी कॉन्टेक्ट कर तो सकते हैं, लेकिन क्या हमें इमोशनल सपोर्ट मिलती है? और देखा जाए तो जितने ज़्यादा हम कनेक्ट होते जा रहे हैं और जितने ज़्यादा लोगों के साथ हम दोस्तियाँ बढ़ाते जा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि वो सब बढ़ जाने के बावजूद हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, हमें एंग्जाइटीज हो रही हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। ऐसा क्यों है, कभी आपने सोचा? क्योंकि एक दौर था जिस दौर में लोग एक दूसरे से मुलाकात किया करते थे, मेल जोल होता था, एक दूसरे से फिजिकली बात किया करते थे, एक दूसरे से डिस्कशंस किया करते थे, हंसते थे, खेलते थे, रोते थे, सब कुछ किया करते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हम अपने घरों में भी अपनों के साथ, जिनके साथ हम रहते हैं, उनके साथ भी कनेक्टेड नहीं है। अब सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। सोशल मीडिया कैन स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स, बट इट मे ऑल्सो रिप्लेस मीनिंगफुल फेस टू फेस कन्वर्सेशंस। जी हाँ, सोशल मीडिया ताल्लुकात को मजबूत कर सकता है क्या? लेकिन बाज़ औक़ात ये हकीकी और जो गुफ्तगू हम एक दूसरे के साथ बैठ के किया करते थे, जिसे फेस टू फेस, जिसे रूह बरू कहते हैं, क्या हम वो कर पाते हैं? तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। जब कहना शुरू कर देते हैं ना, ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, ऐसा होता नहीं है। वो सब आपके सिर्फ जानने वाले में से ही होते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये पैदा होता है कि कितने लोगों से हम कांटेक्ट करते हैं या कांटेक्ट में रहते हैं, हम कितने खुश होते हैं, कितने लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं, हम एक इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। लेकिन जो एक अंदरूनी खुशी होती है, जो लोगों से मिल बैठ कर बात करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को फील करना, क्या हम वो कर पाते हैं? कितने लोग हमें समझ पाते हैं? आजकल समझना दूर की बात है, जजमेंटल होना ज्यादा आसान है, तो पीपल डू गेट जजमेंटल वेरी इजीली। चले जी, इसी के साथ सुनाते हैं आपको एक और ट्रैक जो कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में है, और उम्मीद है कि आपको ये ट्रैक भी पसंद आएगा।

Assalamualaikum, namaste, sasriya kaal and very good evening. आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम लाइव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम नॉटिंघम. ना कि सिर्फ आप एफएम पे सुन रहे हैं लेकिन आप डैप पर भी सुन रहे हैं. हमारी वेबसाइट है radiofaza.co.uk और हमारी ऐप भी है विच इज फजा रेडियो. आप चाहें तो हमें आप वहां भी सुन सकते हैं. जी हाँ, मैं हूं आप सबका मेजबान जकी खान और हमारा आज का शो है मॉडर्न सोसाइटी अनफिल्टर्ड. तो मैंने कहा अपनी जिंदगी में से एंटरटेन, अगर आपने अपनी जिंदगी

कि जब दो लोग तनहा होते हैं तो जब आपस में मिलते हैं तो एक हो जाते हैं, और जब एक हो जाते हैं तो और जब

आज के हमारा जो डिस्कशन है वो आर वी कनेक्टेड, आर वी रियली कनेक्टेड और वी फीलिंग लोनली। आप सोचेंगे हमारी फैमिलीज के दरमियान में एक स्क्रीन आ चुकी है और स्क्रीन नजर नहीं आती।

अच्छा एक और आपको शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ. वो ये कि फैमिली ऑफ 5-8 डिनर टुगेदर बट एवरीवन वाज लुकिंग द यंगेस्ट चाइल्ड व्हाई

फ्रेंडशिप्स आर मीनिंगफुल एंड फेस टू फेस। आपसे एक सवाल है, हमारा एक सवाल है मासूमाना सर, वो ये है कि जो दोस्त आपको सोशल मीडिया पे मिलते हैं

ये मैं बता नहीं, आप समझते नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। तो ये इसी तरह से है, क्योंकि अंदर का हाँ जो है वो कुछ और ही होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि सोशल मीडिया

क्या कुछ यादें ऐसी हो सकती हैं कि जिनके सहारे हम सारी जिंदगी गुजार सकें, बल्कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं हमेशा के लिए। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर इंसान मर गया तो चलो उसकी यादें चली गई उसके साथ ही, और कभी कभी उनकी याद आती है, उनके लिए दुआ भी करते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या करें जो कि इसी दुनिया में हैं और हमें छोड़ कर चले गए हैं। अगर जब कोई किसी को छोड़ कर चला जाता है ना, तो यकीनन उसकी कोई ना कोई वजह होती होगी, उनकी कोई मजबूरी होती होगी। लेकिन होता क्या है कि हम उनकी मजबूरी समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। हमें लगता है कि सिर्फ वो हमें ही छोड़ कर चले गए। हो सकता है कि वो किसी बेहतरी के लिए ही छोड़ के गए हों और अपनी एक ज़िंदगी बनाना चाहते हों, आगे बढ़ना चाहते हों। वो कहते हैं ना कि एक इंग्लिश की टर्म है, जस्ट मूव ऑन। हाँ, मूव ऑन होना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। क्योंकि आप जब आप नए सफ़र पे निकल पड़ते हैं तो आपको कहीं और कंपेनियंस मिलते हैं, कहीं और नए दोस्त बन जाते हैं, नए लोग जानना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की ये हैबिट होती है कि उन्हें बड़ा शौक होता है कि हम नए लोगों से मिलें, नए लोगों से ताल्लुकात बनाएं और हर एक से ताल्लुकात बनाएं। खैर, ये उनकी चॉइस है, उनका नेचर है। कहते हैं कि इंसान की फितरत नहीं बदलती, आदतें बदल जाती हैं। तो अक्सर मैं ये कहता हूँ कि अपनी नेचर के खिलाफ नहीं जा सकता। आजकल की जो हमारी यंग जनरेशन है उसके बारे में बात करते हैं कि क्या वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन करने का कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, क्या वो नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कम्युनिकेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं या फिर मुश्किल समझते हैं, और शाय भी होते हैं नेचर वाइज। जैसे मैंने नेचर की बात की, वो शाय भी होते हैं, उनको बात करने में प्रॉब्लम होती है, डिस्कशन करने में प्रॉब्लम होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो डिबेट नहीं कर सकते, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि आप आर्ग्यूमेंट की जगह अगर डिबेट कीजिए ना, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। वो कैसे? क्योंकि जो डिबेट होती है उसमें आप रेफरेंसेस देते हैं, आप ऑथेंटिक बात करते हैं और आप अपनी ऐसी राय देते हैं जिसके ऊपर आप चाहेंगे कि अगला अपनी राय दे, और तब जाके आप उसे कंक्लूड कर सकते हैं। डिबेट का फ़ायदा ये है कि आपकी बात ख़त्म हो जाएगी कहीं ना कहीं, लेकिन आर्ग्यूमेंट कभी भी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि आर्ग्यूमेंट इसलिए की जाती है क्योंकि कोई दूसरा जो है वो जीतना चाहता है और आपको हराना चाहता है। खैर, अपनों से जब बात की जाए तो उसमें जीतना क्या और हारना क्या। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जिनसे आप हार भी जाएं तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी ही जीत है। खैर, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स के बारे में बात हो रही थी कि फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स जो होते हैं इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उससे बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, लेकिन क्या हम वक्त निकालते हैं एक दूसरे के लिए? और कहते हैं ना कि जो अजनबी होते हैं उनसे अपने दिल की बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हैबिट होती है कि जब भी किसी नए को मिलेंगे, किसी अजनबी को मिलेंगे, तो अपनी राम कथा पूरी सुना देंगे, अपनी पूरी कहानी सुना देंगे, अपनी आप बीती सुना देंगे, उनके साथ क्या हुआ, और सिंपथीज जो है ना वो गैदर करना शुरू कर देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बड़े मासूम बन जाते हैं, अपनी मुश्किलें दूसरों के सामने रख देते हैं और लोगों से सिंपथीज लेते हैं, और सिंपथीज लेके उन्हें बड़ा मज़ा आता है। क्या ये सही करते हैं? अब आपको एक मिसाल देता हूं कि अहमद जो है उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उसके हजारों लाखों फॉलोअर्स होंगे, लेकिन जब वो मुश्किल वक्त में आएगा तो क्या उसे रियलाइज होगा कि उसका कोई ऑनेस्ट, कोई ऐसा दोस्त है, कोई ऐसा ऑनेस्ट और लॉयल है उसके साथ जो उसकी मुश्किल को समझ सके और मुश्किल वक्त में उसकी हेल्प भी कर सके? क्योंकि जब हम सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं तो हमें लगता है कि यही हमारी दुनिया है, और हम ये शो करते हैं कि हम दुनिया के खुशनसीब लोग हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन क्या मुश्किल उनके ऊपर नहीं आती? मुश्किल हर इंसान के ऊपर आती है, लेकिन मुश्किल हालात में जो शख्स आपके साथ खड़ा होता है वही आपका सही में अजीज़ है। और हमारा तो ये मानना है जी कि अपने जो अजीज़ों में हैं उसमें इजाफा कीजिए, ना के स्ट्रेंजर्स में। एक अमेरिकन सर्वे है, उसमें कहा गया है कि 74% ऑफ टीनएजर्स सेड
social media helped them feel connected to their friends, while roughly 1 in 5 said it had harmed their mental health. 74% जो आजकल की जो जनरेशन है उनका ये मानना है कि सोशल मीडिया से उनको हेल्प मिली है नए दोस्तों के साथ कनेक्ट करने की, लेकिन 5 में से सिर्फ एक है जिसने कहा होगा कि उन्हें नुकसान पहुंचा है, मेंटल हेल्थ पे कुछ इफेक्ट हुआ है। तो जो रिसर्च है ये क्या कहती है, इसके बारे में आपने गौर किया और आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM लाइव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम नॉटिंघम। 8:16 हो चुके हैं। मैं हूं ज़की खान, जो आपके लिए हर बुध की शाम एक प्रोग्राम लेकर आता हूं जिसका नाम है मॉडर्न सोसाइटी अनफिल्टर्ड। ये वो सोसाइटी है जिसे हम बिल्कुल अनफिल्टर करके आपके सामने रखते हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, हमारे शो में कॉल करना चाहें, 0115-7100-971 इज द नंबर। और अगर आप हमें व्हाट्सएप भी करना चाहें तो आप अपना मैसेज हम तक पहुँचा सकते हैं। मैं चौधरी तनवीर सुन रहे हैं इस वक्त ब्रेडफोर्ड से। उन्होंने एक मैसेज किया है, एक शायरी भेजी है जिसे हम ऐड करेंगे थोड़ी देर में। थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन कोशिश पूरी करूंगा। चलें जी, इसी के साथ आपको लिए चलता हूं एक और प्यारे से ट्रैक की जानिब और उम्मीद है कि आपको ये ट्रैक पसंद आएगा। फ्रॉम द फिल्म ताल। ताल फिल्म की आपको ये स्टोरी सुनाऊं कि ताल फिल्म जब मैं देखने गया ना पहली बार, तो उसमें जो एक्ट्रेस थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं सोचा कि इसे कहीं देखा हुआ है, और जब फिल्म ख़त्म हुई तो पता चला वो ऐश्वर्या रॉय थी। इसी दौर में मैं ऐश्वर्या रॉय का फ़ैन था, तो मैं वो सिनेमा में फिल्म देखने दोबारा गया था। उम्मीद है जिस जिसने ताल फिल्म देखी होगी उनको ये गाना पसंद आएगा। सुनते रहें फजा 97.1 FM। टैप।

जी वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM डैब लाइव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम नॉटिंघम। जी हाँ, मैं हूँ आप सबका मेजबान आज का जकी खान मॉडर्न सोसाइटी अनफिल्टर्ड के इस शो में। आपके लिए आज हम लेकर आए हैं कि क्या आर वी कनेक्टेड या फिर वी फील लोनली, यानी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या हम तन्हा हैं या फिर हम अपनी जिंदगी से खुश हैं। सोशल मीडिया, क्या सोशल मीडिया कनेक्शंस पैदा करता है या फिर कंपैरिजन या फिर दोनों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिस पे हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए। वो ये कि एक सोशल मीडिया है, एक नहीं खैर बहुत सारे हैं, कि ये क्या नए नए कनेक्शंस जो पैदा करता है वो सही है या फिर ये कंपैरिजन पैदा करता है कि हम एक दूसरे की लाइफ के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, हम बढ़ चढ़ कर दिखाना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा भी दौर था जिस दौर में ये सब कुछ नहीं होता था, ना ही ये सब कुछ हमें दिखता था, ना ही हमारे जहनों में कोई ख्याल जाते थे। कोई मैगज़ीन होती थी या फिर खबरनामे होते थे, न्यूज़ होती थी जिसमें हम देखा करते थे, उसे पढ़ा करते थे, और हम न्यूज़ जो हम चैनल्स में देखा करते थे या फिर सुना करते थे, हम तक सिर्फ वही खबरें पहुँचती थी। दुनिया में क्या हो रहा है हम तक बहुत देर से पहुंचता था। लेकिन कहते हैं कि हर एक प्लेटफॉर्म का या जो भी मीडियम होता है, हर मीडियम अपने जगह पर बिल्कुल ठीक है, एग्जिस्ट करता है, वी अप्रिशिएट दैट, लेकिन उसका हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी भी चीज़ का गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत है, सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो सही है। किसी ने एक बार पूछा कि ये बताएं कि सही और गलत में हम फैसला कैसे करेंगे, तो किसी सियाने ने कहा कि कोई भी काम करके आपको लगे कि ये आपने गलत किया है तो वो गलत है, और अगर आपको कोई भी काम करके ऐसा लगे कि आपने सही किया है तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये फैसला आपका अपना ज़मीर करता है। जी हाँ, ज़मीर जो है हर इंसान के अंदर होता है, और वो या तो मलामत करता है या फिर खुशी का इजहार करता है। ज़िंदा रहें तो ऐसे रहें कि लोगों के लिए मिसाल बन जाएं। लिव लाइक अ मिस्ट्री एंड डाई लाइक अ हिस्ट्री। जिंदगी हमें सिर्फ एक बार मिलती है और जिंदगी को भरपूर जीने का पूरा हक है। देखिए, हर एक इंसान की जिंदगी में मुश्किल हालात जरूर आते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि हम जीना छोड़ दें और हम बिल्कुल गिव अप कर दें। गिव अप करना ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, वो ऐसा ही है जैसे कि आप अंदर से मर से जाते हैं, यानी कि आप अंदर से ही सुसाइड अपने कर लिया, आपने मान लिया बस ठीक है यही जिंदगी है, अब और कुछ नहीं हो सकता। क्या ऐसा होता है या फिर सिर्फ हमारे ख्यालात हैं? वैसे एक और काम किया जा सकता है कि डाइनिंग टेबल पे जब बैठे ना तो फोन को बैन कर देना चाहिए। किसी ने कहा कि यार आज मैं बहुत खुश हूं। उसने पूछा क्यों? कहने लगा कि यार हमारे रात को ना हमारे घर का ना इंटरनेट ब्रॉडबैंड बंद हो गया था। उसने कहा फिर? कहता फिर क्या करना था, कुछ नहीं था, अपने घर वालों से गपशप लगाई, और यकीन मानो वो बड़े अच्छे लोग हैं। आपको समझ आई ये बात? कहने का मकसद ये है कि वो आपके घर वाले बहुत अच्छे हैं, आपको तब पता चलता है जब आपके घर में इंटरनेट नहीं चल रहा होता। देन अगेन, इंटरनेट का सही और गलत इस्तेमाल करना। हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट की एक रिसर्च है, वो ये कहती है स्ट्रॉन्ग एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद बेटर हेल्थ एंड लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आपकी भी राय जानना चाहेंगे, हमें अगर कॉल करना चाहें या व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहें तो नंबर एक ही है 0115 7100 971।

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

हमारे दिल की लगी लगे तेरे दिल को, जी हाँ, कभी ना कभी तो रूबरू बैठो। रूबरू बैठना भी ना उसका अपना एक स्वाद है। आंखों में आंखें डालकर आप चार बातें कीजिए एक दूसरे के साथ और यकीन माने कि बड़ा मजा आएगा। चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, गर्मी है तो आप कुछ ठंडा पीजिए, दिमाग गर्म हो जाए तो ठंडा पानी पीजिए, वो भी काफी हेल्प करता है, ट्रस्ट मी। जी हाँ, मैं हूँ आप सबका मेज़बान ज़की खान, आपके लिए लेकर आया हूँ एक खूबसूरत सा प्रोग्राम। आप जानते हैं कि बार बार ये बात मैं क्यों मेंशन करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ कि अगर अभी किसी ने रेडियो ऑन किया है तो उन्हें पता चल जाएगा, अदरवाइज लोग सोचेंगे कि क्या बात हो रही है, बात समझ में नहीं आएगी। जैसे हम नहीं कोट कर देते, छोटी सी एक बात है, हमने रील्स हम देख रहे होते हैं अक्सर और किसी को अगर बदनाम करना हो तो उसकी छोटी सी एक बात को उठाकर उसको वायरल कर दिया जाए तो लोग उसे गलत समझना शुरू कर देते हैं, उस बात की जो असल कॉन्टेक्स्ट है उसको समझने की कोशिश नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि आपके पास सोशल मीडिया पर कोई भी अगर पोस्ट आए तो उसको आप ऑथेंटिसिटी उसकी देख लीजिए कि क्या वो वाकई सही न्यूज़ है, उसके बाद शेयर कीजिए। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा शहर नॉटिंगम माशाल्लाह दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, आबादी के लिहाज से भी, पॉपुलेशन के लिहाज से भी, और उसके अलावा बिजनेसेस भी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, लोग बहुत से मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, माइग्रेट हुए हैं, लंदन से, यूरोप से बहुत से लोग आए हैं, और जितने लोग आए हैं उनको हमारी तरफ से, रेडियो फ़ज़ा की तरफ से जी वेलकम। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, आप सबको हमारी तरफ से दिल की अता गहराइयों से अब आपका खुश आमदेद करते हैं, और हमें सुना जाता है पूरी दुनिया में, वो कैसे, radiofaza.co.uk हमारी वेबसाइट है जिसके जरिए हमें सुना जाता है। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहें, कोई भी अगर वॉलंटरली काम करना चाहता है कम्युनिटी के लिए, वो कहते हैं ना कि जो डोनेशन होती है वो सिर्फ पैसों की नहीं होती, अपने वक्त की भी होती है, कहते हैं ना टाइम इज़ मनी, और इसी तरह मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि जो भी आप अपना टाइम देंगे कम्युनिटी के लिए, और अगर आपको शौक़ और ज़ौक है रेडियो प्रेजेंटर बनने का, ब्रॉडकास्टर बनने का, आरजे बनने का, तो वो ख्वाहिश हम आपकी पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वादा तो नहीं करते, कहते हैं ना कि वादा कभी नहीं करना चाहिए, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। अच्छा ये बताइए कि कैन समवन फील लोनली व्हाइल लिविंग इन अ बिजी हाउस होल्ड, इज इट पॉसिबल, यू गॉट सो मेनी पीपल अराउंड यू एंड यू आर लिविंग इन अ वेरी बिजी हाउस होल्ड एंड यू से आई एम फीलिंग लोनली, उसकी वजह क्या ये तो नहीं होती कि कोई ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं रहा, मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा। ये ऐसा ही है कि जैसे एक बच्चा होता है पहला, उसे बहुत प्यार मिलता है अपने माँ बाप से, जब दूसरा बच्चा हो, तीसरा हो जाए, और एक लंबी लाइन जब लग जाती है तो हर पैदा होने वाले को बहुत प्यार मिलता है, हर एक उसी को उठाते हैं, और जो उससे बड़ा होता है उसे लगने लगता है कि अब मेरी वैल्यू नहीं रही, अब मुझे कोई पूछता नहीं है। लेकिन यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई लोग हैं तो हर एक की कोई ना कोई अहमियत ज़रूर है और वो अपनी जगह पर है, और जब हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं ना तो यकीन हमें हम अपने आप को डिग्रेड करना शुरू कर देंगे। इनसिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आप खुद को इतना बेहतर बनाइए कि लोग आपके बगैर रह ना पाएं। क्या ये मुमकिन है कि अपने आप को इतना अच्छा बना दीजिए, इतना खूबसूरत बना दीजिए, अपने इखलाक में बेहतरी लेकर आए, अच्छी बातें कीजिए, अच्छी बातें सुने। और किसी ने बड़ा खूब कहा कि अगर अपनी ज़िंदगी में अगर आप कुछ भी चाहते हैं ना और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कमी है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्यार की कमी है, तो प्यार बाँटना शुरू कर दें। आप ज़िंदगी में अगर पैसों की कमी है तो पैसे बाँटना शुरू कर दें। हाँ, गम ना बांटिएगा लेकिन जो भी अच्छी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में उसे बांटिए, यकीन मानिए वो बढ़ती चली जाएगी। वो कहते हैं ना कि बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने आपको वो अहमियत दी है, वो सब कुछ दिया है जो ना जाने लाखों करोड़ों लोगों के पास नहीं है, तो क्या आप अपने आप को ये कहेंगे कि जी के क्या ये में है मेरी ज़िंदगी? आपने असल में कभी वो ज़िंदगी देखी ही नहीं लोग जीते हैं, इतनी मुश्किल से, कितनी दुश्वारियों से। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पीने का पानी नहीं है, ज़रा सोच लीजिए, और हम शावर लेते हुए कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, कितना पानी का ज़िया करते हैं। तो यही सोच कर हम बहुत सी एहतियात कर सकते हैं।
उसके अलावा हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे मामलात होते हैं, फॉर एग्जांपल कि हम शॉपिंग को ले लीजिए कि हर सीज़न में हम न जाने कितने कपड़े ख़रीदते हैं। अब तो ऑनलाइन आ चुका है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का नाम मैं नहीं लूँगा, उन्हें क्यों फ्री में हम प्रमोट करें वाला, लेकिन आप क्या करते हैं कि ढेर सारी हम शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, न जाने कितने कपड़े हमारे घर में वार्डरोब में पड़े रहते हैं, उसके बाद फिर हम उठा के उसे चैरिटी में दे देते हैं। अगर हम ये सोचें कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पहनने को कपड़ा तक नहीं है, लेकिन चले खैर ये भी एक निज़ाम है, एक सर्कल है कि हमारे पास से चैरिटी से होते हुए किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचता है। चैरिटी बहुत ज़रूरी है, अपनी लाइफ में ज़रूर कीजिए। ये चैरिटी सिर्फ पैसों की नहीं होती, यही बात आपको मैं समझा रहा हूँ इतनी देर से। आपको एक ट्रैक ना सुनो, अच्छा सा, आपको यकीन माने मज़ा आ जाएगा, ट्रस्ट भी मज़ा आएगा।

अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो आपसे अगले बुध शाम 7 से लेकर 9 बजे तक एक नई डिस्कशन के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।

0: हमारे दिल की लगी लगे तेरे दिल को, जी हाँ, कभी ना कभी तो रूबरू बैठो। रूबरू बैठना भी ना उसका अपना एक स्वाद है। आंखों में आंखें डालकर आप चार बातें कीजिए एक दूसरे के साथ, और यकीन माने कि बड़ा मजा आएगा। चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, गर्मी है तो आप कुछ ठंडा पीजिए, दिमाग गर्म हो जाए तो ठंडा पानी पीजिए, वो भी काफी हेल्प करता है, ट्रस्ट मी। जी हाँ, मैं हूँ आप सबका मेज़बान ज़की खान, आपके लिए लेकर आया हूँ एक खूबसूरत सा प्रोग्राम। आप जानते हैं कि बार बार ये बात मैं क्यों मेंशन करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ कि अगर अभी किसी ने रेडियो ऑन किया है तो उन्हें पता चल जाएगा, अदरवाइज लोग सोचेंगे कि क्या बात हो रही है, बात समझ में नहीं आएगी। जैसे हम नहीं कोट कर देते, छोटी सी एक बात है, हमने रील्स हम देख रहे होते हैं अक्सर, और किसी को अगर बदनाम करना हो तो उसकी छोटी सी एक बात को उठाकर उसको वायरल कर दिया जाए तो लोग उसे गलत समझना शुरू कर देते हैं, उस बात की जो असल कॉन्टेक्स्ट है उसको समझने की कोशिश नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि आपके पास सोशल मीडिया पर कोई भी अगर पोस्ट आए तो उसको आप ऑथेंटिसिटी।
1: जरा ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
0: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
0: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
0: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
0: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
0: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
0: लो जी वो भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: Ya phir English or Arabic. तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM.
0: हो गया ना कमाल.

हमारे दिल की लगी लगे तेरे दिल को, जी हाँ, कभी ना कभी तो रूबरू बैठो। रूबरू बैठना भी ना उसका अपना एक स्वाद है। आंखों में आंखें डालकर आप चार बातें कीजिए एक दूसरे के साथ, और यकीन माने कि बड़ा मज़ा आएगा। चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, गर्मी है तो आप कुछ ठंडा पीजिए, दिमाग गर्म हो जाए तो ठंडा पानी पीजिए, वो भी काफ़ी हेल्प करता है, ट्रस्ट मी। जी हाँ, मैं हूँ आप सबका मेज़बान ज़की ख़ान, आपके लिए लेकर आया हूँ एक खूबसूरत सा प्रोग्राम। आप जानते हैं कि बार बार ये बात मैं क्यों मेंशन करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ कि अगर अभी किसी ने रेडियो ऑन किया है तो उन्हें पता चल जाएगा, अदरवाइज लोग सोचेंगे कि क्या बात हो रही है, बात समझ में नहीं आएगी। जैसे हम नहीं कोट कर देते, छोटी सी एक बात है, हमने रील्स हम देख रहे होते हैं अक्सर, और किसी को अगर बदनाम करना हो तो उसकी छोटी सी एक बात को उठाकर उसको वायरल कर दिया जाए तो लोग उसे गलत समझना शुरू कर देते हैं, उस बात की जो असल कॉन्टेक्स्ट है उसको समझने की कोशिश नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि आपके पास सोशल मीडिया पर कोई भी अगर पोस्ट आए तो उसको आप ऑथेंटिसिटी उसकी देख लीजिए कि क्या वो वाकई सही न्यूज़ है, उसके बाद शेयर कीजिए। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा शहर नॉटिंगम माशाल्लाह दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, आबादी के लिहाज से भी, पॉपुलेशन के लिहाज से भी, और उसके अलावा बिजनेसेस भी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, लोग बहुत से मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, माइग्रेट हुए हैं, लंदन से, यूरोप से बहुत से लोग आए हैं, और जितने लोग आए हैं उनको हमारी तरफ से, रेडियो फ़ज़ा की तरफ से जी वेलकम। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, आप सबको हमारी तरफ से दिल की अता गहराइयों से अब आपका खुश आमदेद करते हैं, और हमें सुना जाता है पूरी दुनिया में, वो कैसे, radiofaza.co.uk हमारी वेबसाइट है जिसके जरिए हमें सुना जाता है। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहें, कोई भी अगर वॉलंटरली काम करना चाहता है कम्युनिटी के लिए, वो कहते हैं ना कि जो डोनेशन होती है वो सिर्फ पैसों की नहीं होती, अपने वक्त की भी होती है, कहते हैं ना टाइम इज़ मनी, और इसी तरह मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि जो भी आप अपना टाइम देंगे कम्युनिटी के लिए, और अगर आपको शौक और ज़ौक है रेडियो प्रेजेंटर बनने का, ब्रॉडकास्टर बनने का, आरजे बनने का, तो वो ख्वाहिश हम आपकी पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वादा तो नहीं करते, कहते हैं ना कि वादा कभी नहीं करना चाहिए, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। अच्छा ये बताइए कि कैन समवन फील लोनली व्हाइल लिविंग इन अ बिजी हाउस होल्ड, इज इट पॉसिबल, यू गॉट सो मेनी पीपल अराउंड यू एंड यू आर लिविंग इन अ वेरी बिजी हाउस होल्ड एंड यू से आई एम फीलिंग लोनली, उसकी वजह क्या ये तो नहीं होती कि कोई ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं रहा, मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा। ये ऐसा ही है कि जैसे एक बच्चा होता है पहला, उसे बहुत प्यार मिलता है अपने माँ बाप से, जब दूसरा बच्चा हो, तीसरा हो जाए, और एक लंबी लाइन जब लग जाती है तो हर पैदा होने वाले को बहुत प्यार मिलता है, हर एक उसी को उठाते हैं, और जो उससे बड़ा होता है उसे लगने लगता है कि अब मेरी वैल्यू नहीं रही, अब मुझे कोई पूछता नहीं है। लेकिन यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई लोग हैं तो हर एक की कोई ना कोई अहमियत ज़रूर है और वो अपनी जगह पर है, और जब हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं ना तो यकीन हमें हम अपने आप को डिग्रेड करना शुरू कर देंगे। इनसिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आप खुद को इतना बेहतर बनाइए कि लोग आपके बगैर रह ना पाएं। क्या ये मुमकिन है कि अपने आप को इतना अच्छा बना दीजिए, इतना खूबसूरत बना दीजिए, अपने इखलाक में बेहतरी लेकर आएं, अच्छी बातें कीजिए, अच्छी बातें सुने। और किसी ने बड़ा खूब कहा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अगर आप कुछ भी चाहते हैं ना और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कमी है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्यार की कमी है, तो प्यार बाँटना शुरू कर दें। आप ज़िंदगी में अगर पैसों की कमी है तो पैसे बाँटना शुरू कर दें। हाँ, गम ना बांटिएगा लेकिन जो भी अच्छी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में उसे बांटिए, यकीन मानिए वो बढ़ती चली जाएगी। वो कहते हैं ना कि बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने आपको वो अहमियत दी है, वो सब कुछ दिया है जो ना जाने लाखों करोड़ों लोगों के पास नहीं है, तो क्या आप अपने आप को ये कहेंगे कि जी कि क्या ये में है मेरी ज़िंदगी? आपने असल में कभी वो ज़िंदगी देखी ही नहीं लोग जीते हैं, इतनी मुश्किल से, कितनी दुश्वारियों से। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पीने का पानी नहीं है, ज़रा सोच लीजिए, और हम शावर लेते हुए कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, कितना पानी का ज़िया करते हैं। तो यही सोच कर हम बहुत सी एहतियात कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे मामलात होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम शॉपिंग को ले लीजिए,
کہ ہر سیزن میں ہم نہ جانے کتنے کپڑے خریدتے ہیں. اب تو آن لائن آ چکا ہے, آن لائن پلیٹفارمس کا نام میں نہیں لوں گا, انہیں کیوں فری میں ہم پروموٹ کریں والا. لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ ڈھیر ساری ہم شاپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, نہ جانے کتنے کپڑے ہمارے گھر میں وارڈروب میں پڑے رہتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اٹھا کے اسے چیریٹی میں دے دیتے ہیں. اگر ہم یہ سوچیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پہننے کو کپڑا تک نہیں ہے, لیکن چلیں خیر یہ بھی ایک نظام ہے, ایک سرکل ہے کہ ہمارے پاس سے چیریٹی سے ہوتے ہوئے کسی ضرورت مند تک پہنچتا ہے. چیریٹی بہت ضروری ہے, اپنی لائف میں ضرور کیجیے. یہ چیریٹی صرف پیسوں کی نہیں ہوتی, یہی بات آپ کو میں سمجھا رہا ہوں اتنی دیر سے. آپ کو ایک ٹریک نہ سنو, اچھا سا, آپ کو یقین مانے مزہ آ جائے گا, ٹرسٹ بھی مزہ آئے گا.

0: बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया,
1: बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो।
0: लोग कहते हैं कि हमें कुछ जीने नहीं दे, आपने जीना

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
0: बिगर बिगर एंड बेटर बेटर द रेडियो स्टेशन फॉर पीपल हु लव म्यूजिक। 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

0: सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM।
1: जो कल थे वे आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। सत्य क्या है? होना या न होना, या दोनों ही सत्य हैं? जो है उसका होना सत्य है, जो नहीं है उसका न होना सत्य है। मुझे लगता है कि होना न होना एक ही सत्य के दो आयाम हैं, शेष सब समझ का फेर बुद्धि के व्यायाम है।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: You are listening to 97.1 FM.

0: रेडियो फजा 97.1 FM।
1: ये गुलशन, फूल, कलियां, बहार, वादियां, ये मौसम, खेत, हरियाली, पहाड़, बर्फ, ये कायनात, कुछ भी नहीं,
2: कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं,
2: वो है कौन?
3: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
1: नाम?

0: कह रहे हो।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो फजा 97.1 FM. Enjoy soulful songs of Rafi only on Dedication Hour.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
1: Attention,
2: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: लासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.
8: लाल छड़ी मैदान खड़ी।
9: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: ਮੁੰਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
7: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
8: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ.
9: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं. खैर तो है,
8: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी.
9: ओहो, मुबारकबाद.